एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की छठी तिथि, तदनुसार दिनांक 28 जुलाई वर्ष 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं प्रारंभ होती है। सभी श्रोताओं को सुप्रभात।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6 बजे हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित है हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन

0: की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेंगयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ दूरदर्शन के DTH चैनल पर। DJ प्रस्तुत है चिंतन।

रिश्ते अर्थात संबंध। मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए वो अनेक प्रकार के बंधनों में रहता है। ये बंधन उसे बोझ लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं बंधनों से मनुष्य की सामाजिक मर्यादा कायम रहती है। समाज में आपसी संबंध अर्थात रिश्ते होना बहुत आवश्यक है और इन रिश्तों को हम बहुत से नामों से जानते हैं, जैसे जहां हम रहते हैं वहां रहने वाले पड़ोस के रिश्ते, विद्यालयों में गुरु शिष्य के रिश्ते, मालिक नौकर के रिश्ते, पारिवारिक रूप में माता पिता, पिता पुत्र, बहन भाई, पति पत्नी और परिवार में ही रिश्तों की एक लंबी श्रृंखला है। सभी प्रकार के रिश्तों को निभाने के लिए हमारे मन में आदर और सम्मान की भावना होनी चाहिए। रिश्तों में मिठास, उल्लास और खुशी बनाए रखने के लिए हमें सदैव बोलते समय संयम रखना चाहिए। कई बार कटु वचनों के प्रयोग से रिश्तों में कड़वाहट घुल जाती है, हालांकि सामान्य रूठना और मनाना किसी भी रिश्ते का आवश्यक अंग है, लेकिन किसी बात को गांठ बांध लेना कोई अच्छी बात नहीं। इससे रिश्तों की सहजता खत्म हो जाती है और जहां अपनापन और प्रेम खत्म हुआ वहीं से रिश्ते बेगाने हो जाते हैं। कभी कभी धन और अहम की भावना यानी अहंकार भी रिश्ते बिगाड़ने में अपनी बड़ी भूमिका निभा जाते हैं। वास्तव में ये बात सही है कि तलवार के घाव एक बार फिर भी भर जाते हैं।

0: लेकिन बोली का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम सभी रिश्तों का पूरा सम्मान करें और इनकी मर्यादा भंग न होने दें। रहीम जी का एक प्रसिद्ध दोहा भी है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए मनुष्यों के सभी रिश्ते सहज और प्रेममय बने रहें, ये हमारा ही दायित्व है। ऐसा ना हो कि बिगड़े हुए रिश्ते जिंदगी भर आंखों से रिश्ते रहें। इसलिए बड़प्पन दिखाइए और दरकते हुए रिश्तों को आगे बढ़कर संभाल लीजिए।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था रिश्ते। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमित चैनल है। डीजे प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: और इस सामूहिक देशगान के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सुबह के 6:30 हुए। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

अयोध्या में श्री राम के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। संध्या समय हर्षित मन से महाराज दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे, किंतु वहां रानी के कोप भवन में होने का समाचार सुनते ही सहम गए। आशंका ने उनके पांव बांध लिए। जिनकी भुजाओं में इंद्र का बल है, राजा जिनका मुंह जोहते रहते हैं, वही राजा पत्नी के क्रोध की कल्पना करके सूख से गए। आशंकित अवस्था में वो रानी के पास पहुंचे, जो मोटे मलिन वस्त्र धारण कर भूमि पर लेटी थी, आभूषण शरीर से उतार फेंके थे। राजा ने रानी से रूठने का कारण पूछा। उसे रुष्ट करने वाले मनुष्य तो क्या, देवताओं का भी विनाश कर देने का वचन देते हैं। अपना वचन निभाने के लिए श्री राम की सौगंध उठाते हैं। राजा के वचन तथा राम की सौगंध का विचार कर रानी उठकर गहने पहनने लगी, जैसे कोई

वन्य कन्या मृग को देखकर उसके लिए फंदा तैयार करने लगी हो। राजा पुलकित हुए और अगले दिन राम को युवराज पद देने का शुभ समाचार सुनाया। ये सुनकर कैकई के कठोर हृदय में ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू दिया हो।

श्री रामचरितमानस गान का ये प्रसंग यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रमों एवं प्रसारणों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 6:45 पर हमारे किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम खेतीनी बात। 6:50 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत। प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन।

आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे समाचार प्रभात प्रातः 8 बजे। 8:15 पर प्रस्तुत होगा दिल के जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से।

राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः 8:45 पर, प्रातः 9:10 पर और पुनः 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा प्रातः 9:30। वहीं प्रातः 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी लोक, 5:30 पर और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया आप सुन सकेंगे शाम 6:15 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे 6:30 पर आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का समय रहेगा शाम 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम।

रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगी समाचार संध्या। रात्रि 10:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई के संपादित अंश, वहीं स्टूडियो से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि 11:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे हिन्दी में समाचार।

0: अभी आप सुन रहे थे दिनभर के कार्यक्रमों का विवरण। प्रातः के 6:45 हुए हैं। समय हो चला है कार्यक्रम खेती नी वात का।
1: खेती नी वात कार्यक्रम हम रोवरा सब भाइयों ने सोरा दियो वालजी भाई राम राम। किसान भाइयों देखो सोरा ऊपर अपने सब हवार हवार में खेत में दवा में निकले हम। किसान भाइयों अवड़े बेस्तौन दाड़ा छा पानी भी है हल्की बौछारा ना रूप में लगातार चाली ऋतु को है। किसान भाइयों आना समय में अपने क्षेत्र में खरपतवार नियंत्रण नो काम भी किसान भाई ने करवो जरूरी है। जेम जेम आम पानी ने बौछारा पड़ती रही ने थोड़ो सो भी अगर कोराट मली है पानी बंद था इसलिए आ क्षेत्र में खरपतवार रहे है ज्यादा बड़ी ने हामे आवे है। तो किसान भाइयों एना हारू आपने जेम जेम आपने समय मिले एम आ क्षेत्र में निराई गुड़ाई अने खरपतवार नियंत्रण नो काम आपने करवो पड़े। बीजी बात ये किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण करवा बाद आपने आज मक्का नी खड़ी फसल है आपड़ी एना में उर्वरक प्रबंधन नो काम समय ऊपर करवो पड़े है। किसान भाइयों मक्का नी अच्छी बंपर पैदावार हरू संतुलित उर्वरक प्रबंधन घणो जरूरी है। जेना में प्रति हेक्टेयर 120 किलो नाइट्रोजन 60 किलो फास्फोरस 40-60 किलो पोटाश नी आवश्यकता पड़े है। जे आप अच्छी तरह थकी जानी रहो आम तो बुआई ना समय बेसल डोज में फास्फोरस

आप सुन रहे हैं आदिवासी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं गोपाल पंड्या व साथियों द्वारा गाए कुछ लोक भजन।

0: आप सुन रहे थे गोपाल पंड्या व साथियों द्वारा गाए कुछ लोक भजन कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत में। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है वातायन। वातायन में आज आपको सुनवा रहे हैं वार्ताकार डॉ चंद्रलेखा जोशी से वार्ता। विषय है एनईपी 2020 उच्च शिक्षा में रोजगार के अवसर।
1: शिक्षा में रोजगार के अवसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5वीं कक्षा तक के बच्चे स्थानीय भाषा में अध्ययन करेंगे और कक्षा 6 से 8 तक में संस्कृत भाषा को सीखने पर जोर दिया गया है। कक्षा 9 से 12 तक में बच्चा किसी भी एक फॉरेन लैंग्वेज का अध्ययन कर सकता है एक विषय के रूप में। अब बात उच्च शिक्षा की है तो उसमें भी बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन नई शिक्षा नीति में किए गए हैं। हमारी जो पूर्व की शिक्षा नीति थी उसमें हम 3 का ग्रेजुएट का कोर्स करते थे और हम बीए, बीएससी व बीकॉम की डिग्री हासिल करते थे, लेकिन पूर्व की शिक्षा नीति में कई तरह की समस्याएं आती थी। इन समस्याओं का निराकरण इस नई शिक्षा नीति में करने का प्रयास किया गया है। इस शिक्षा नीति में बहु विषयक लागू रहेगा। बच्चा जो चाहेगा वो विषय लेगा, उसके सामने सारे विषय खुले हैं। यह बाध्यकारी नहीं रहेगा, जैसे साइंस है तो उसके साथ वह आर्ट्स के विषय भी पढ़ सकता है और इस तरह की कोई बाध्यता उसके सामने नहीं रहेगी। और दूसरा यह है कि पहले यह रहता था कि अगर बच्चा फर्स्ट ईयर करने के बाद कॉलेज छोड़ देता था

किंतु हमारी 2020 की शिक्षा नीति में एग्जिट और एंट्री यह दोनों की सुविधाएं दे रखी है। अब बच्चे के पास में मल्टीपल चॉइस है, अब बच्चा जब चाहेगा वो एग्जिट हो जाएगा और जब चाहेगा तब वो एंट्री भी ले सकता है। जैसे एक बच्चा है, उसने फर्स्ट ईयर कर लिया तो इस नई शिक्षा नीति में उसको फर्स्ट ईयर के साथ में सर्टिफिकेट का कोर्स मिलेगा। पहले हम कहते थे कि बीए हो गया तो बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, अब क्या होगा, सिर्फ ग्रेजुएशन होगा और यदि उसने फर्स्ट ईयर का कोर्स पूरा कर लिया तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सर्टिफिकेट कहलाएगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अगर बच्चे ने सेकेंड ईयर कंप्लीट किया तो सेकेंड ईयर के बाद उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसे कहा जाएगा ग्रेजुएट डिप्लोमा। यह एक तरह से उसकी अंक तालिका हो गई और यदि 3 वर्ष पूरे कर लिए तो उसे ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी। अब वह पर्टिकुलर बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री न ले मिलकर एक ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी।

लेकिन अब उसके पास मल्टीपल चॉइस है, वह एक विषय आर्ट्स का तो एक विषय साइंस का ले सकता है और एक विषय कॉमर्स का भी रख सकता है, चाहे तो मैनेजमेंट का ले सकता है जो फर्स्ट ईयर के अंदर वह कंप्लीट करेगा। जो उसने 3 सब्जेक्ट लिए हैं उसके बाद उसको ग्रेजुएशन कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में उसको ग्रेजुएशन ऑफ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा और 3 साल के बाद उसको ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी। अगर बच्चा फर्स्ट ईयर की पढ़ाई पूरी नहीं करता है तो उसका जो फर्स्ट ईयर का ज्ञान है उसका कहीं उपयोग नहीं हो पा रहा था और सेकेंड ईयर के बाद चला जाता था तो उसे उसके 2 वर्ष बेकार हो जाते थे, परंतु अब उसके पास डिप्लोमा ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट रहेगा। यह एक तरीके से उसकी अंक तालिका है। एक और नई चीज इसमें जोड़ी गई है, अब ABC एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट हर बच्चे का एक डिजिटल अकाउंट होगा, उसमें उसके क्रेडिट जुड़ जाएंगे, एजुकेशन के क्रेडिट, जैसे फर्स्ट ईयर कर ली तो क्रेडिट जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिक उसके डिजिटल अकाउंट के अंदर। हर एक को ABC में रजिस्ट्रेशन करवाना है, बच्चे का एक तरह से यह बैंक का खाता है जैसा अपना बैंकों में रहता है। अगर सेविंग अकाउंट है तो अपना उसमें जब चाहे पैसा डाल सकते हैं, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से यह ABC में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसमें बच्चे का एक तरह से ये बैंक का खाता है जैसा अपना बैंकों में रहता है सेविंग अकाउंट, अपन

कहेगा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ तो वो पढ़ सकता है, परंतु पहले की शिक्षा नीति में ऐसा नहीं था। अगर फर्स्ट ईयर के बाद 2 साल का या 3 साल का गैप हो जाता था तो फिर से फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ता था उसको, और फर्स्ट ईयर की डिग्री के आधार पर वो चाहता कि कोई कंपटीशन एग्जाम दूं, तो फर्स्ट ईयर के आधार पर उसको कोई लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब यह है कि कई ऐसी सर्विसेज होंगी आने वाले समय में जो फर्स्ट ईयर के सर्टिफिकेट के आधार पर भी होंगी और सेकेंड ईयर के डिप्लोमा के आधार पर भी होंगी। इस नई शिक्षा नीति में जरूर उनको फायदा मिलेगा और उनका कोई साल इसमें बर्बाद नहीं होगा। अगर उसने

में 3 वर्ष का ग्रेजुएशन किया गया जिसमें फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर का डिप्लोमा और थर्ड ईयर का ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। यदि वो चाहे तो चौथे साल में भी पढ़ाई कर सकता है, उसमें उसको रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा ताकि वो भविष्य में पीएचडी करेगा तो उसे रिसर्च सर्टिफिकेट के आधार पर पीएचडी कर पाएगा और पीएचडी

4 वर्ष की निर्धारित की गई है। वर्तमान में अभी आगे और इसमें बदलाव के समीकरण देखे जाएंगे। आने वाले समय में रिसर्च के साथ साथ बच्चे को एक फायदा और है, अगर वह 4 साल का कोर्स करता है तो वह पीजी के अंदर एडमिशन ले सकता है और पीजी उसको एक वर्ष का ही करना पड़ेगा। वर्तमान शिक्षा में यह था कि उसको 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल की पीजी का कोर्स करना पड़ता था, लेकिन जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि वह 3 साल का ग्रेजुएशन तथा 4th साल का रिसर्च वाला कोर्स कर देता है तो उसको फिर पीजी के अंदर एक वर्ष का ही कोर्स करना है। मतलब वही उसको 5 साल पीजी के लिए लगाना ही है। यह बहुत बड़ा बदलाव उच्च शिक्षा में किया गया है। यह नई शिक्षा नीति प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य को देखते हुए ही सरकार ने यह शिक्षा नीति लागू की है और इस शिक्षा नीति में पहले से ही बच्चे के सामने विषय चॉइस को रखा गया है। यदि बच्चे का उद्देश्य यह है कि मुझे सिविल सेवा में जाना है

0: का कोर्स करना है और उसकी इंग्लिश भी अच्छी करनी है तो वो इंग्लिश को भी एक सब्जेक्ट के रूप में चॉइस कर सकता है और मैनेजमेंट का भी कोई कोर्स चयन कर सकता है।
1: आप सुन रहे थे एनईपी 2020 उच्च शिक्षा में रोजगार के अवसर विषय पर वार्ता, वार्ताकार डॉ. चंद्रलेखा जोशी से। इसी के साथ ही कार्यक्रम वार्ताएं यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

लीजिए श्रोताओं, हम हाजिर हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के लेकर आपके लिए। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारानिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। लीजिए, आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लेखक राजा मेहंदी अली खान के द्वारा लिखे गए गीत, क्योंकि आज हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। कल 29 जुलाई को उनकी भी पुण्यतिथि है। तो राजा मेहंदी अली खान के बारे में हम सभी जानते हैं कि भारत के महान कवि, लेखक और गीतकार थे। इन्होंने संगीतकार एसडी बर्मन के साथ गीतकार के रूप में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी 1947 की फिल्म दो भाई से। उनके लिखे गीत बेहद लोकप्रिय हुए। मेरा सुंदर सपना बीत गया, ये गीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। कल 29 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए हम उन्हें याद करते हुए नमन करते हैं और उनके द्वारा अपने पीछे छोड़ा हुआ अविस्मरणीय गीतों का खजाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये पहला गीत एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में राजा मेहंदी अली खान का लिखा गीत और पी नैयर के संगीत से सजा।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
3: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
1: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11

0: बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है रही प्यार की। रेशमी रुमाल इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीतबद्ध किया है बाबुल ने।

नीला आकाश इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वरों में। राजा मेहंदी अली खान का लिखा गीत, मदन मोहन का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए
4: कार्यक्रम हमेरा ही प्यार के में, अब वक्त है एक छोटी से अंतराल का।

इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की। जब याद किसी की आती है, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत पर किया है मदन मोहन ने।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया, राजा मेहंदी अली खान के बोल, एसएन त्रिपाठी का संगीत, अलीबाबा और 40 चोर फिल्म का नाम।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: कल्पना फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, राजा मेहंदी अली खान के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।

0: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
1: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय

बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार का

0: संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे अब 8 से 10 अगस्त तक तीन चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
2: हम बहुत खुश हैं, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे।
0: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है 100 करोड़ से अधिक आय वाले

0: करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा। प्रत्यक्ष चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम-1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीच प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपने साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं।
3: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ दिल से।

कार्यक्रम कुछ दिल से को लेकर उपस्थित हूं आपके समक्ष आपकी रेडियो होस्ट अपूर्वा श्रीमाली। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज सुबह जब खिड़की खोली तो ताजी हवा के एक झोंके ने गालों को छुआ, पंछियों की चहचहाट कानों में पड़ी और दिल से सिर्फ एक आवाज निकली, वाह कितनी खूबसूरत है हमारी दुनिया। लेकिन दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि जिस प्रकृति ने हमें सांसें दी हैं, पीने को पानी दिया, रहने को जमीन दी, क्या हम उसकी देखभाल ठीक से कर रहे हैं? आज 28 जुलाई है श्रोताओं, यानी प्रकृति संरक्षण दिवस, और आज का दिन हमें याद दिलाने आया है कि यह धरती सिर्फ हमारी नहीं है, हमें इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सहज कर रखना है।

कहते हैं कि प्रकृति के पास हमारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे लालच के लिए कुछ नहीं। आज छोटी छोटी आदतें बदलकर हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। संरक्षण का मतलब यह नहीं है कि हमें कुछ बहुत बड़ा ही करना है, बस अपने घर से शुरुआत करनी है। नल खुला मत छोड़िए, पानी की हर एक बूंद कीमती है। जहां जरूरत ना हो वहां बिजली के स्विच बंद कर दीजिए। प्लास्टिक की थैलियों को अलविदा कहिए और कपड़े का थैला उपयोग में लीजिए। और हां, इस मानसून में अपने नाम का एक पौधा जरूर लगाइए। सोचिए, जब वो पेड़ बनेगा तो आपकी लगाई हुई छांव में कोई ना कोई राहत तो जरूर पाएगा।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ दिल से। दोस्तों, कभी फुर्सत में बैठकर अपनी हथेलियों को देखिएगा और फिर सोचिएगा, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवा किसकी है, जिस मिट्टी पर हम चल रहे हैं

वो किसकी है, और जो पानी हमारी प्यास बुझाता है वो कहां से आता है। यह सब प्रकृति की देन है, लेकिन अफसोस इंसानियत की इस दौड़ में हम इतने आगे निकल गए कि जिस पेड़ की छांव में हम बड़े हुए उसी को काटना शुरू कर दिया। मुझे किसी की लिखी कुछ पंक्तियां याद आती हैं। विरासत में हमें जो हरी भरी दुनिया मिली थी, हम बच्चों को सूखी जमीन सौंप कर जा रहे हैं। पानी तो बोतलों में बंद कर दिया हमने, अब क्या सांसें भी गुब्बारों में भरकर देना चाह रहे हैं? जरा सोचिए दोस्तों, अगर कल को नदियां सिर्फ किताबों में रह गई, अगर पंछियों की चहचहाट सिर्फ मोबाइल की रिंगटोन बनकर रह गई, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे?

आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर हमें किसी और को नहीं बल्कि खुद को आईना दिखाने की जरूरत है। प्रकृति हमसे कुछ बहुत बड़ा नहीं मांगती। यह हमसे हमारी गाड़ियां, हमारे आलीशान घर नहीं छीनना चाहती। यह बस थोड़ा सा सम्मान और थोड़ी सी परवाह मांगती है। जब आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर एक पौधा लगाते हैं ना, तो आप सिर्फ एक पेड़ नहीं रोपते, आप उस बच्चे के कल के लिए मुफ्त ऑक्सीजन का एक इंतजाम करते हैं। जब आप बहते हुए नल को बंद करते हैं, तो आप किसी दूर गांव में प्यासे बैठे बच्चे की जिंदगी बचाते हैं।

प्रकृति बचाना कोई सरकारी अभियान या सिर्फ एक दिन का ट्रेंड नहीं है, ये हमारी सांसों की शर्त है। अगर आप सच में अपनी आने वाली पीढ़ियों से प्यार करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी उस साफ हवा में सांस लें जिसमें आपने ली थी, तो आज ही इस धरती का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रकृति ही हमारी असली धरोहर है। अगर यह बची रही तो ही हमारा कल सुंदर होगा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से। इसी नगमे के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। प्रातः के 8:45 हुए हैं। समय हो चला है कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत का

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 9 बजे हैं। आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: एपिसोड 140।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत की पैरा शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला धनकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जमा राशि में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जोधपुर, पाली, बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में नदियों के प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए और प्रदेश के नगरीय निकायों में 24,752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। भारत की पैरा शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला धनकर ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही शर्मिला कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। वहीं भारतीय हाई जंपर सर्वेश कुशारे ने स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में रजत पदक पर कब्जा जमाया। इसके अलावा भारोत्तोलक वल्लूरी अजया बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव ने एक एक रजत पदक हासिल किया। राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 3,85,00,000 से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार इन खातों में 24,610 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है और जमा राशि के मामले में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है। प्रदेश में 2,19,00,000 से अधिक महिलाओं के जनधन खाते हैं, जो कुल खातों का 57% है। योजना के तहत 2,87,00,000 से अधिक रूपे डेबिट कार्ड भी जारी किए गए हैं। जनधन खाता धारकों को दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट सुविधा और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज धौलपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मनिया कस्बे में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। फूलपुर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत सरकारी अस्पतालों की क्लेम निस्तारण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार क्लेम रिव्यू कमेटी अब संबंधित अस्पतालों में पहुंचकर मामलों की सुनवाई कर रही है, जिससे लंबित क्लेम का तेजी से निस्तारण हो रहा है। अब तक 98,000 से अधिक अपीलों में से लगभग 72% मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। साथ ही 19,61,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। गौरतलब है कि इससे अस्पतालों को समय पर भुगतान मिलेगा और मरीजों के स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री

0: फसल बीमा योजना के तहत किसान खरीफ सीजन 2026 के लिए 31 जुलाई तक बीमा करा सकते हैं। वहीं रबी 2026-27 सीजन के लिए ये आवेदन 31 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। किसान किसी भी नजदीकी बैंक शाखा, केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, डाकघर या सीएससी के माध्यम से ये बीमा करा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल या अधिकृत बीमा एजेंट के माध्यम से भी बीमा कराया जा सकता है। खरीफ मौसम में बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, तिल, कपास और मूंगफली सहित 14 फसलें अधिसूचित की गई हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम से होने वाले फसल खराबे से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ और रबी दो फसल मौसमों के लिए प्रदेश में लागू किया है। जयपुर को हरा भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सहकारिता विभाग की ओर से सहकार वन विकसित किया जा रहा है। विभाग के सचिव समित शर्मा ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए 88 बीघा भूमि उपलब्ध कराई है। लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाला ये सहकार वन पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता का केंद्र बनेगा।
1: बेसिकली एक एनवायरमेंटल सेंटर होगा जहाँ पे फ्रूट ट्रीज लगेंगे, जहाँ पे लोग जा सकेंगे, जहाँ पे वाटर बॉडी होगी, बच्चों के लिए स्थान होगा, पास में जो फॉरेस्ट की भी लैंड है तो वाइल्ड लाइफ के लिए भी स्थान होगा। तो जयपुर में एक ऐसा शांत प्राकृतिक सुरम्य रमणीय स्थल विकसित करने का प्रयास है जहाँ पे कि क्षेत्रवासी जा सकें, वहाँ पे अपने बच्चों को ले जा सकें, वॉकिंग ट्रैक भी होगा, अपने स्वास्थ्य में भी सुधार करें, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े और जयपुर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिल सके, जयपुर के लंग्स की तरह वो एक्ट करे, लंग्स की तरह काम करे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जोधपुर, पाली, बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने को कहा है। कल जयपुर में शासन सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन, संबंधित उद्योग संघों, सीईटीपी संचालन समितियों को इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जोजुड़ी सहित अन्य नदियों में उद्योगों का प्रदूषित पानी नहीं जाने देने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। बैठक में सीईटीपी संयंत्रों के प्रभावी संचालन, रखरखाव और प्रदूषित पानी के वैज्ञानिक निस्तारण पर भी जोर दिया गया। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की बेहतर देखभाल और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों की नियमित निगरानी, समय पर जांच, परामर्श और उपचार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अगले एक महीने में संभावित प्रसव वाली महिलाओं की समय रहते चिकित्सकीय जांच कराने के निर्देश दिए। श्रीमती राठौर ने 104 एम्बुलेंस सेवा की गुणवत्ता की रैंडम जांच कर फीडबैक लेने तथा कमियों का तत्काल समाधान करने को भी कहा। उन्होंने गंभीर एनीमिया और चांदीपुर वायरस की स्क्रीनिंग पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रदेश के नगरीय निकायों में 24,752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। स्वायत्त शासन सचिव ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन 15 अगस्त से 28 सितंबर तक किए जा सकते हैं। अभ्यर्थी की पात्रता की शर्तें वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये भर्ती राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स 2022 के तहत की जाएगी। पात्र अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। राजस्थान ने अंगदान शपथ अभियान में देश में पहला स्थान हासिल किया है। स्वास्थ्य विभाग के स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो की संयुक्त निदेशक डॉ. चित्रा सिंह ने बताया कि अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सोटो और शिक्षा चिकित्सा निदेशालय की ओर से राज्यव्यापी अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 1,17,000 से अधिक लोगों ने अंगदान की शपथ ली है। और अब मौसम। पूर्वी भारत के ऊपर बने नए तंत्र के असर से प्रदेश में अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं।

आज भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर सहित सभी पूर्वी जिलों में रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में गरज के साथ मध्यम से कहीं कहीं तेज मेघ पड़ सकता है। वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात होने के आसार हैं। इसके अलावा जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में बारिश बढ़ने और कहीं कहीं

सो 1.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं अलीशा चिनॉय द्वारा गाए कुछ गैर फिल्मी नगमे।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

आप सुन रहे थे ये नगमा कार्यक्रम सुगम संगीत में। ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: हांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
0: और राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
0: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में अपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
2: सुंदर प्यारा गीत टिंग टिंग तारा जादुई पिटारा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
0: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं, जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
2: जी।
0: इस क्रम में श्रोताओं, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग, जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
2: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
0: जी। उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
2: बिल्कुल।
0: एक बार की बात है, किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
2: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
0: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है, तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं
2: जी।
0: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
2: श्रोताओं, इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
0: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मित व्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है
2: जी। श्रोताओं, एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
0: आज के युग में श्रोताओं, सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है
2: जी।
0: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मित व्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं
0: जी। श्रोताओं, मित व्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना, और अनावश्यक खर्च से बचना ही मित व्ययिता कहलाती है।
2: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना
0: जी। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं

0: हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
1: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
0: NCERT की 6वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: आज श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों के सीखने की प्रक्रिया

0: हाँ तो बच्चों बताओ सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
4: दीदी ये तो एकदम बुद्धू है।
2: दीदी दीदी ये

0: हमेशा चुप बैठी रहती है।
1: चुप चुप हो जाओ तुम सब, मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता, बताओ बेटा, तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
2: दीदी वो।
1: हाँ बोलो।
2: दीदी
1: बोलो लता, क्या बात है?
3: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती? उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।
4: नमस्ते बहन जी।
5: नमस्ते दीदी।
6: नमस्ते दीदी।
7: नमस्ते दीदी।
8: नमस्ते दीदी।
4: नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते शिखा।
9: अरे दीदी जी आप आइए आइए।
1: नमस्ते बहन जी।
9: नमस्ते, यहाँ बैठिए
1: जी,
9: यहाँ।
1: आज कैसे गरीबों के घर आपने।
9: अरे बहन जी कैसी बात कहती हैं आप,
1: मैं तो कई दिन से सोच रही थी, आज निकाल पाई समय।
9: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
1: हाँ ये तो है।
9: लो लता के बापू भी आ गए।
10: राम राम दादा।
11: हाँ,
10: कैसे हैं आप?
11: राम राम। अरे आप यहाँ? लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत तो ला। इतनी बड़ी ढींगड़ी हो गई पर अक्कल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
10: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
11: अरे बहन जी, ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
10: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
11: अच्छी? और ये छोरी, मुँह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
10: अरे लता आओ बेटा, आओ आओ बैठो, यहाँ बैठो मेरे पास।
2: जी दीदी।
11: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूँ। हाँ
10: जी।
3: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी माँ भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
10: अच्छा बच्चों, ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है?
12: दीदी लता। दीदी लता।
10: लता?
13: जी दीदी।
10: क्या ये लता?
13: जी दीदी।
10: अरे नहीं।
13: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
10: अच्छा।
13: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था। हम सब उसे पकड़ने दौड़े, पर बछड़ा दौड़ता गया, सारे थक गए, पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
10: अच्छा
13: जी दीदी।
10: लता ये सच है क्या? अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भारी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वारी पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने।
2: पापू मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो? मैं पगली नहीं हूँ।
1: देखा, इनाम पाकर कैसी जबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है, ठीक?
3: नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या बातें हो रही है बेटी से?
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
3: हाँ दादा, और खासकर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
3: और दादा आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं? इसमें हमने क्या ध्यान देना है? आपने ध्यान देना है, वो आप दे ही रही हैं।
3: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं?
1: हाँ बिल्कुल।
3: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और, चाहे मैं क्यों ना हो, कर सकता है भला?
1: नहीं जी नहीं।
3: तो दादा, अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
1: पर बहन जी मैं क्या करूं? देखो इसकी किताबें वर्दी।
3: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी।
3: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा?
1: वो
3: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
1: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है?
3: दादा, कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
1: है?
3: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
1: बहन जी मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
3: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा।
1: जी
3: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
1: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े हूँ, बाप हूँ बाप।
3: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।

0: देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी न रखें।
1: अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
2: हाँ हाँ,
1: पता है मेरी मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
2: अच्छा,
1: उसके सचमुच के बाल है।
2: ओहो,
1: और एक कंघी भी है।
2: अरे सच? फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
1: ठीक है।
3: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूँ।
1: ठीक है आ जाना।
2: अच्छा, मैं भी आ जाऊँ लता।
1: हाँ हाँ,
3: मैं भी आ जाऊँ लता।
1: हाँ हाँ, तुम भी।

आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: बनाए खुशियाँ, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

0: माही चैनल है। प्रातः के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
1: फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। फोटोग्राफी को मारो गोली।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
3: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: सेहतनामा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष का।
2: नमस्कार।
1: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह।
2: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था
1: जी,
2: काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी। लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें यहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है
1: जी जी।
2: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
1: क्या बात,
2: शुक्रिया एक बार और।
1: डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टरी का सफर है, ये किस तरह शुरू हुआ था? बचपन से ही आपको दिलचस्पी थी? परिवार में डॉक्टर थे?
2: नहीं, हमारे परिवार में मेरे पिताजी माताजी दोनों पीएचडी थे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था। मेरे पिताजी को एक जुनून था मुझे डॉक्टर बनाने के लिए। मुझे एक्चुअली डॉक्टरी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था।
1: ओके।
2: मुझे फोटोग्राफी करनी थी एक्चुअली।
1: हाँ हाँ।
2: और मैंने बीएससी भी लिया था और दो साल बीएससी के बाद एक दिन पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरी एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दी।
1: ओके।
2: अच्छा, उस जमाने में ऐसी बात थी कि ऐसे आजकल के जैसे नहीं है कि माता पिता को हम ना बोल सकते थे। दूसरी बात थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मेडिसिन में एडमिशन हो गई मेरी। लेकिन पहले तो जब मेडिसिन में गया तो यही था कि चलो एक कोर्स है, हमको इसको खत्म करना है, वरना ना करे तो 12th स्टैंडर्ड पास हो, आगे आपको नौकरी क्या मिलेगी।
1: बिल्कुल।
2: तो यही था कि जब से मेडिसिन में गया, और मैं ऑनेस्टली कहता हूं पहले साल तो काफी मुश्किल होते हैं सभी डॉक्टर्स के लिए
1: जी जी,
2: कि एनवायरमेंट बहुत अलग रहता है, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता
1: जी जी।
2: पहले साल में जब आप एनाटॉमी में जाते हो और आपको एक साल लिटरली कैडेवर या डेड बॉडी के साथ आपको डिसेक्शन करनी होती है, वो आपको बहुत ही, इट्स अ डिफरेंट ट्रेनिंग और आपको वो अलग तरह के इंसान बना देता है। क्योंकि आप इंसानों के साथ, बाद में आप उनकी जिंदगी के साथ या किसी भी चीज, उनकी

0: बीमारियों के साथ आप काम करते हैं। एक टाइम अंदर उसके पेशे में गया तो बहुत पसंद आया, और अभी तो क्या कहते हैं, अभी 40 साल के ऊपर हो गए और आंख का डॉक्टर बनने के बाद तो 35 साल हो गए।
1: जी जी।
0: खुद की प्रैक्टिस 30 साल हो गए, तो ऑब्वियसली बेहद पसंद है, इसीलिए हूँ अभी तक इसके अंदर।
1: ये जो आंखों के डॉक्टर होते हैं क्या बोलते हैं उनको, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट,
0: जो टिपिकल टर्म है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है
1: जी।
0: ऑप्थेल यानी आए, तो आई सर्जन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक ही चीज है
1: जी। इस समय में सबसे बड़ी आंख की समस्या क्या चल रही है?
0: मेरे हिसाब से सबसे बड़ी आंख की समस्या जो हम आजकल देख रहे हैं, जो पिछले 10 साल में और पिछले 5-7-8 साल कोविड के बाद सबसे ज्यादा हुई है, वो आंख का स्ट्रेन, आई स्ट्रेन जो हम कहते हैं
1: जी। बिल्कुल।
0: जैसे इवन पहले कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते थे, लेकिन अभी बच्चों में भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम। दूसरी बात है क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज हो गए हैं, आप अगर पूछें कि उनको, बच्चों को आजकल बाहर जाके खेलने के लिए न जगह है न खेलते हैं, तो उनकी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा है। जब घर आते हैं तो या तो टीवी है या मोबाइल है या पैड है, तो उसके वजह से आंखों की बीमारियां जो है रिलेटेड टू आंख की थकावट या आंख की स्ट्रेन, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी बात है कि हम छोटे बच्चों में आजकल चश्मे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसी के वजह से। पहले जमाने में जब हम बड़े हो रहे थे तो ज्यादातर बाहर की एक्टिविटी थी, आंख की एक्टिविटी रीडिंग और राइटिंग थी। टेलीविजन तो शायद 70s-80s के बाद ही अपने देश में प्रचलित हुआ, तो इतना ज्यादा आंख का काम नहीं था, प्लस लोग टाइम पे सोते थे, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी। आजकल सोते भी कम है, आंख का काम पूरे टाइम कंप्यूटर्स पे रहता है, या जो कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते हैं या आई स्ट्रेन कहते हैं, आंख की थकावट कहते हैं, ये आजकल में सबसे ज्यादा, पहले तो हम लोग कहते थे कि हाँ स्ट्रेन है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं ये एक बीमारी की तरह और एक लिटरली एपिडेमिक की तरह फैल रहा है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो आई स्ट्रेन है इसके भी कई प्रकार होते होंगे। एक जो अमूमन डॉक्टरों के पास जाएं जब चश्मा चेक कराने, तो कहते हैं आपकी आंखों में ड्राइनेस हो रही है, क्या आप कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: ड्राइनेस भी उसका एक रूप है?
0: ड्राइनेस रूप है, इसका एक बहुत सिंपल कारण है कि जब कभी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या किसी जगह पे हम ज्यादा ध्यान देके देखते हैं तो हमारा ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आंख हम बंद खुली करते हैं वो कम हो जाता है। नॉर्मली अपने आंख में आंसू का एक पर्दा है जो अपनी आंख को गीला रखता है, और हर टाइम जब अपनी पलक बंद होके खुलती है तो एक नया पर्दा तैयार हो जाता है जो अपनी आंख को नॉट ओनली प्रोटेक्शन करता है, उसको सुरक्षित रखता है, लेकिन उसको गीला भी रखता है, क्योंकि आंख का गीला रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली सामने की कांच जो है, जो कॉर्निया है जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है, जो कीकी है आंख की या खिड़की है, वो उसको गीला रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखें कि अगर आप कंप्यूटर के सामने अगर आप कॉन्स्टेंटली आप बैठे और काम करते रहें तो आपका ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आंख की पलक खोल बंद होनी है वो कम हो जाती है, और उसके वजह से आपके आंख का पर्दा जो है जल्दी टूटता है और आंख में ऐसे लगता है कि कुछ गया है, कचरा है, हम आंख रब करते हैं और उसके बाद फिर वो ड्राइनेस हो जाती है। तो अगर आप मुझे पूछे इसका इलाज यही है, सबसे कहता हूं कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी जगह पे अभी लैपटॉप या कंप्यूटर्स हैं, कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: जब आप कंप्यूटर पे देखते हैं या लैपटॉप देखते हैं, एटलीस्ट 15-20 मिनट के बाद आंख, एक मिनट के लिए आंख बंद कीजिए।
1: फॉर्मूला बताएगा
0: 20-20-20 फॉर्मूला है
1: जी,
0: कौन फॉलो करता है भगवान जाने, कोई अपना घड़ी देख के तो 20 मिनट के बाद नहीं करेगा, लेकिन एक जनरल है कि आप एक घंटे में एक टाइम तो एक 2 मिनट तो ब्रेक ले सकते हो ना।
1: ऑफकोर्स अगर इच्छा है और अपने प्रति सरोकार है तो ये किया जा सकता है।
0: और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि अभी सारे स्क्रीन जो है वो एलईडी है, पहले एलसीडी थे
1: जी,
0: कोई साल पहले ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले तक एलसीडी स्क्रीन्स थे, अभी एलईडी स्क्रीन्स आए हैं, और एलईडी स्क्रीन्स जो है उनमें हम ज्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम देख रहे हैं,
1: वो ज्यादा चमकीली होती है,
0: ज्यादा चमकीली रहती है, तो उसका जो ब्राइटनेस रहता है, तो ग्लेयर जो आता है उसके वजह से तकलीफ ज्यादा होती है
1: जी।

0: आंखों की ड्राइनेस के अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आंखों के स्ट्रेन से जुड़ी हुई हैं, ओवर यूज ऑफ स्क्रीन या एक्सपोजर से जुड़ी हैं?
1: सो ड्राइनेस तो एक है ही, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सरदर्द
0: जी,
1: क्योंकि आप एक आसान चीज है कि अपनी आंखें जो है वो दिमाग की खिड़की है, अगर आप आंखें बंद कर दें तो दिमाग को कुछ दिखाई नहीं देता। दिमाग जो चीज है वो 24 घंटे काम करता है, जब हम सोते भी हैं तभी भी अपना दिमाग चल रहा है, आंखें बंद है तो दिमाग चाहता है कि 24 घंटे चले लेकिन आंख थक जाती है। तो इसके वजह से थोड़े टाइम बाद आंखों में जब थकावट ज्यादा हो तो उसके बाद सर में दर्द होने शुरू होता है, क्योंकि आंख के जो अंदर के जो स्नायु है, जो मसल्स है, वो थक जाते हैं और वो थकने के बाद फिर वो सरदर्द देने चालू होते हैं। सो सरदर्द भी एक है, और हमारे पास पेशेंट आप विश्वास नहीं करेंगे कि सीटी स्कैन एमआरआई करके आते हैं सरदर्द के लिए।
0: अच्छा।
1: और देखा जाता है कि तो छोटी सी या तो चश्मा है, हम अभी काफी लोगों को प्रोटेक्टिव ग्लासेस देते हैं कंप्यूटर्स के लिए भी, बच्चों में भी देते हैं जिससे आंख के मसल्स थोड़े रिलैक्स हो जाएं।
0: जी,
1: तो यही है कि हेडेक्स जो है वो बहुत कॉमन है, इरिटेशन आंख में, खुजली आती रहती है आंख में, क्योंकि आंख थक जाती है तो खुजली आती है। और हम लोग ये हेडेक्स को भी, जो सर में दर्द है, इसको ज्यादातर 4 PM हेडेक्स कहते हैं। जब हम पेशेंट से पूछते हैं कब सर में दर्द हो रहा है आपको, तो एटलीस्ट 90% बोलेंगे, जिनको इसके वजह से तकलीफ है बोलेंगे 4:35 के आसपास होता है। तो 4 बजे का क्या रहस्य है? क्योंकि सुबह के टाइम हमारी नींद हुई रहती है तो आंखें फ्रेश रहती है, तो शाम तक वो थक जाती है।
0: ओके,
1: अब समझिए जैसे अगर आपको चलना हो पूरे दिन, अब शुरुआत तो कर लेंगे, आराम से चलते जाएंगे, लेकिन
0: सस्टेन करना मुश्किल
1: होता है, तो लोग भूल जाते हैं कि आंखें भी शरीर का हिस्सा है, वो भी थक जाती
0: वो भी थक जाती है।
1: जी,
0: क्या बात है। तो ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जब हम स्क्रीन के सामने, क्योंकि अब स्क्रीन के बिना जीवन गुजारना मुश्किल है, हमें ये मान लेना चाहिए कि स्क्रीन से छुटकारा तो अभी नहीं होगा, तो उसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। ड्राइनेस ऑफ आई की हमने बात की और आपने कहा कि आंख के स्ट्रेन होती है, सिरदर्द होता है, ये कुछ चीजें आई। एक चीज जो मैंने कुछ लोगों में देखी है वो आंखों में कोई प्रेशर होता है, जिसके लिए कुछ लिखने पढ़ने वाले लोग जो काम करते हैं उनकी आंखों में प्रेशर हो जाता है?
1: नहीं, आंखों में, सभी के आंख में प्रेशर है।
0: जी जी,
1: अगर आपके खुद के आंख को आप हाथ लगाए

0: तो यू विल फील जो शेप जो रहता है
1: जी
0: वो आंख के प्रेशर के वजह से ही रहता है। ये आंख के अंदर तीन चार लेयर्स पानी के हैं, बाहर जैसे मैंने कहा आंसू का लेयर है, फिर अंदर का सेकंड लेयर जो रहता है जो अपने कांच के पीछे रहता है उसको एक्वियस बोलते हैं।
1: जी जी
0: वो अपने आंख का प्रेशर मेंटेन करता है, वो एक जगह तैयार होता है और एक जगह से बाहर निकलता है। वो एग्जैक्टली अपने ब्लड प्रेशर जैसे है, जैसे अपना ब्लड प्रेशर यूजुअली 80 to 120 हम नॉर्मल सोचते हैं, आंखों का वो 12 to 18 या 20 नॉर्मल रहते हैं। उसके जैसे हम बीपी मेजर करते हैं वैसे आंख का प्रेशर भी मेजर किया जाता है। जिन लोगों का आंख का प्रेशर बढ़ता है वो एक स्पेसिफिक बीमारी में बढ़ता है जिसको ग्लोकोमा कहते हैं,
1: जी जी
0: ग्लोकोमा या कांच बिंदु जिसको कहा जाता है। काफी प्रकार रहते हैं उसके अंदर, लेकिन वो एक अलग सी बीमारी है।
1: अच्छा
0: हमारे हिसाब से तो आंख के स्ट्रेन के वजह से आंख के प्रेशर बढ़ने का कोई कनेक्शन नहीं है,
1: जी
0: वो
1: जी
0: एक अलग सी बीमारी है, वो इनहेरिटेड बीमारी है, ज्यादातर माँ बाप से आती है। जिस तरह से आपकी आंखें हैं उनका शेप साइज उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, और कोई बीमारी हो जैसे डायबिटीज वगैरह उसके वजह से भी वो हो सकती है। तो वो ज्यादातर 40 के बाद ही हम देखते हैं पेशेंट में, ऐसे नहीं है बच्चों में, पैदाइशी बच्चों में भी है लेकिन वो बहुत रेयर रहता है। ज्यादातर जो है वो 40 के बाद हम लोग हर पेशेंट का आंख का प्रेशर चेक करते हैं। जैसे आपके डॉक्टर के पास जाइए तो 40 के बाद आपका बीपी भी चेक करेंगे, अब हमारे पास आइए आपका आंख का प्रेशर हम चेक करेंगे।
1: अच्छा।
0: क्योंकि उस बीमारी में वो आंख में सबसे खतरनाक बीमारी है
1: जी जी
0: ग्लोकोमा जो है। मैं थोड़ा डाइग्रेस करता हूं आपके सवाल से, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ग्लोकोमा जो बीमारी है वो आंख में सबसे खतरनाक बीमारी है। उसमें क्या होता है, आंख का प्रेशर बढ़ते जाता है और पेशेंट को पता नहीं चलता। ब्लड प्रेशर में आपको सरदर्द होता है, चक्कर आती है अगर आपका प्रेशर 200 के ऊपर जाए, आंख का प्रेशर जब तक कि 30 के ऊपर नहीं जाता कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जो नस है वो धीरे धीरे करके खत्म होती है।
1: ओ गॉड
0: तो
1: जी
0: क्योंकि आंख का जो एक सिंपल चीज है जो अपनी जो नस है वो आंख का हिस्सा नहीं है, वो दिमाग का हिस्सा है। दिमाग आंख में खुलता है, ऑप्टिक नर्व आती है, फिर वो रेटिना रहता है, तो वहां पे लाइट पड़ती है, वहां से दिमाग तक लाइट जाती है। तो अगर आप सोचे कि आपकी उंगली है, आपने उसको ऐसे कस के पकड़ लिया तो क्या होगा, धीरे धीरे करके उसका खून बंद हो जाएगा,
1: बिल्कुल
0: फिर नस सूख जाएगी, फिर जो उंगली है वो खत्म हो जाएगी। ग्लोकोमा एकदम सरल भाषा में यही है कि
1: ओके
0: आंख का प्रेशर जो है वो बढ़ते रहता है, पेशेंट को पता नहीं चलता, धीरे धीरे करके पीछे की नस खत्म हो जाती है,
1: सूख जाती है।
0: सूख जाती है और उसका कोई इलाज नहीं है।
1: ओ
0: अनफॉर्चुनेटली अगर पीछे की नस सूख जाए तो उसके लिए कहीं पे भी इलाज नहीं है।
1: तो रोशनी गई।
0: रोशनी गई
1: एक उम्र के बाद,
0: जी,
1: चूंकि पूरे देश और दुनिया में अलग अलग उम्र के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे
0: जी
1: हैं, ये बहुत जरूरी बात है कि एक उम्र के बाद कैसे और किस तरह की जांच कराएं कि ये स्थिति लोगों के साथ ना आए।
0: अगर एक चीज है कि आपके फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है या कांच बिंदु की हिस्ट्री है तो आप अवश्य इवन 30-35 के बाद जांच कराएं,
1: उसका
0: और
1: फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होनी चाहिए?
0: साल में एक टाइम
1: जी
0: बेसिक जो रहते हैं वो टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। अगर चेकिंग में ही थोड़ा पता चल जाता है ये शुरुआत हो रही है नहीं, जैसे अगर आप, मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूं, आपके माँ बाप को डायबिटीज है तो आप चेक करवाएंगे ना,
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये सेम चीज है,
1: कॉमन सेंस ये
0: कॉमन
1: आप
0: सेंस
1: लोगों
0: है।
1: के, तो ये
0: चालीस
1: हमें दिमाग में बिठा लेना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: 40 के बाद तो करना रेगुलर चेकअप्स में हो ही जाता है,
1: जी
0: लेकिन ऐसे नहीं है कि अगर माँ बाप को है कोई तो आपको आनी है।
1: हाँ, पर इसकी संभावनाएं हैं।
0: संभावना 50% है माता के साइड से या पिता के साइड से,
1: जी जी
0: सेम डायबिटीज में है। अगर आपके माता पिता को डायबिटीज है तो ऐसे नहीं है कि आपको होगा, क्योंकि जेनेटिक्स कहां पे काम करती है ये किसी को भी नहीं पता।
1: जी
0: हमारे पास पेशेंट आके बोलते हैं माता पिता को भी डायबिटीज नहीं, मुझे कहां से आ गया, जेनेटिक्स भगवान जाने कहां से आ गया,
1: सही बात
0: कहीं
1: है,
0: मामा मामी दादा दादी नाना नानी
1: कहीं
0: कहीं
1: से
0: से भी आ
1: भी
0: सकते हैं।
1: पूरे फैमिली
0: तो
1: ट्री में।
0: बीमारियां जो है वो जो जेनेटिकली आती हैं हमको, विरासत में बीमारियां तो ज्यादातर आती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो भी आती हैं अगर उसका जांच किया जाए और इजीली कंट्रोल हो सकती हैं, और उनको हम पहले से अगर पता चले कि पेशेंट है, जिंदगी भर मेंटेन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने देखे हैं पेशेंट जिनको हम दवाई पे रखे हैं या एक्सट्रीम चीजें में जिनकी शस्त्रक्रिया हुई है ग्लोकोमा के लिए, बिल्कुल ठीक है, रेगुलर चेकअप करते हैं, साल में एक टाइम आते हैं, छह महीने एक साल उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन अपनी आंखों के लिए साल में एक टाइम तो एक दो घंटे निकालिए।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। तो एक उम्र के बाद सभी लोगों को जिनके माता पिता को ग्लूकोमा की समस्या है वो भी जांच कराएं।

0: और जिनको नहीं है वो भी
1: जांच के बाद जरूरी तौर पर ये साल में एक बार ये जांच करा लें, आंखों का प्रेशर वगैरह जब भी आप अपने आंखों का नंबर चेक कराने जाते हैं। यहां एक दिलचस्प बात ये है कि आज ही किसी ने कहा, बहुत ही मजेदार बात है, कि वो जो चश्मा बनाता है क्या वो आंखें चेक करता है?
0: बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा
1: जी।
0: देखिए क्या है कि जब से आंखों के डॉक्टर आए हैं उन्होंने खुद से कभी चश्मा नहीं बनाया
1: जी।
0: डॉक्टर जो पहले जो थे वो अपनी दवाई घुट के देते थे, आपको अगर याद रहेगा हमारे जनरेशन में, तो हम भी सीखे हैं कैसे दवाई बना के पूड़ी में पेशेंट को हम लोग देते थे, अभी तो सारे प्रिस्क्रिप्शन आ गए हैं
1: जी जी।
0: तो जब कभी आप कह सकते हैं जो चश्मे की दुकान है वो केमिस्ट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप समझे, जो प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं ऐसे नहीं है कि उनको ट्रेनिंग नहीं है
1: जी,
0: लेकिन हम जो डॉक्टर आपको जो चेक करके प्रिस्क्रिप्शन देता है वो प्रिस्क्रिप्शन आप वहां पे लेके जा रहे हैं चश्मा बनवाने के लिए
1: जी।
0: अभी काफी टाइम हम देखते हैं कि मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन दी है पेशेंट को
1: जी,
0: पेशेंट चश्मा बनवाने गया है और प्रिस्क्रिप्शन बदली होके पेशेंट मेरे पास दोबारा आया है और मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने वहां पे गया चश्मे वाले की दुकान में, कहा हम मुफ्त का आपके आंख का चेकअप कर रहे हैं नंबर का, और उसके बाद उन्होंने मेरी प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर दी, अभी मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे दिखाई नहीं देता। अब मुझे बताइए इसमें गलती किसकी है?
1: पेशेंट की, बाकायदा कि वो एक टेक्नीशियन से डॉक्टर का काम ले रहा है।
0: एक बात, मैं एक सरल प्रश्न हर पेशेंट से पूछना हूं कि अगर मैंने आपको सपोज एक दवाई लिख के दी, सिंपल चीज है, कोई आपको बुखार आ गया और मैंने एक एंटीबायोटिक आपको लिख के दिया और आप केमिस्ट के पास गए, उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं है, ये गलत है, मैं आपको दूसरी देता हूं, क्या आप वो वाली एंटीबायोटिक एक्सेप्ट करेंगे उस केमिस्ट से?
1: नहीं, बल्कि डॉक्टर को अगर किसी तरह का संशय है तो फोन करेंगे।
0: एग्जैक्टली,
1: ये ले रहा है मैं लूं कि नहीं।
0: एग्जैक्टली, तो अगर ये ऐसे है तो आंख के बारे में भी वही है, आजकल इतने जो चेन्स वगैरह जो निकले हैं
1: जी,
0: मुझे कोई विपत्ति नहीं है उसके अंदर। हाँ, वो काफी वहां पे जो काम करते हैं वो भी ट्रेंड है, लेकिन
1: डॉक्टर नहीं है।
0: डॉक्टर नहीं है जी, ऑप्टोमेट्री एक अलग कोर्स है। हाँ, वो पैरामेडिकल कोर्स है, आई एम नॉट बिलिटलिंग इट, वो बराबर से उनको पढ़ाया जाता है, मैंने खुद ऑप्टोमेट्री कॉलेज में सिखाया है काफी साल पहले, लेकिन वो डॉक्टरी नहीं है। जब हम आपका जो चेकअप करते हैं उसके अंदर सिर्फ चश्मा नहीं देते, आंख की पूरी जांच होती है, आगे से पीछे तक पूरी जांच होती है, चश्मा उसका एक सिर्फ भाग है
1: जी।
0: लेकिन अभी शॉर्टकट की दुनिया है, सब चलता है। पहले भी ठीक था, लेकिन आजकल जिस तरह आंखों का उपयोग और दुरुपयोग हो गया है, थोड़ी तो जांच पड़ताल करना और थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ये। अगर आपका नंबर है, आप भी चश्मा पहनते हैं, मैं भी पहनता हूं, ओके, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको गलत प्रिस्क्रिप्शन मिले और अगर आप आपका काम बराबर कर ना पाए तो उसके अंदर तकलीफ आपको भी होगी और जहां पे आप काम करते हैं उनको भी होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो मेरे हिसाब से तो आंख का नंबर जो चश्मे का नंबर है वो परफेक्ट होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो एक सामान्य विचार है ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, इस सबसे बचत कर लेते हैं, चश्मे वाले से ही चेक करा लेते हैं
0: जी।
1: ये जो है ये मुसीबत की जड़ है, इससे बचना
0: जी,
1: चाहिए।
0: नहीं, टू ईच देयर ओन, हम सिर्फ कह सकते हैं कि हमें जो सही लगता है वो हम कह सकते हैं, उसके आगे चश्मे में होता है, लेकिन बाकी चीजें तो ऑफकोर्स, बाकी कोई भी आंख की समस्या हो तो आंख के डॉक्टर के पास तो जरूरी आना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब भी आंखों की जांच कराने जाते हैं, बल्कि ये कहें कि चश्मे की जांच कराने जाते हैं, तो डॉक्टर सिर्फ नंबर चेक नहीं करता
0: जी,
1: और दूसरी तरह की भी जांच होती है, वो दवा डाल के कहते हैं कि प्रेशर चेक कर रहे हैं।
0: हाँ,
1: वो बिठाया जाता है बहुत देर।
0: देखिए, ये एक साइंस है
1: जी,
0: जो आंख का नंबर चेक करते हैं। दूसरी बात है कि जब कभी पेशेंट आता है तो उसे काफी सवाल पूछे जाते हैं कि आप, और स्पेशली आजकल, पहले मैं कहता था जब मैंने शुरू किया था तो शायद ये सवाल भी नहीं पूछते थे इतना, ज्यादातर लोग आते थे दूर का चश्मा नहीं है या दूर का दिखाई नहीं देता, आप चश्मा दो, या तो रीडिंग के लिए 40 के बाद जो आता है वो चश्मा। अभी वैसे नहीं है, अभी पूछना बहुत जरूरी है कि आप काम क्या करते हैं, कोई भी हो, बच्चों में तो हम जानते हैं स्कूल की वजह से, लेकिन 20 के ऊपर अभी सारे बच्चे काम कर रहे हैं, 20 से लेकर 80 तक लोग काम कर रहे हैं अभी। तो जब कभी हमारे पास आते हैं तो सवाल पहले मेरा होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, उसके मुताबिक भी चश्मे का नंबर जो हम लोग काफी टाइम एडजस्ट करके देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप मुझे पूछे नॉर्मल विजन 6x6 या 20x20 है, किसको चाहिए आजकल? आप खेती में काम कर रहे हैं क्या?
1: नहीं।

0: शहर में किसको 20x20 परफेक्ट विजन चाहिए आप बताइए।
1: जी जी बिल्कुल,
0: वो पुराना कंसेप्ट है, वो 100 साल पहले का है, 50 साल पहले का कंसेप्ट है।
1: जी, जी जी,
0: लेकिन अभी भी उसी पे अड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वी हैव टू ऑल्सो इवॉल्व विद टाइम। हम चाहते हैं कि स्पेशली आजकल इतना फर्क, जो आपके पहला ही सवाल जो आपने मैंने पूछा था आई स्ट्रेन की वजह से, कि जो भी हमारे पास आ रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं
1: जी,
0: उसके मुताबिक। और अगर हमसे काफी टाइम पूछा जाता है, कोई लोग कहते हैं ना, स्पेशली लेडीज कहते हैं हम पे घर पे हैं, तो मैं उनसे वो भी पूछता हूँ घर पे करते क्या है। काफी लेडीज घर पे भी बहुत काम कर रहे हैं, जो यू नो वर्क फ्रॉम होम तो होता ही है, लेकिन कोई सिलाई काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, पार्ट टाइम काम कर रहा है। तो ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ गृहिणी, और गृहिणी की भी बहुत
1: जिम्मेदारी
0: और काम रहते हैं उनका भी, तो क्लियर दृष्टि तो सभी को चाहिए ना।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे नहीं बोल सकते कि आप घर बैठ रहे तो आपकी क्लियर दृष्टि नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बातें आंखों की हो रही हैं तो गाने भी आंखों के होने चाहिए।
0: अच्छा।
1: तो यहाँ गाना सुनते हैं।
0: ओके, जरूर,
1: है ना।
0: थैंक यू।
1: आंखों में क्या जी फिल्म का नाम? 9-2-11।
0: बहुत बढ़िया।

0: डॉक्टर साहब, इस समय जब हम बातें कर रहे हैं और बातों का सिलसिला आंखों के स्ट्रेन से शुरू हुआ, हम ग्लूकोमा तक गए और ये बात आई कि कई लोग आंखों का चश्मा बनवाने वाले लोगों से आंखों का चेकअप करा लेते हैं, जो कि गलत है। यहां तक हम आ चुके हैं अलग अलग बातें करते हुए। आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में ये कहा था कि अब छोटे बच्चों में भी बहुत सारी समस्याएं होने लगी हैं, जिसमें स्ट्रेन भी शामिल है। वो बच्चे जो खुद नहीं समझ सकते कि उनको आंखों की समस्या हो रही है, पेरेंट्स को किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए?
1: बहुत ही बढ़िया सवाल है। हम आजकल बच्चों को काफी आंख के

0: और उसके वजह से जो बच्चे हमारे पास चेकिंग के लिए आते हैं, स्पेशली शहरों में, और आजकल छोटे छोटे गांव में भी इट इज वो बहुत रेयर हो गया है कि बच्चे को नंबर है और चश्मा नहीं दे रहे हैं. लेकिन एक सीधी चीज है, देखिए, देखने के लिए अगर बच्चा घर में भी टीवी देखना हो, कुछ नजदीक आ रहा है बहुत, आप उसको बोले नहीं पीछे जाके वे, तो लेकिन तो भी बच्चा आगे आ रहा है देखने के लिए, तो इसका ये हो सकता है कि उसको पीछे से दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट, या तो जब कभी वो किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, किताब बहुत नजदीक लेके पढ़ रहा है. तो ये एक चीज होती है कि उसको जो नॉर्मल जितना अंतर रखने चाहिए वो अंतर पे वो दिखाई नहीं दे रहा बच्चे को, तो बच्चा ज्यादा नजदीक ले रहा है. ये दूसरी चीज है, टीवी के नजदीक जाना या तो बहुत नजदीक से लेके पढ़ना. तीसरी चीज है, काफी टाइम आप देख सकेंगे कि बच्चे की एक आंख थोड़ी देखते टाइम टेढ़ी होने चालू हो जाती है, क्योंकि ये ज्यादातर होता है अगर दोनों आंख में नंबर में फर्क हो तो हमको देखने के लिए दोनों आंख चाहिए, 360 डिग्रीज जो हम कहते हैं इमेज आने के लिए. तो अगर दोनों आंख में नंबर का फर्क हो तो जो दिमाग है उसको वो इमेज उसका स्प्लिट हो जाता है, दो हो जाता है, तो उसको सीधे करने के लिए दिमाग जो है एक आंख को अंदर ले लेता है, तो जो हम आंख के टेढ़ापन या स्क्विंट कहते हैं वो है. और अगर नंबर बहुत ज्यादा हो तो दिमाग कहता है ठीक है, इस आंख से देखने में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं इसको बाहर निकाल देता हूं, तो आंख बाहर निकल जाती है. आपने दोनों देखा रहेगा, बच्चों में एक आंख अंदर आते हुए या एक आंख बाहर जाते हुए.
1: जी,
0: तो ये जो है, अगर माँ बाप को ये दिखाई पड़े तो उनको किसी भी आंख के डॉक्टर को जाके बच्चे का चेकअप करना बहुत जरूरी है.
1: और इसके अलावा क्या आंखों की कोई विरूपता होती है जिस पर नजर रखना चाहिए, पैदाइशी कोई दिक्कत है?
0: पैदाइशी दोबारा आजकल चेकअप हो ही जाता है
1: जी
0: मैटरनिटी के बाद, लेकिन अगर बच्चा फोकस नहीं कर रहा, या तो बच्चे की जो प्यूपल रहती है जो कि बीच की किकी रहती है उसमें कोई सफेदी वगैरह उनको दिखाई दे तो पता चले कि आंख में कोई जरूर प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो तुरंत उनको जरा भी रुकने नहीं चाहिए.
1: जी कई बार तिरछी आंखें होती हैं तो उन्हें किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
0: वही कह रहा हूं, तिरछी आंखें जो है जिसको स्क्विंट कहते हैं, जो आपको मैं कह रहा था,
1: जी
0: तिरछी आंखें नंबर के वजह से ही होती है ज्यादातर, कमजोरी की वजह से भी होती है. अगर दोनों आंख में से किसी आंख के मसल्स कमजोर हो तो वो आंख बाहर घूम जाती है, तो जिसको हम लोग तिरछी आंखें या स्क्विंट कहते हैं. शुरुआत उसकी चेकिंग से होती है, अगर नंबर हो तो नंबर दिया जाता है, नंबर से करेक्शन होता है, अगर नंबर से भी उसके साथ भी आजकल काफी नए नए ट्रीटमेंट्स आए हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स भी आए हैं जिसकी वजह से हम बच्चों को फोकस करने के लिए सिखाते हैं, जैसे कि गेम्स की तरह रहते हैं लेकिन उनको फोकस करने के लिए सिखाते हैं. अगर उससे भी ना हो तो फिर ऑपरेशन करके वो टेढ़ी आंख को सीधी की जा सकती है.

0: जी
1: जो स्क्विड सर्जरी कहते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, चूंकि बच्चों की बातें चल रही हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, हमने ये तो देखा कि आंखों पर दबाव और स्क्रीन का जो असर है वो ना पड़े उसके लिए हमको किस तरह से थोड़े थोड़े देर में ब्रेक लेते रहना चाहिए और वो तमाम चीजें हैं, पर पोषण से जुड़ी चीजें कौन सी हैं जो खास तौर पर बढ़ती उम्र के बच्चों या हम एडल्ट की भी इसमें बात कर लें कि जिससे उनकी आंखों की सेहत बेहतर है?
1: मेरे हिसाब से पेट को और आंखों का कोई कनेक्शन नहीं है मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं
0: जी,
1: वरना हर रोज खाना खाने के बाद हमारा नंबर बदली हो जाता एक नॉर्मल पोषण बहुत जरूरी है जो हम करते हैं, और अगर हम देखें अपने देश में किसी भी देश के कंपैरिजन में जो खाना है वो सबसे बढ़िया है, जिसको संतुलित आहार कहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आप कोई भी घर में जाइए, आप कोई भी कम्युनिटी में जाइए, कोई भी कास्ट में जाइए, कोई भी रिलीजन में जाइए, अगर आप देखें तो अपने पूरे देश में खाना बेसिकली वही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जिसके अंदर बेसिक चपाती है, राइस है, दाल है और सब्जी है। अभी आपके लिए इसके लिए आपको डायटिशियन या साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही एक सबसे बढ़िया संतुलित आहार है
0: जी।
1: तो टाइम पे खाना बहुत जरूरी है जो आजकल नहीं होता, और दूसरी बात है पानी पीना बहुत जरूरी है। आज देख रहे हैं कि वापस उसके वजह से थकावट हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है। सभी बाहर जाइए, बंबई जैसे जगह पे धूप है, अंदर आइए एसी है, डिहाइड्रेशन तो होना है आपको, तो पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी के साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको बाथरूम जाने पड़ेगा, बढ़िया है, आपका उतना ब्रेक हो जाएगा बीच बीच में।
0: बिल्कुल,
1: तो मेरे हिसाब से खाने का संतुलित आहार जो नॉर्मल है आजकल, मैं देख रहा हूं क्योंकि ज्ञान बहुत बढ़ रहा है आजकल, आप भी देखते हैं व्हाट्सएप पे सारे पीएचडी आते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे
0: विद्वान लोग हैं,
1: बहुत ही हमसे बड़े पीएचडी हैं सारे
0: जी।
1: अब बीच में ही मैंने कहां पे एक पोस्ट देखी थी जहां पे किसी ने कहा कि आप आपकी उंगलियां ऐसे रगड़ो तो आपके आंख का नंबर चले जाएगा, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे एक पेशेंट ने आके पूछा
0: ओके
1: डॉक्टर साहब अगर हम आपके ऐसी, मैंने वो पोस्ट देखे मतलब कर लगे रहो बोला कितना टाइम, मतलब लगे रहो आप ही आप मुझे आके बताओ तो मजाक की बात हुई, लेकिन बहुत ही हो रहा है कि आप ये आहार लो तो ये होगा, ये ना लो तो वो होगा। एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है अपने देश में कि सारी सिस्टम अपनी अमेरिकनाइज बहुत हो गई है कि वेस्ट का ही जो है वही सही है, यही डाइट सही है, जीएम डाइट हो या ये डाइट हो, नहीं, अपना देश का डाइट सबसे अच्छा है।
0: बिल्कुल,
1: उसे संतुलित आहार कहते हैं। दोबारा सोच लीजिए जो मैं कह रहा हूं, आपको और कोई डाइट की जरूरत नहीं है, डाइट मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अगर आप ज्यादा कचौरी खाए, बड़ा पाव खाए, पाव भाजी खाए, जलेबी खाए, तकलीफ तो होनी इंस्टेड ऑफ हैविंग इट एज अ चॉइस, अगर आप रेगुलर ले, प्रॉब्लम तो होना ही है आंखों पे इतना ज्यादा। हाँ, डायबिटिक्स में आप जो कहते हैं
0: जी,
1: जब उनकी शुगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली आंखों पे असर होता ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो वो
0: उसके
1: तो
0: लिए अलग तरह की सावधानियां,
1: उसकी अलग तरह की सावधानियां
0: जी। डॉक्टर साहब, चश्मा बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई लोग आजकल बहुत ज्यादा फैशनेबल होते हैं, अलग अलग रंग के टिंट लगवा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल।
1: अच्छा, इसके बारे में आपको एक और एकदम सरल कंपैरिजन देता हूं। आप जब जूते खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं उसमें?
0: कंफर्ट।
1: जो चश्मा आपके नाक के ऊपर और कान के ऊपर अच्छी तरह से बैठे, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, लुक जरूरी है, सभी को लुक पसंद है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके, माँ बाप हमको पूछते हैं चश्मा का नंबर आया कहां से।
0: जी जी,
1: देखिए जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है, और हमने उसको सपोज -3 दे दिया तो
0: जी,
1: पहले तो देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। ऐसे नहीं है, एक बात और गलती डॉक्टर की है, ये भी हमारे के ऊपर के, अब कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं है, ऐसे नहीं है। जैसे मैंने कहा जेनेटिक्स बहुत बड़ा काम करता है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरी बात ऑल्सो, जैसे मैंने कहा आजकल का एनवायरमेंट बहुत बड़ा काम करता है, और तीसरी बात है आंख का नंबर आंख के शेप और साइज के ऊपर आता है
0: जी।
1: वो आपकी हाइट या जूते के नंबर की तरह। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके जूते का नंबर जब आप बचपन में बढ़ रहा था तो माँ बाप ने जाके वहां पे दुकान वाले से झगड़ा तो नहीं किया, इसका 6 नंबर 7 कैसे हो गया?
0: हाँ बिल्कुल, तो फिर आप
1: तो ये
0: भी सवाल नहीं उठा सकते।
1: नहीं, सवाल नहीं, समझना जरूरी है, सवाल तो जरूर उठाइए।
0: जी जी,
1: हमारे देश में सबसे बड़ी आप समस्या जानते हैं कौन सी है? जो मैं सारे मेरे पेशेंट को कहता हूँ, पेशेंट सवाल नहीं पूछते और डॉक्टर जवाब नहीं देते।
0: ओके, बिल्कुल बिल्कुल,
1: सवाल पूछिए, सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन समझना जरूरी है। यह कोई बीमारी नहीं है, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं।

0: जी,
1: और ये उल्टा साइंस है, जो आंख के नंबर कम पड़ रहे हैं हम चश्मे से उसको बाहर दे रहे हैं, उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसको हम जीरो कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही जो इमेज है, कोई भी इमेज हो,
0: वो क्लियर बनेगी,
1: वो क्लियर दिमाग तक जाएगी। दिमाग को क्लैरिटी चाहिए
0: बिल्कुल
1: शेप और साइज में। ये हमारे 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स से हम सब पढ़े हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर्स दोबारा देख लीजिए, जो मैं कह रहा हूं आराम से आपको समझ जाएगा। तो ये नहीं है, और फिर पूछते हैं इनका नंबर कितना बढ़ेगा। मेरा दूसरा सवाल होता है इनकी हाइट कितनी बढ़ेगी, मुझे नहीं पता। सवाल नंबर अलग चीज है, नजर अलग चीज है
0: जी।
1: जब मेरे पास कोई बच्चा आता है या कोई पेशेंट आता है, मेरा ध्यान सिर्फ नजर पे है, नंबर पे नहीं है। समझ लीजिए सिर्फ अंधे को नंबर नहीं है। अच्छी तरह से समझ लीजिए, सिर्फ अंधे जो है बेचारे उनको नंबर नहीं है, हमको और आपको सबको नंबर है, इसलिए दिखा जाता है
0: जी जी।
1: ये रिफ्रैक्टिव सिस्टम है
0: जी जी जी,
1: जो हमारे को 8th और 9th में पढ़ाई गई है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर्स की। तो ये रिफ्रैक्टिव सिस्टम में अगर ये ना हो तो किसी को दिखाई नहीं देगा
0: बिल्कुल।
1: उम्र के साथ इसमें बदलाव आता है, पहले अगर दूर का नंबर हो, 40 के बाद रीडिंग नंबर आता है, क्योंकि आंख के अंदर के मसल्स में, लेंस में, सब में चेंज रहते हैं। ये सारे उम्र की वजह से होने वाले बदलाव हैं। इसके साथ हम झगड़ा नहीं कर सकते, इसके साथ लड़ नहीं सकते। जो भी नंबर हो, काफी टाइम होता है, माँ बाप बोलते हैं, आजकल बहुत कम हो रहा है, बिकॉज लोग काफी अभी समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम क्या है। और ये मुझे 15-20 साल पहले ज्यादा दिखाई देता था। अच्छा, किसी ने कहा चश्मा मत पहनो, देखते हैं। ये सबसे खतरनाक चीज है। देखते क्या है, बच्चे को दिख नहीं रहे, देखते क्या है। बच्चे को दिखाना है तो चश्मा पहनो
0: बिल्कुल।
1: मैं तो ऑलवेज कह रहा हूं, इट्स योर बेस्ट फ्रेंड, सुबह लगाओगे, रात को निकालोगे सोते टाइम, और क्या, आपको स्पष्ट दिखाई देगा, और क्या चाहिए। दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है, दृष्टि।
0: बिल्कुल,
1: अगर दृष्टि नहीं चाहिए तो तकलीफ आपको होनी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मामले में कतई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चे को चश्मे का नंबर आया है तो फौरन उसे चश्मा बनवा कर देना,
1: और 6 महीने और हर साल में चेकअप करवाते रहिए, क्योंकि बच्चों के आंख की शेप और साइज बदली होते रहता है। लड़कों में ज्यादातर 18 और 20 तक सेटल होता है, लड़कियों में 20 और 22 तक सेटल होता है
0: जी।
1: ग्रोथ, जो फुल ग्रोथ जो हम लोग कहते हैं, तो वो तब तक के नंबर में बदलाव आने की संभावना है
0: जी।
1: और जो भी नंबर हो, वो नंबर मत देखिए, आप बच्चे की नजर देखिए
0: बिल्कुल।

0: डॉक्टर साहब, एक चीज जो देखी जाती है, कई छोटी उम्र के बच्चे होते हैं जिनको बहुत मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, बड़े नंबर वाले चश्मे लग जाते हैं
1: जी,
0: वो क्या समस्या है और क्या ये लाइफ टाइम होती है या लेजर के जरिए जो हम सुनते हैं कि चश्मा हटाया जा सकता है?
1: जी, तो ये जो है वो जैसे मैंने कहा आंख के शेप और साइज के ऊपर आता है
0: जी।
1: काफी बच्चों में जिसको हम लोग पैथोलॉजिकल मायोपिया कहते हैं, मायोपिया ने माइनस नंबर जो रहता है
0: जी,
1: उनके एक मिलीमीटर में तीन नंबर का फर्क पड़ता है। अगर आपका माइनस थ्री है तो आपके जो लेंथ है आंख की वो एक मिलीमीटर से ज्यादा है। इन बच्चों में काफी छोटे उम्र में भी नंबर आते हैं, कोई और कमजोरी हो, कोई और बीमारी हो उसके वजह से। उसके लिए चश्मा मेन ट्रीटमेंट है एक उम्र तक, और वो उम्र रहेगी 20 तक। क्योंकि जब तक के आंख का नंबर 2 साल तक स्टेडी ना हो, लेजर या लेजिक करना सही नहीं है। सपोज कोई बच्चा आए हमारे पास और हमने उसकी 16 की उम्र में की या 20 18 की और उसके बाद उसके आंख का साइज चेंज हो गया, नंबर वापस आ गया, दोबारा तो नहीं कर सकते ना? क्योंकि लेजिक क्या है या लेजर जो क्या है, उसके अंदर जो आंख का जो नंबर आंख की गोलाई के ऊपर है, जो सामने की कांच की गोलाई है, तो अगर नंबर कम करना है तो गोलाई कम करनी है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? पीछे से तो काट नहीं सकते, तो आगे से लेजर से जो सामने की कांच है उसका शेप चेंज किया जाता है।
0: अच्छा,
1: उसका एक कैलकुलेशन है और उसके वजह से फिर जो है, जैसे दोबारा मैं आता हूं 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स है, ओके, जो फोकल लेंथ है वो चेंज करके जो इमेज है उसको पीछे शिफ्ट की जाती है तो नंबर कम हो जाता है या निकल जाता है। तो एक सरल भाषा में ये लेजिक्स या लेजर है। दूसरी बात है, इसके लिए भी काफी जांच पड़ताल करना जरूरी है। उसके अंदर जैसे मैंने कहा 2 साल तक नंबर स्टेडी रहना बहुत जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, आजकल जो चेकअप्स हैं जिसके अंदर सामने की जो कांच है उसका मोटापा जांचा जाता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि अगर आपका लेजर कर रहे हैं किस हद तक कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, अगर सामने की कांच पतली हो
0: तो
1: और लेजर हो जाए, होता भी है, अगर हो जाए तो सामने की कांच में नुकसान हो जाता है और वो भयानक चीज है, आगे आंख की दृष्टि में परिणाम आ सकता है।
0: ओहो,
1: आप समझे कि नहीं? देखिए, देखने के लिए सामने की कांच मेन है, इसके लिए वो जो आपने कहा आंसू वगैरह उसी को प्रोटेक्शन देता है ना वो,
0: करेक्ट,
1: तो वो भी जांच करना जरूरी है कि सामने की जो कीकी है या कांच है उसका मोटापा सही है क्या नहीं, पीछे का पर्दा सही है क्या नहीं, ये सब चीजें होने के बाद ही फिर हम लोग पेशेंट को लेजिक्स या लेजर के लिए कहते हैं। और उसके अंदर भी एक चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए, ये परमानेंट नहीं है। एक उम्र के साथ आपके आंख में बदलाव आएगा ही, 45 के बाद नजदीक का नंबर आएगा तो आप चश्मे से शायद 25 साल मुक्त हो अगर 20 पे आपने करवा लिया तो
0: जी,
1: लेकिन 45-50 तक आपको रीडिंग ग्लासेस आएंगे। काफी टाइम लेजर होने के बाद कोई पेशेंट में हमने रिग्रेशन भी देखा है, यानी नंबर दोबारा आता है। ह्यूमन बॉडी है, 100% गारंटी कोई चीज की नहीं है।

0: भी हमने देखा हुआ है। फिर चश्मा पहनना जरूरी होता है। कई लोगों का पूरा नंबर नहीं निकलता, अगर ज्यादा नंबर हो काफी कम हो जाता है, लेकिन थोड़ा नंबर चलता है
1: जी।
0: और जो भी उम्र के वजह से या कोई और कारणवश आंख की बीमारियां होनी है वो तो होनी है, भले वो ग्लोकोमा हो, कैटरैक्ट हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो या और कोई चीज हो, वो तो आप लेजर से, हम बायोनिक आए तो नहीं बिठा रहे वहां पे
1: जी जी,
0: आप जो है तो वही है
1: बिल्कुल।
0: हाँ,
1: सिर्फ उसका शेप चेंज हो रहा है,
0: उसका सिर्फ सामने का कांच का शेप चेंज हो रहा है
1: जी,
0: उसका फोकल लेंथ चेंज करने के लिए, उसका जो इमेज है उसको शिफ्ट करने के लिए।
1: पर ये हमेशा के लिए किया गया उपाय नहीं है
0: जी, नहीं, ये हमेशा के लिए हो ही नहीं सकता।
1: कई बार बुजुर्ग लोग भी अपने चश्मे से छुटकारा पाने के लिए ये करते हैं।
0: वो देखिए, अभी एक नई चीज आई है पिछले 7-8 साल में, जिनके बहुत ज्यादा नंबर है, बुजुर्ग लोग है, और ज्यादातर मोतिया होने के बाद ही ऑपरेशंस किए जाते हैं
1: जी जी,
0: लेकिन काफी पेशेंट में आजकल जो एडवांस लेंसेज आए हैं, जिनको हम ट्राइफोकल लेंसेज या स्पाइरल लेंसेज जो आए हैं, वो ऑपरेट करके जो क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन बोलते हैं कि जिसमें मोतिया नहीं है, लेकिन उसको निकाल के वो आर्टिफिशियल लेंस बिठाई जाती है, जिसकी वजह से उनका चश्मा जो है वो हट जाता है
1: जी जी,
0: तो वो परमानेंट रहता है, लेकिन वो जिंदगी भर तक फिर बाद में वहां पे कुछ नहीं होता, लेकिन वो भी इतना सरल नहीं है, उसके पहले काफी टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि आप सूटेबल इसके लिए हो या नहीं
1: जी।
0: पेशेंट का काउंसलिंग करना बहुत, जैसे लेजिक में करते हैं वैसे ही इसके अंदर भी करना बहुत जरूरी है, कि जब आपको मोतिया नहीं है तो भी आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन में प्रॉब्लम तो हो सकता है
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप समझे कि नहीं, ये ऑपरेशन है
1: जी,
0: तो आप अपनी तरफ से आप समझ के जा रहे हैं कि ये ऑपरेशन है, इसके अंदर गड़बड़ भी हो सकती है
1: बिल्कुल,
0: हम चाहते हैं कि किसी पेशेंट की आंख में गड़बड़ ना हो, भगवान ना करे कि किसी के भी दृष्टि में प्रॉब्लम हो, लेकिन तो भी ये समझना बहुत जरूरी है, आप समझे कि अगर ऐसे ही नहीं है कि आप आओ करो, आंख के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, दैट इज माय बॉटम लाइन टू एवरीबॉडी, जब जरूरत हो तो जरूर कीजिए, लेकिन जितना हो आप सोच समझ के कीजिए। काफी टाइम हमने देखा है कि मेरे फ्रेंड ने किया सर तो मैंने करवा लिया
1: जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है।
0: हाँ, और सबकी आंखें सेम नहीं है, एक आंख से दूसरी आंख भी सेम नहीं है
1: जी,
0: और हम कितनी भी कोशिश करें तो जैसे मैंने कहा अभी इतने साल हो गए प्रैक्टिस में, इतने सर्जरीज हो गए, लाखों पेशेंट्स भी हो गए, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर एक पेशेंट का आंख आज ऑपरेट हो, उसका दूसरा आंख अगले हफ्ते ऑपरेट हो, तो भी एज डॉक्टर्स हम जानते हैं कि इसमें चार आना यहां वहां है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है
1: बिल्कुल,
0: पेशेंट को दिख रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन हम जानते हैं
1: जी,
0: बिकॉज इट इज नॉट, अनफॉर्चुनेटली इट इज इतनी स्पेशलाइज सिस्टम है आंख की, कोई डुप्लीकेट करने जाए तो भी ह्यूमन बॉडी को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं आप, छोड़िए
1: बिल्कुल बिल्कुल सही,
0: तो आंख तो, और आंख को तो सबसे इम्पोर्टेंस दिया हुआ है भगवान ने, क्योंकि दिमाग चलता है तो आदमी चलता है, दिमाग को दिखेगा ऐसे, आंखों के थ्रू ही दिखेगा,
1: परफेक्ट बात है। यहाँ एक गाना सुनते हैं
0: जरूर,
1: और वो गाना है आंखों में हमने आपकी,
0: अरे वाह।

0: दोस्तों, आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: सेहतनामा, अभी एक छोटा सा अंतराल।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है गैर फिल्मी नगमों व गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पोड़वाल द्वारा गाए कुछ गैर फिल्मी नगमें।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पोडवाल द्वारा गाए कुछ गैर फिल्मी नगमे।

आप सुन रहे थे अनुराधा पोड़वाल की आवाज में ये गीत कार्यक्रम सुगम संगीत में। इसी के साथ ही कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। प्रातः के 11:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति में आपको सुनवा रहे हैं जावेद अली के गाये इस गीत को फिल्म तुम मिले से। बोल है सईद कादरी के, संगीत है प्रीतम का।

गीतकार गुलजार के लिखे इस गीत को सुन रहे थे फिल्म गुरु से। आवाज थी श्रेया घोषाल की। इस गीत को संगीतबद्ध किया था ए.आर. रहमान ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जब तक है जान से। आवाज है नीति मोहन की, शब्द रचना गुलजार की।

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजे इस गीत को आप सुन रहे थे। फिल्म हम आपके हैं कौन से, आवाजें थी लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। इस गीत को लिखा था रविंद्र रावल ने। इसी कड़ी में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कहो ना प्यार है से, आवाज है लकी अली और राम्या की। इस गीत को लिखा है इब्राहिम अश्क ने, धुन है राजेश रोशन की।

ये नगमा आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत में। इसी गीत के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सर्वेश कुशारे,

0: वल्लूरी अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक जीतने तथा शिल्पा शैला और बिंदिया रानी देवी को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 जीतने पर अनाहत सिंह की भी सराहना की। अध्यक्ष ने देश का नाम रोशन करने वाले सभी एथलीटों के साथ साथ कोच और उनके परिवार के सदस्यों को भी बधाई दी। बाद में श्री बिरला के प्रश्नकाल शुरू करने के प्रयास पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया ताकि सार्थक संवाद हो।
1: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा होती है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। दिन में 11 बजे सदन के शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने विधेयक सदन के पटल पर रखे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन के शून्यकाल शुरू करने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हैं। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संसद सत्र के दौरान ये बैठकें पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि हब एंड स्पोक मॉडल से वर्ष 2030 तक लगभग 4 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। श्री नायडू ने कहा कि सेवा के शुरू होने से अमृतसर से यात्री अब दिल्ली के रास्ते दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक और पेरिस सहित लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेंगे। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने हब एंड स्पोक उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि मॉडल भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नवविकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव भी अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। आंध्र प्रदेश के चेल्लूरू में कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में 8 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। चेल्लूरू के पास रुके हुए वाहन पर विशाखापट्टनम से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 63 अंक बढ़कर 76,899 जबकि निफ्टी 24 अंक बढ़कर 24,020 पर कारोबार कर रहा था। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म से अभी ये गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत।

खिलाड़ी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत अलका याग्निक की आवाजों में। अनवर सागर ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: कयामत से कयामत तक, ये था फिल्म का नाम। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद मिलन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत, फिल्म दिल से।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
2: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पांच गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल, जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

जब प्यार किसी से होता है, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जतिन ललित ने संगीत दिया था, आनंद बख्शी के लिखे बोल।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा था।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

कुमार सानू की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे 1942 अ लव स्टोरी से, जावेद अख्तर ने इसे लिखा, आरडी बर्मन का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा, आज आपके संग। मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गीत हम सुरीला सफर में आज शामिल करते हैं। तो जल्दी से वो शब्द चुनकर आप अपने पसंदीदा गीत या जो आपको लगता है कि आज इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले गीत हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। देखते हैं आपकी लिस्ट हमारी लिस्ट से कितनी मिलती है। और अगर आपकी लिस्ट हमसे मेल नहीं खाती तब भी आप अपने पसंदीदा गीत उन शब्दों से चुनकर लिख सकते हैं, हो सकता है हम उन्हें आज के इस प्रोग्राम में शामिल कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की जल्दी से, लेकिन हमारे उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने इबारत नहीं पढ़ी है अब तक या फिर जिन्होंने बहुत लेट ट्यून इन किया है, उनके लिए ये इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी, पूछो ना उस दिल से जिसने बस एक ही वादा निभाया है, मेरी हंसने की मुस्कान को हर दुआ में सजाया है, ये मन आज भी उसी पहले प्यार की मुलाकात में ठहरा है और कोरा कागज अब तक उसी अधूरी दास्तां का चेहरा है, कहीं ना जा यूं मेरी यादों की गलियों से गुजरकर, कुछ पल तो ठहर इन धड़कनों की सदा सुनकर, बस एक बात कहनी है वादा करो, चाहे बदल जाए मौसम बदल जाए रास्ते हजार, जहां भी रहो मुझे तुम याद करना। तो बताइए कौन कौन से शब्द हो सकते हैं और कौन से गीत हम आज शामिल करेंगे। बिना देरी किए आज इस प्रोग्राम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं।

हमराज फिल्म से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत, और बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ आज इस सफर की शुरुआत हुई है। आप बस यूं ही हमारा साथ देते रहें और हम आपको खूबसूरत नगमे सुनवाते रहेंगे। और एक और गीत जो इसके बाद मैं आपको सुनवाने वाली हूं, वो बहुत ही जल्दी पहचान लिया गया वो शब्द, क्योंकि बहुत आसान था, और इसीलिए वो शब्द से जो गीत है आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके प्यार भरे संदेश आपको सुनवाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रेमी प्रेमिका के प्यार की दास्तान और विरह को दर्शाया है। गुजरे वक्त के सुनहरे पल को याद करते हुए यही दुआ करते हैं कि कितने ही बदलाव आए, मुझे तुम हमेशा याद रखना। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर संदेश। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कविता के माध्यम से खूबसूरत और भावनात्मक सच्चे प्रेम, निश्चल समर्पण और विरह की तड़प को दर्शाया गया है, और अपने पहले प्यार के प्रति उस अटूट निष्ठा को अभिव्यक्त किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल उसे ही अभिव्यक्त किया गया है यहाँ पर। और एक और श्रोता लिखते हैं कि पहला प्यार शायद कभी

पता नहीं है, बस अपने नाम की नेम प्लेट उतार कर दिल के किसी पुराने कमरे में चुपचाप रहने लगता है। पहला प्यार मिल जाए तो जिंदगी का गीत बन जाता है और बिछड़ जाए तो रूह की खामोश जुबान। वो शोर नहीं करता, कोई शिकवा भी नहीं करता, बस कभी बारिश की किसी बूंद में, किसी शाम की ढलती धूप में, तो कभी किसी पुराने गीत की धुन में आकर हल्के से कंधे पर हाथ रख देता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है इस संदेश को। हमारे एक और श्रोतागण लिखते हैं कि पहला प्यार जीवन की किताब का वो खूबसूरत पन्ना है जिसे चाहकर भी कभी पलटा नहीं जा सकता। ये हृदय की वो पहली भावनात्मक जागृति है जो इंसान को खुद से परे देखना सिखाती है, जब वक्त की बेरहम लहरें दो राहों को अलग कर देती।

देखना सिखाती है जब वक्त की बेरहम लहरें दो राहों को अलग कर देती है। बिल्कुल। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीले सफर में यादों में खो जाएं और सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो अकेले इस दिल को सुकून देते हैं। बिल्कुल, आज के जो गीत है आपको सुकून जरूर देंगे, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में विरह श्रृंगार की अनुभूति को बहुत गहराई से लिए हुए हैं और कोरे कागज पर प्रियतम की यादें उसी का चेहरा लिए हुए है, एक अधूरी दास्तान। और काफी सारे इन्होंने भाव लिखे हैं, जैसे विरह, मिलन, मुलाकात की यादों में ठहरा। बहुत ही सुंदर शब्द चुने हैं इन्होंने अपना संदेश लिखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे संदेशों में वादे शब्द का उपयोग हुआ है, हमारे आज की इबारत में भी है, और यादों से न जाने यादों का कारवां चला आता है। तो आज क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज यादों पर ही कुछ सवाल किए जाए। हम याद भी करते हैं और वादे भी करते हैं, दोनों शब्द बहुत मिलते जुलते हैं, यादें और वादे। तो हम वादे दूसरों से करते हैं, अपने प्रियजनों से करते हैं और उन्हें पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो वादे हम अपने आप से करते हैं अपने लिए, क्या उन्हें पूरा करते हैं? तो आप मुझे बताइए कि अभी हाल फिलहाल कौन से वादे आपने अपने आप से किए हैं और कौन से अच्छे वादे जिन्हें अपनाकर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी बदल गई है। तो उन वादों की बातें करते हैं। लिखिए मुझे संदेशों पर और हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ।

कहां उड़ चली, किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जहरीला इंसान फिल्म का नाम था, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन का संगीत। ओ हंसिनी, एक ऐसा शब्द जो आप सबने एकदम पहचान लिया और ये गीत हमें आपको सुनवा दिया, लेकिन आगे बातें हो रही है यादों की और वादों की। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर दिल्ली में बरसात हो रही है बहुत जोरों से, और मैंने आपको एक कविता भेजी है, एक गीत, एक प्रीत सफेद कागज पर काली स्याही से मैंने लिखी है दास्तां। मैं लिखी हुई दास्तां हूं, ऐसा इन्होंने लिखा। मैं वो गुजरे जमाने की एक राह हूं, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूँ, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तां हूँ। बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हम इस वक्त ट्रेन में सफर कर रहे हैं अजमेर से जम्मू कटड़ा की तरफ, बाहर एसी कोच के कांच से बहुत ही सुहाने मौसम के दर्शन हो रहे हैं, बारिश हो रही है, हरियाणा और पंजाब के हरे भरे लहराते हुए खेतों को देखकर आंखों को सुकून मिल रहा है और कानों को विविध भारती सुनते हुए सुकून मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, महेंद्र कपूर की आवाज में जो जादू है वो आज भी महसूस होता है, साहिर लुधियानवी के शब्दों ने इस गीत को अमर बना दिया है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम नागपुर में झमाझम बारिश का जो माहौल है उससे आनंदित हो रहे हैं, और हमराज फिल्म का ये खूबसूरत गीत जिससे शुरुआत हुई इस प्रोग्राम की, वो एकदम मौसम के अनुकूल है। जी हाँ, शहर दिल्ली में भी बारिश हो रही है इस वक्त, ऐसा लिखते हैं हमारे श्रोता। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब दिल पहली बार किसी के लिए धड़कता है तो दुनिया की हर चीज खूबसूरत लगने लगती है, बिना किसी उम्मीद बिना किसी शर्त के किसी को बस देखते रहने की चाहत, यही पहले प्यार की असली पहचान होती है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। और ज्यादातर श्रोताओं ने ये लिखा है कि बारिश हो रही है, तो बारिश का आनंद भी लीजिए और साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर गीतों की बारिश में भिगो देते हैं। साथ ही जो मैंने आपसे सवाल किया था कि बहुत से वादे हम दूसरों से करते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं अपने जीवन के अंत तक, ऐसे कौन से वादे जो आपने अपने लिए किए हैं और आप उन्हें निभा रहे हैं, वो हमें बताइए, हमें अच्छा लगेगा, हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करेंगे वो वादे वो बातें।

0: लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे मशाल फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग। वादों पर, यादों पर बहुत से मैसेजेस, संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। तो जब हमने पूछा आपसे कि कौन से ऐसे वादे हैं जो आपने अपने आप से किए हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि वादा वो भी खुद से किया हुआ बहुत कम पूरा होता है। बचपन में सोचते थे सुबह उठकर पढ़ाई करूंगा जो हो नहीं सका, और जवानी वादों पर ही निकल गई, अब तो बुढ़ापा है, रोज का वादा फिर वादा। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रेडियो जॉकी बनने का बचपन से इंटरेस्ट था, पर बैंकिंग सर्विस में आ गया और खुद से वादा किया था कि एक दिन अपना ये हॉबी जरूर पूरा करूंगा। सो रिटायरमेंट के बाद वो एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपने आप से वादा किया अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखूंगा और

रख रहे हैं। बिल्कुल, एक और श्रोता लिखते हैं कि बिना उद्देश्य के इस जीवन काल में एक वादा खुद से किया है कि अड़िग रहता हूं इस वादे पर, हर हाल में सुबह 5 किलोमीटर और शाम को 3 किलोमीटर की वॉक करता हूं, बारिश में छाता भी संग होता है और साथ ही हमारे 5 साथी जो साथ में होते हैं, लेकिन हर हाल में वॉक जरूर करते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली का वादा खुद से किया है और उसे निभाया भी है अब तक। बहुत बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन संगिनी का जीवन भर साथ ना छोड़ेंगे हम, ये वादा हमने किया है अपने आप से। ऐसे में हमारे श्रोता एक ये भी लिखते हैं कि दूसरों को दिए गए वादे तो अक्सर टूट जाते हैं जिनके लिए हमारा उत्तरदायित्व होता है, तो फिर अपने आप से किए हुए वादों का क्या भरोसा। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है आपकी, लेकिन वहीं पर तो बात आती है सेल्फ डिसिप्लिन की, वहीं पर बात आती है अड़िग होकर अपना ख्याल रखने की, क्योंकि सबसे पहले आप अपना ख्याल रखेंगे तभी तो दूसरों का ख्याल रख पाएंगे, है ना। और हम आपका ख्याल रखते हुए अब यहां पर आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे मंजिल फिल्म से। योगेश ने इसे लिखा, आरडी बर्मन की तर्ज थी और मेरे नयन जो है इस वक्त ढूंढ रहे हैं आपके संदेशों को। बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश आपने भेजे हैं, लिख भेजे हैं यहाँ पर। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैंने भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जीवन भर साथ निभाने का वादा किया है जो अभी तक ठीक ठाक निभा रहा हूँ, और एक वादा विविध भारती के साथ किया है, सदा साथ।

रहने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे कुछ श्रोता लिखते हैं कि खंडवा में रिमझिम बारिश की फुहारों के साथ भक्ति में डूबा है पूरा खंडवा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि वादा तो बस यही स्वयं से करते हैं कि सदा सत्यनिष्ठ ईमानदार बने रहें और वैसे ही अकेले हैं सभी के सामने भी रहें। जी हाँ, बिल्कुल ईमानदार बने रहना ही सबसे बड़ा चुनौती भी है और देखा जाए तो आसान भी है, बहुत ही सिंपल भी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यादें और वादों के मुताबिक मौसम ने दस्तक दे दी है। जी एक और श्रोता लिखते हैं कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, वो आज सुरीला सफर में 25 मिनट लेट हो गए हैं, लेकिन 2 बजे तक विविध भारती के साथ जुड़े हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक और श्रोता लिखते हैं, जहां भी रहेंगे विविध भारती के साथ रहेंगे, ये वादा किया है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पढ़ाई के समय का पहला प्यार असफल रहा, दूसरी बार सगाई हुई तो वो भी साल भर बाद टूट गई। मन टूट गया था, पर तीसरी बार हुआ प्यार 2 महीने के अंदर चट मंगनी और पटब्याह में तब्दील हो गया, जो आज तक मैं अच्छे से निभा रहा हूँ। जी हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, निभाते रहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि वादा टूटने के लिए तो होता है, क्योंकि टूटने पर ही जुड़ने की लालसा लगती है। जी हाँ, अब ये सबके अपने अपने विचार हैं, बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि अपने आप से एक बड़ा वादा किया है कि समय का सदुपयोग करूंगा, नहीं टेंशन दूंगा और ना ही टेंशन लूंगा। ये तो सबसे अच्छा मंत्र है देखा जाए तो खुश रहने का। और एक बहुत ही खूबसूरत वादा जो हम अपने आप से कर सकते हैं वो है खुश रहने का, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, किसी के ऊपर नहीं है ना। तो चलते हैं, इसी खुशी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और ये अगला गीत।

जमाने को दिखाना, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का म्यूजिक था। इसके साथ ही आपके बहुत से सुंदर मैसेजेस संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ वादे शब्दों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निभाए जाते हैं। आज की सुंदर सी इबारत ऐसे ही एक सच्चे वादे की कहानी कहती है जिसमें पहला प्यार, मीठी यादें और अटूट विश्वास आज भी जीवित है। जी हाँ, आज की धुनों के बारे में बताया हमारे एक श्रोता ने और बहुत ही खूबसूरत ढंग से पूरे डिटेलिंग के साथ उन्होंने तीनों धुन यानी कि आने वाला पल, आगे भी जाने न तू और लेकर हम दीवाना दिल के बारे में बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बड़ी खास है, पहला प्यार हर किसी को होता है। कोई कोई होगा जिसने कभी प्यार नहीं किया होगा और पहला प्यार कभी भूलता नहीं है। रजनीगंधा सा महकता है। हालांकि ये संदेश बहुत लंबा है लेकिन मैं कुछ ही पंक्तियों में इसे पढ़ दे रही हूं। अगले श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज के इबारत के शब्द भी लाजवाब है और गीत भी लाजवाब है। बनारस में बैठकर वो इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता का कहना है कि आज के जमाने में ईमानदारी यानी कि ईमानदार इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जो हमारे साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाए जैसे कि हम उनके साथ रहते हैं। हम आजकल दूसरों पर भरोसा ही नहीं कर पाते हैं और बहुत कम करना चाहिए।

कि कौन कहां तक साथ देगा क्या पता। जी हाँ, सतर्क तो जरूर रहना चाहिए, लेकिन इस तरह की बातें सोचना कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, सतर्क रहें और सोच समझकर ही अपने रिश्ते निभाएं, ये बहुत जरूरी है। हमारे एक और श्रोता बनारस से लिखते हैं कि बारिश कहाँ गायब हो गई है, हम लोग यहाँ गर्मी में धूप और बारिश के मौसम में चिचिल अति धूप का सामना कर रहे हैं। यानी कि कभी बारिश भी आ रही है, कभी धूप भी आ रही है, और दोनों मौसमों का ये बारी बारी से सामना कर रहे हैं, तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है, शायद ये ऐसा लिखना चाह रहे हैं। हमारे एक श्रोता कोलकाता से जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत धूप है आज और उमस भी हो गई है काफी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जवानी में कमाने में बिजी रहे, प्राइवेट नौकरी में थे तो कहीं जाने की फुर्सत ही नहीं मिली, और अब देश के तमाम उन शहरों को घूमने का मन बनाया है जो समंदर के किनारे हैं। देखिए बुढ़ापे में ये वादा पूरा होता है या फिर नहीं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है और इन गीतों के साथ वो चाय और पकौड़े के साथ इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। छोटे छोटे वादे करते हैं, ज्यादा बड़ा वाला वादा हम अपने आप से नहीं करते हैं। जी हाँ, कोई बात नहीं, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। फिलहाल हमारी मंजिल अगला ये गीत सफर में जोड़ते हैं इसे, है ना।

0: शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गीत तराना फिल्म से, रविंद्र रावल ने इसे लिखा, राम लक्ष्मण का संगीत।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वादा होता ही है ना निभाने के लिए, क्योंकि जिनको निभाना होता है वो लोग वादा नहीं करते, केवल निभाते हैं। जी हाँ, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, आपका विचार हो सकता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर में इस वक्त सुरीला सफर कार्यक्रम के दौरान बारिश शुरू हो गई है, तो जी हाँ, आनंद लीजिए गीतों का और बारिश का, दोनों का। एक और श्रोता लिखते हैं कि उनके चयनित 3 गीतों को कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। इस बात का वादा जरूर कर सकते हैं, लेकिन वादा निभाया जाएगा इसका दावा नहीं कर सकते। दावा और वादा दोनों शब्द को आप उल्टा कर पढ़ोगे तब भी यही मतलब निकलेगा। बहुत डिटेलिंग से उन्होंने मैसेज लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि एक वादा अपने आप से ये किया है कि कोई भी समय हो, किसी भी तरह का सिचुएशन हो, लेकिन मुस्कुराते रहना है, अपनों के लिए यही सबसे बड़ा वादा होगा। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि वादा एक उम्मीद है और उसे पूरा करना संकल्प, और यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा तो ये कहना है कि वादा करना बड़ा आसान है, लेकिन उसे निभाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। वादा करने के लिए सिर्फ शब्द खर्च करने होते हैं, लेकिन वादों को निभाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और खोखले वादे करने के बजाय हम कोशिश को तवज्जो दें तो बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, बहुत अच्छा विचार है। फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ, और ये रहा अगला गीत।

बड़े दिल वाला इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में आर डी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। और आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। जयपुर से जुड़े हमारे श्रोता और लिखते हैं कि एक घंटे से बारिश हो रही है, मौसम सुहावना है और सुरीले सफर के साथ मौसम के चार चांद लग चुके हैं, लेकिन ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव बारिश और सुरीले सफर का जो गीत है उनका मजा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि किसी से भी वादा इतना ही करना चाहिए जिसे हम पूरा कर सकते हो, उतना बड़ा वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा ना कर पाए। और इस पर ये गाना फिट बैठता है कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। क्या बात है। एक और श्रोता लिखते हैं, गुंचे लगे हैं खिलने, ये जो गीत है काफी दिनों के बाद इन्होंने सुना है और ये सुनकर इन्हें लगता है इन्हें याद आती है अपने बचपन के वो दिनों की जब अंताक्षरी में ये गीत गाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युगांडा अफ्रीका से भी जुड़े हैं लोग, एक श्रोता जुड़े हैं जो सुरीला सफर का मजा ले रहे हैं इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर शहर में बरखा रानी रूठी हुई है, कल रात में थोड़ी रिमझिम बारिश हुई पर उसके बाद पता नहीं कहां रूठ कर चली गई। चलिए गीत सुनिए, उन्हें मनाइए और वो आ जाएंगी फिर से। ट्रेन के सफर में जो है इंटरनेट महाराज आंख मिचोली खेल रहे हैं और इंटरनेट महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ठीक से चले। जी हाँ बिल्कुल, वादा इन्होंने वीबीएस के साथ किया है कि इसका दामन कभी नहीं छोड़ेंगे और हम भी आपका दामन कभी ना छोड़ेंगे। फरीदाबाद से

ही हम तक मैसेज पहुंचा है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, बादलों ने अपना वादा बखूबी निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे संदेशों के लिए। और अब ये गीत।

0: तुझे न क्या कर डालू हाल मोहे समा।
1: कारवां फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज। और हमने शुरुआत की थी इस सुरीला सफर की वादा से और अब खत्म कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं वादा गीत के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम त्रिवेणी में स्वागत है। आज है प्रकृति संरक्षण दिवस। प्रकृति हमारे जीवन का आधार। हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, सब कुछ उस प्रकृति की देन है। फिर भी विडंबना यह है कि विकास की दौड़ में हम उसी प्रकृति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्रकृति संरक्षण का अर्थ केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि जल, वन, वन्य जीव, मिट्टी और जैव विविधता सहित संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करना है।

तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में हर वर्ष लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% खारा है, केवल 3% मीठा जल है। इसमें से भी अधिकांश बर्फ के रूप में जमा है। मानव उपयोग के लिए जल 1% से भी कम है। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं और उसी खतरे का सामना कर रही हैं। एक स्वस्थ और परिपक्व पेड़ प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 किलोग्राम ऑक्सीजन पैदा कर सकता है और अपने जीवन काल में 1 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है। और एक तथ्य सामने आता है कि भारत विश्व के लगभग 2.4% भूभाग पर स्थित है, लेकिन यहाँ विश्व की लगभग 8% जैव विविधता पाई जाती है। यह हमारे देश की प्राकृतिक समृद्धि का प्रमाण है। हमारे पास इतना कुछ है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है और प्रकृति रह रहकर हमें संकेत दे रही है। गर्मी बढ़ रही है, वर्षा अनियमित हो रही है, सूखा है, बाढ़ है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वायु प्रदूषण है। वर्ष 2024 और 2025 के दौरान विश्व के अनेक क्षेत्रों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किए गए।

और 2026 की स्थिति हम सभी जानते हैं और यह सभी जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाते हैं और इतनी सारी समस्याएं हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या केवल समस्याएं हैं? नहीं, इनका समाधान भी हमारे अपने हाथों में है। हम अपनी प्रकृति को अभी भी संरक्षित कर सकते हैं।

प्रकृति को संरक्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं? हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाना है, उसकी देखभाल भी करना है। वर्षा जल संचयन को भी हमें अपनाना है, यानी बारिश का जो पानी आ रहा है उसे सुरक्षित करना है। उसके लिए एक तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें, कपड़े और जूट के थैलों का प्रयोग करें, तो भी बहुत सहयोग हम कर सकते हैं। बिजली और पानी अगर हम बचा लें, अनावश्यक रूप से बर्बाद ना करें, तो भी हमारा सहयोग अथक होगा। कचरे को अलग अलग जगह पर जमा करके अगर उसकी रिसाइकलिंग कर दें, तो प्रकृति मुस्कुराने लगेगी। महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं। तो अगर हम हमारे लालच को बचा लें, जागरूक हो जाएं, जिम्मेदारी निभाएं, प्रकृति के लिए संवेदनशील बने, प्रकृति अगर सुरक्षित है तो भविष्य सुरक्षित है।

0: जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है, इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और बी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है।

0: इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: दिस वॉज नॉट गिवन ड्यू कंसीडरेशन फॉर वट एवर रीजंस एंड फॉर वट एवर इंटरेस्ट। सो आई थिंक यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट। इट हैज फिनिश्ड एन अनफिनिश्ड टास्क विच यू शुड हैव अकम्प्लिश्ड।
0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
3: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
0: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
4: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
5: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारे वेबसाइट

0: www.newsonir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
1: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
0: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
2: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण 86 इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यासुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशू रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशू शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: हुई हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, तीन देवियां फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बतूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
4: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट दे रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
1: विविध भारती से, इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल।

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल।

0: पिघले दिल तेरा नम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।
1: क्या होना क्यों सताते हो, होगा होगा।
2: मुकेश की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे संगम फिल्म से। शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। वक्त फिल्म का नाम था। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। रवि का संगीत।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बंधनी फिल्म से। गुलजार ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं आरती श्रीवास्तव। तो आरती, तुम्हें भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और मंच पर स्वागत है।
2: मंजरी जी, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
1: कैसा लग रहा है आज तुम्हें?
2: अच्छा लग रहा है आज तो,
1: क्योंकि आज मौसम भी बदला सा है ना। प्रकृति पूरी हरी भरी दिख रही है और बारिश की तो फुहार आई चुकी है, तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है जब
2: बारिश
1: देखते
2: का
1: हैं।
2: बारिश का एक यही जादू होता है ना कि वो चारों तरफ हरियाली बिखेर देता है। परेशानियां भी, नुकसान भी होते हैं, लेकिन ये जो चीज है ना, ये भी बहुत जरूरी है।
1: क्योंकि आज देखो, हम अपने विषयों में भी लेकर आए हैं ना कि हम बात करने वाले हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि मुहावरों की दुनिया जिसमें पेट में चूहे दौड़ना है ना, और इसके साथ साथ हल्की फुल्की बातों में भाई बहन की लड़ाई में किसकी हुई पिटाई, इस पर भी बड़ा अच्छा सा मजेदार सा विषय है जिसमें बचपन की यादें सभी की ताजा हो जाएंगी। तो सभी हमारे श्रोता भाई लोगों ने बहुत सारे कमेंट लिख भेजे हैं, सखियों ने भेजे हैं।
2: तो अपने जो भी आपके अनुभव हैं, जैसा भी आपके

0: बचपन में अनुभव रहा कि किसकी पिटाई हुई थी भाई बहन दोनों में से, तो आप लिखकर भेजिए हमें। और साथ ही पेट में चूहे कूदना आपके लिए क्या मायने रखता है, आप किस तरह से इसको परिभाषित करते हैं, इसके बारे में भी आप अपने विचार लिखकर भेजिए। हाँ, और साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत डॉक्टर गीता मंजुनाथ के बारे में, जो कि निर्मयी हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक भी हैं और उसकी सीईओ भी हैं।
1: बिल्कुल। और इसके साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के ऊपर भी बात करने वाले हैं आरती। तो जो ये जो दिवस है हमारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस, मानव शरीर में कब कौन सी बीमारी लग जाए कह नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति कितना भी संतुलित अनुशासित जीवन नियम संयम से जी ले आरती, चाहे वो ध्यान कर ले, योग व्यायाम कर ले, या चाहे खान पान की बात हो या दैनिक दिनचर्या हो, कभी कभी मानसिक तनाव शारीरिक थकान से भी समस्या पैदा हो जाती है।
0: बिल्कुल। और कभी कभी भी जो ऐसा होता है ना, किसी रोग के लक्षण उत्पन्न होने पर अगर हमने जरा सी भी चूक कर दी या हमने लापरवाही बरत दी, तो समझो कि बीमारी जो है वो हमारे शरीर में अपना घर बनाने में देर नहीं लगाती है। फिर हम कितना भी सफाई दे दें कि अरे मुझे कैसे हो गया, हम तो बहुत ध्यान रखते थे, बहुत ताज्जुब होता है कि हमें कैसे ऐसा हो गया, तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि एक छोटी सी लापरवाही जो है वो हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है।
1: बिल्कुल। और इसीलिए सभी बीमारियों से बचने के लिए दिवस मनाए जाते हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता अवेयरनेस हो और समय रहते ही बीमारी का इलाज किया जा सके। जैसे कि आज हम हेपेटाइटिस जैसे रोग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आज 28 जुलाई है और इस दिन को हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है।
0: और हेपेटाइटिस में होता क्या है इसके बारे में आपको बता दें कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर या जिसको हम यकृत कहते हैं उसमें सूजन आ जाती है। ये मुख्य रूप से एक वायरस के कारण होता है और इसके प्रमुख प्रकार हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई है। और साथ ही जब ये बीमारी होती है तो इसके लक्षण इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे कि बार बार थकान महसूस होने लगती है, भूख कम लगने लगती है और उल्टी जैसी आने लगती है, हमेशा ऐसा होता रहता है, और पेट में बहुत दर्द होता है, आंखों और त्वचा का रंग जो है वो पीला पड़ने लगता है, साथ ही गहरे रंग के पेशाब होना जैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसलिए अगर इस तरह के लक्षण थोड़े से भी इनमें से लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए और चिकित्सक से अपने परामर्श करके इलाज शुरू करवाना चाहिए।
1: बिल्कुल। और इसके लिए हेपेटाइटिस बी का टीका अवश्य लगवाएं, हमेशा साफ और सुरक्षित भोजन व पानी का सेवन करें, हाथों की नियमित सफाई रखें, केवल नई या पूरी तरह से स्टरिलाइज्ड की गई सुई का ही उपयोग करें, और जब रक्त चढ़ाने की बात आती है तो ये भी देखें कि रक्त किस तरह से स्वच्छ है और आपके शरीर के हिसाब से है कि नहीं, ये आप डॉक्टर से जानकारी ले सकते हैं और तभी आप रक्त चढ़वाएं, और समय समय पर स्वास्थ्य जांच अवश्य करवाएं।
0: तो हर किसी को करवानी चाहिए। और साथ ही आप कोई भी दवाई ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर से परामर्श करिए, अपने मन से या कहीं देखकर आप उस दवाई को मत लीजिए, वो नुकसान भी कर सकती है। और साथ ही हेपेटाइटिस का समय पर पता चल जाता है तो इसका इलाज भी संभव है, लेकिन लापरवाही करने पर ये लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए समय पर जांच, टीकाकरण और सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे साथी भी लिखते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए अपने लीवर की सेहत का ध्यान रखना और बीमारी के प्रति जागरूक रहना बेहद जरूरी है। सही जानकारी, समय पर जांच, टीकाकरण और उचित उपचार के माध्यम से हेपेटाइटिस से बचाव और इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आइए इस दिन हम स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें।
0: बिल्कुल। और एक और हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस दोनों ही प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाए जाते हैं। ये दोनों दिवस वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। साथ ही कहते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्म दिवस पर वायरल जो होता है हेपेटाइटिस लीवर की सूजन जिसको कहते हैं उसके प्रति जागरूकता फैलाना और इसकी रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देना इसके लिए मनाया जाता है। और साथ ही हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई के खतरों से बचाना और समय पर जांच और टीकाकरण कराना और बहुत जरूरी है।
1: कि आज के दिन या हर दिन अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और जब भी कुछ लगे तो आप डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर इलाज कराएं, दवा लें। और चलते हम लोग गीत की ओर, थोड़ा मौसम गीत की ओर चलते हैं।

0: तो आरती, आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष में।
1: जी, तो पहले तो मैं उनकी कुछ एक बात कहना चाहती हूँ, उसके बारे में बताऊंगी वो कौन है। मैं प्रतिदिन कुछ नया सीखने और खुले विचारों वाला होने में विश्वास रखती हूँ। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही ऐसे मित्र भी मिलते हैं जो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये कहना है गीता मंजूनाथ जी का। गीता मंजूनाथ एक भारतीय उद्यमी, कंप्यूटर वैज्ञानिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI विशेषज्ञ और निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक, साथ ही CEO और CTO भी हैं।
0: और उन्होंने AI और मशीन लर्निंग की सहायता से स्तन कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए एक अभिनव तकनीकी भी विकसित की है। गीता मंजूनाथ का जन्म और पालन पोषण बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में स्नातक और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा प्राप्त की। साथ ही IISc से आर्टिफिशियल

0: इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग में पीएचडी भी आपने की।
1: बिल्कुल, सोचिए कितनी उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के एक बड़े विद्यालय से प्रबंधन शिक्षा भी प्राप्त की। परिवार के दो सदस्यों को स्तन कैंसर के अंतिम चरण में खोने के बाद मंजुनाथ, गीता मंजुनाथ जी ने आईटी में अपना करियर छोड़कर एक ऐसा उत्पाद विकसित करने का फैसला किया जो इस बीमारी का जल्दी पता लगा सके, जिससे अनगिनत जानें बचाई जा सके। एक कंप्यूटर वैज्ञानिक होने के नाते उन्हें अनुसंधान और नवाचार से बेहद लगाव है।
0: गीता मंजुनाथ इस बात पर विचार करने लगी कि स्तन कैंसर से इतनी सारी महिलाओं की जान बचाने के लिए वे क्या कर सकती हैं। वे अपने करीबी लोगों के साथ थर्मल इमेजिंग को पढ़ रही थी और उन्हें एक संभावित समाधान सूझा और इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। दूसरों की मदद करने की अपनी

0: लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। दूसरों की मदद करने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मंजुनाथ ने 2016 में बेंगलुरु स्थित अपनी कंपनी निरामाई की स्थापना की
1: और इसका संक्षिप्त रूप है नॉन इन्वेसिव रिस्क असेसमेंट विद मशीन इंटेलिजेंस। ये एक संस्कृत वाक्यांश से भी लिया गया है जिसका मोटे तौर पर अनुवाद है सभी स्वस्थ रहें। निरामय में थर्मालिटिक्स नामक एक सॉफ्टवेयर तकनीक है जो छाती पर तापमान के वितरण को स्तन कैंसर रिपोर्ट में परिवर्तित करती है। ये कई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम होती हैं, उनका उपयोग करके किए गए विश्लेषण के माध्यम से ऐसा करती हैं, जिसे गीता मंजुनाथ ने थर्मल इमेजिंग पर आधारित उनको AI कहती हैं।
0: और आरती, अब हम लोग इनके ऊपर और चर्चा करेंगे, लेकिन देखो धीरे धीरे समय हो चला है एक अंतराल का, तो अंतराल के बाद एक बार फिर हम सबसे मिलेंगे, है ना। तो इसके साथ ही हम बहुत सारी बातें भी करेंगे, इन्होंने क्या किया है, इनको पुरस्कार भी बहुत सारे मिले हैं, तो उसके बारे में
1: अंतराल ले लेते हैं।
0: पहले एक अंतराल ले लेते हैं।

0: तो आरती, अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत करते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे गीता मंजुनाथ जी के बारे में, तो इन्हें जो है इससे हाल में ही FDA की मंजूरी मिली, जिससे निरामयी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा उपकरण के लिए अमेरिकी FDA से मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। अब तक निरामयी को 28 पेटेंट मिल चुके हैं और इसने कई पुरस्कार जीते हैं। भारत और कई अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मैमोग्राम नियमित स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा नहीं है। गीता मंजुनाथ कहती हैं कि अक्सर महिलाओं को ये भी पता नहीं होता कि उन्हें मैमोग्राम की आवश्यकता है या नहीं है।
1: बिल्कुल। और गीता मंजुनाथ की अत्याधुनिक नवाचार से जो नवाचार वही जो इन्वेंशन किया जो उसका उससे घने स्तन ऊतकों वाली महिलाओं के लिए भी एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैमोग्राम में ट्यूमर और घने ऊतक दोनों सफेद दिखाई देते हैं, जबकि थर्मोग्राम में असमानताएं अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसके माध्यम से बिना दर्द, बिना स्पर्श, बिना रेडिएशन और कम लागत में शुरुआती चरण में स्तन कैंसर की पहचान करने में बहुत सहायता मिलती है, जिसकी वजह से उनका इलाज भी जल्दी संभव हो जाता है। और गीता मंजुनाथ को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि CSI से गोल्ड मेडल और BIRAC से विनर अवार्ड 2018 में और फोर्ब्स इंडिया की टॉप सेल्फ मेड विमेन सूची में स्थान भी मिला हुआ है। इसके अलावा अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। AI और हेल्थ केयर के क्षेत्र में 15 से अधिक अमेरिकी पेटेंट उनको हासिल है।
0: बिल्कुल, और इतनी अच्छी सी जानकारी तुमने दी आरती, और इसका कहने का मतलब यह है कि हम महिलाएं जो है वो अपने बारे में बहुत लापरवाही कर देते हैं। तो अगर आपको कुछ कभी ऐसी कोई समस्या लग रही है, थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, तो आप अपना इलाज प्रॉपर कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, सारे टेस्ट होंगे, फिर आपको दवाएं इलाज शुरू होगा, दवाएं चलेंगी। तो कहना चाहिए कि आप परिवार का ध्यान रखती, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखें।
1: और मंजरी जी, मैं तो कहूंगी हमेशा आप रेगुलर थोड़े थोड़े समय पे अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए कि कोई परेशानी है तो नहीं, ताकि अगर कोई परेशानी है तो जल्दी उसका पता चल सके।
0: और हम लोग सुन लेते हैं गीत।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और

0: कितनी नहीं सही है वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती देखो, हम लोग बात करने वाले हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर। प्रकृति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सोचो, कल्पना करो क्या होगा, है ना?
3: इंसान तो नहीं रह सकता,
2: बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरत की चीज है। और प्रकृति में हम हैं, हम में प्रकृति है, ये केवल एक सुंदर वाक्य नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। धरती को भूमाता, नदियों को जीवनदायिनी, वृक्षों को देवतुल्य और सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ऋषि मुनियों ने जंगलों में रहकर प्रकृति के बीच ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि वे जानते थे कि प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आरती, तो मनुष्य का शरीर भी प्रकृति का ही एक रूप है। कहते हैं ना, पंच तत्व से शरीर बना हुआ है, तो उसमें एक हमारी प्रकृति भी है।
3: और हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल है, सांसों में वायु है, शरीर में ऊर्जा अग्नि से संचालित होती है, और पृथ्वी के अन्न से हमारा पोषण होता है। पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना जो ये हमारा शरीर है, वो प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसी का विस्तार है। इसलिए जब प्रकृति बीमार होती है तो उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, जीवन पर और भविष्य पर भी पड़ता है।
2: बिल्कुल। और आज के समय की बात करें तो हम इंसान प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक धुआं और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, जिसका भयंकर परिणाम हमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और बढ़ते तापमान जैसी समस्याएं के रूप में हमें ये देखना पड़ रहा है।
3: बिल्कुल। और प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के सब कुछ देती है। शुद्ध हवा देती है, पानी है, फल फूल, औषधियां हैं, जीवन के लिए हर जरूरी चीज, हर संसाधन। बदले में वो केवल संरक्षण और संवेदनशीलता की अपेक्षा करती है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो बदले में वो भी हमें स्वस्थ जीवन, संतुलित जलवायु और समृद्ध भविष्य देगी।
2: बिल्कुल। और प्रकृति के संरक्षण के लिए बड़े अभियानों के साथ साथ छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधे लगाना, जल की बचत करना, बिजली का समझदारी से उपयोग करना, प्लास्टिक से दूरी बनाना, वर्षा के पानी का संचयन करना और जैव विविधता की रक्षा करना, ऐसे कदम हैं जो आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित बना सकते हैं।
3: बिल्कुल। और प्रकृति इंसान, जीव जंतु, पक्षी, ये अलग अलग अस्तित्व नहीं है बल्कि एक ही जीवन धारा के रूप है। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो वास्तव में हम अपने आप को बचाएंगे। प्रकृति का सम्मान करना भविष्य का सम्मान करना है, क्योंकि प्रकृति में हम हैं और हम में ही प्रकृति है। यही विचार हमें पर्यावरण संरक्षण, संवेदनशील जीवन और सतत विकास की दिशा में प्रेरित करता है। और मंजरी, पता है पूरे इतने सारे, हमारी इतनी बड़ी जो अंतरिक्ष है, इतनी उसमें चीजें, इतने प्लैनेट्स हैं, है ना, इतने ग्रह हैं, लेकिन सिर्फ एक पृथ्वी ही है, चाहे वो छोटा सा हमें दिखता हो, वो एक पृथ्वी है जिस पर लकड़ी यानी कि पेड़ पौधे हैं, पानी है और जीवन है, ना?
2: बिल्कुल।
3: तो उस जीवन को हमें बचा के रखना है, अपनी एक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों को, अपने जंगलों को बचाना बहुत जरूरी
2: बिल्कुल
3: है।
2: और इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर हम हर दिन कुछ ना कुछ सोचें कि पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो सोचो कितने सारे वृक्ष हो जाएंगे। और पेड़ पौधे बहुत तेजी से भी बढ़ते हैं, तो अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीजें बचेंगी, सलामत रहेंगी। और
3: ये मौसम भी पेड़ पौधे लगाने का,
2: बिल्कुल, वर्षा का जो मौसम होता है इसमें आप अनगिनत वृक्ष लगा सकते, पौधे बीजों का रोपण कर सकते हैं जिनसे पौधे तैयार होंगे, फिर आप लगा दें इधर उधर तो वो बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे। और जब भी कोई फल खाए ना, तो उसको एक बार आप मिट्टी में दबा के देखिए, एक नन्ना सा पौधा तैयार होगा,
3: जो बहुत खुशी मिलती है,
2: बहुत खुशी मिलती जब वो निकलता है। छोटा सा पहले बीज का आकार करेगा, फिर उसमें पत्ती कुछ दिन बाद खिलेगी, तो मन को बहुत भाती है वो चीजें। तो अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो वहां पर, वहां की हरियाली देखने तो जाते हैं ना, कि पहाड़ों पर चले गए, चलो यहाँ की हरियाली देख लेते हैं, तो हमें रोज इसके बारे में सोचना है। और एक और ध्यान रखना है कि जब हम पौधे लगाते हैं तो ये देखें कि उनको, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, उन्हें जल देना, उन्हें खाद पानी देना, इसका भी ध्यान रखें, तभी वो बढ़ पाएंगे। अगर हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और हम चले आए, हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा परिणाम,
3: वो सूख जाएगा, वो जो हमने लगाया बीज पता भी नहीं कहां अंदर, वैसा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है उसकी देखभाल, सिर्फ लगाना जरूरी नहीं है, उसकी देखभाल भी जरूरी है। और जो हमारे जो साथी हैं, जो हमारे सुनने वाले सखा हैं, सखियां हैं, वो सब भी

0: क्रैंस के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं। तो एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि प्रकृति और पुरुष का एक साम्य विशेष है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक से दूसरे की उत्पत्ति है, किंतु जब दोनों में विभिन्न कारणों से असंतुलन होता है तब उनके पारस्परिक संरक्षण की बात सामने आती है। वैसे तो एक वृक्ष को 100 पुत्र के बराबर कहा गया है, किंतु हम मनुष्य ही केवल अपने हित में विभिन्न कारणों से उनका दोहन किया करते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है, और ऐसे ही बिगड़े हुए असंतुलन को ही संतुलित करने हेतु आज का ये वैश्विक दिवस है, जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज के दिन मनाया जाता है।
1: कितनी अच्छी सी बात हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है।
0: ये तो सही है कि एक जो वृक्ष होता है वो 100 पुत्रों के बराबर होता है।
1: बिल्कुल, और भाई बच्चों से भी तो आप वृक्षारोपण करवा सकते हैं, पौधे लगवा सकते हैं। आप छोटे छोटे गमले बनाइए और उसमें बच्चों को बोलिए कि तुम ये बीजा इसमें बो दो, ये इसमें बो दो, तो उससे भी क्या होगा कि बच्चों को ये चीज समझ में आएगी कि हमने लगाया है, और वो रोज आकर के देखेंगे कि अरे ये पौधा बना कि नहीं बना। तो इससे बच्चों के अंदर भी एक उत्साह रहेगा और वो प्रकृति से प्रेम करने के बारे में सोचने और समझने लग जाएंगे।
0: और ये जो प्रकृति का प्रेम होता है ना, वो एक मतलब बहुत लोगों के साथ में ना होने से भी अकेलेपन को भी दूर करता है।
1: और आरती, इसी के साथ अंतराल का समय हो चुका है, तो मिलते हैं अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है और हम बात कर रहे थे प्रकृति की।
1: तो एक हमारे और साथी हैं जो लिखकर भेज रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में भी लिखा है उन्होंने कि इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन और वन्य जीव की रक्षा करना और पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। प्रकृति का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। संरक्षण के बिना जल, वन और वन्य जीव जैसे संसाधन लुप्त हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को रोकता है, जैव विविधता को बनाए रखता है।
0: तो आओ चलो पहले सुन लेते हैं गीत।

0: भाई मन कहे मैं झूमू मैं गाऊं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे संदेश आ गए आरती
1: उनको देख के
0: झूम रहे हैं। तो चलो एक संदेश हम लेते हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि प्रकृति जीवन का आधार है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है और सभी जीवों को स्वच्छ जल वायु व भोजन प्रदान करती है। प्रकृति का संरक्षण इसलिए ही अनिवार्य है क्योंकि मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग और प्रदूषण से हमारी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। वनों की कटाई, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक कचरा और वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा पानी और जमीन को दूषित कर रहे हैं, जिससे जीव जंतुओं का जीवन खतरे में है और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रकृति को बचाएंगे तो वो भी हमें बचाएगी, यही समझदारी है। बहुत खूबसूरत सी बात लिखकर भेजी है आपने। और हमारे कौर साथी लिखते हैं कि जो प्रकृति से करते हैं प्यार वो इसके संरक्षण के लिए कैसे करें इनकार। जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं तो फिर हम भी जिस प्रकृति या कुदरत के सानिध्य में रहते हैं तब हमें उनकी संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी बनती है। इसका मुख्य उद्देश्य जल, जंगल, जमीन, खनिज के साथ सभी वन्य जीवों से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हमारे सौराष्ट्र के गिर जंगल में बस रहे वन्य जीव जैसे कि गिर के सिंह अपने खुराक पानी की शोध में मानव बस्ती में आ जाया करने लगे हैं, जान माल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो भाई इस तरह की चीजों को भी ध्यान रखना है कि उनकी देखभाल भी हम कैसे करें।
1: बिल्कुल, और वैसे भी जो प्रकृति का संरक्षण है उसको हमें पूरी सजगता के साथ अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं जैसे कि अभी उन्होंने बताया, तो हमें अपने प्रकृति के लिए भी उतना ही सजग रहना चाहिए, है ना। तो
0: बिल्कुल।
1: और बात करते हैं प्रकृति संरक्षण का, माइको साथी हैं जो हमें वही चीज बता रहे हैं भी, जैसे कि 28 जुलाई है तो प्राकृतिक संसाधनों यानी जल, जंगल और वन्य जीव के संरक्षण और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रकृति का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: और इसके साथ साथ लिखते हैं कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यह हमें संदेश देता है कि प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर भी है। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, जंगल और वन्य जीव

0: प्रकृति के हर रूप में अपना महत्व है। आज विकास की दौड़ में पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और जल और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, प्रदूषण कम करेंगे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी धरती सदैव हरी भरी, सुंदर और जीवनदायिनी बनी रहे।
1: बिल्कुल बनी रहेगी जगह अगर हम लोग जागरूक रहेंगे तो। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ भाई बहनों की कुटाई पिटाई की।
0: बिल्कुल, हमारे साथी देखो लिखते हैं कि एक उन्होंने कविता लिखी है और ये तो अब वो ही बता सकते हैं कि कविता किसकी लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने लिखा है तो मैं पढ़ती हूँ। भाई बहन की, भाई बहन में हुई लड़ाई, घर में मची खुद दुहाई, किसने किसकी बात न मानी, किसने अपनी बात मनानी, दोनों ने फिर शोर मचाया, मम्मी ने आकर डांट लगाया, लड़ते लड़ते दोनों घबराए, आखिर किसकी हुई पिटाई। भाई बोला बहन ने मारा, बहन बोली भैया ने मारा, मम्मी बोली चुप हो जाओ, दोनों आकर गले लग जाओ, लड़ाई पल में प्यार बनी, हंसी खुशी फिर बात बनी, भाई बहन का रिश्ता न्यारा, लड़ते हैं फिर भी सबसे प्यारा।
1: सच में। और हमारे एक और साथी हैं जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई, मेरी तो कभी अपने भाई से लड़ाई नहीं हुई, हाँ मेरी बहन की भाई से बहुत लड़ाई होती थी, हम दो बहनों से, भाई छोटा था उन दिनों और उन दोनों में लड़ाई तो बहुत होती थी, पर बेचारा मेरा भाई बहन के हाथों खूब पिटता था। मेरी बहन थोड़ी सी लड़ाकू टाइप की थी तो ना तो कोई उसे जीत सकता था और अभी भी उनका नेचर ऐसा ही है, वो कहती है। तो यानी कि आपकी पिटाई होने हो सकती है आज। आपने लिखा है उनके बारे में बताया। हाँ। तो
0: और हमारे साथी लिखते हैं बचपन में हर भाई बहन की तरह हम भी छोटी छोटी बातों पर बहुत लड़ते थे। मैं बड़ी थी, भाई छोटा था, लेकिन बचपन में हम दोनों बहुत लड़ते थे। मैं जब भी रोटी बनाती तो मेरी चोटी पकड़ लेता, कहता तूने रोटी कच्ची रख दी है और सेक मतलब। मैं कहती सही सीखी है, टेबल एक ही हुआ करती थी, पढ़ने का टाइम दोनों का एक, तो टेबल के लिए लड़ाई कभी अपनी सहेली के जाती मम्मी से पूछकर तो आते ही कहता जरूर पिक्चर देखने गई थी, शोर ऐसा मचाता कि पूछो मत बस, लेकिन मम्मी पापा के सामने दोनों एकदम चुप सीधे सादे बन जाते, लेकिन हमारी कभी पिटाई नहीं हुई, हाँ प्यार से समझाया जरूर गया, कभी हल्की सी डांट मिली कि भाई छोटा है।
1: ये अक्सर होता है, जो छोटा होता है ना उसको ये एक फायदा मिलता है ना कि सब कहते हैं ये छोटा है इससे तुम मत करो। और एक और मेरे साथी जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई तो बहुत कम हुई, बचपन में छोटी छोटी सी बातों पर हम लड़ लेते थे, वैसे मैं बचपन से ही दीदी के साथ खेलता था तो बहुत कम ऐसा होता था कि लड़ाई हो, और अगर होती भी थी तो दीदी के हाथों की लगती भी नहीं थी मार।
0: तो चलो एक गीत सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो देखो आरती, कितना प्यारा सा ये गीत था। और हमारे साथी भी देखो एक संदेश में लिख रहे हैं कि भाई बहन की लड़ाई में किसकी कुटाई हुई, इस पर इतना ही कहूंगा कि मेरी तीन बहनें जो मुझसे बड़ी हैं, वो तो माता पिता के साथ साथ वो भी हमेशा मेरे अभिभावकों की भूमिका में रहती थी, और आज भी जब माता पिता नहीं है तो अब और ज्यादा उसी रूप में साथ निभा रही है। लेकिन मुझसे एक बहन छोटी जिसके साथ बहुत खेला हूं, चाहे कांच की गुड्डे गुड़िया के खेल हो या काना गोटी चपेटा वगैरह, पतंगबाजी हो, हर खेल में साथ रहे हर और झगड़े भी, लेकिन झगड़ा मुंह जबानी होता था, झूमा झटकी या कुटाई की नौबत तक नहीं पहुंचा, खेल जरूर बिगड़ जाता था और फिर माँ की डांट खानी पड़ती थी।
1: एक और हमारे साथी हैं मंजरी, जो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में मेरी ही कुटाई ज्यादा हुई है, क्योंकि मेरी दीदी बड़ी है और हमारे खानदान में बड़ी ही है, और सभी का स्नेह जैसे कि चाचा चाची दादी पापा और मामा और माँ, सभी का प्रेम जो न्यौछावर था। मुझे याद है बचपन में जब माँ मुझे कहती कि दीदी को उठा दे, तो मैं दौड़ते हुए उसके ऊपर कूद जाया करता था और जोर जोर से कहता था माँ दीदी मर गई। और जब माँ आकर के जो कुटाई करती थी, ऐसे नहीं बोलते, और कभी अगर पापा के सामने हाथ उठता था तो दीदी पर तो पापा की तरफ से कुटाई होती थी, लेकिन मेरी दीदी अभी तक हमें बहुत प्रेम करती है।
0: क्या बात है। और आपस में भाई बहन में जब लड़ाई होती थी तो तुरंत से ही वो सुधर भी जाती थी, और फिर तो हम एक दूसरे को आपस में ब्लैकमेलिंग बहुत चलती थी, और अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम्हारी बात बोल दूंगी, ऐसा हमारे संदेश ने साथी ने लिखा है। और ऐसी बात होती भी थी, आपस में लड़ाई झगड़ा होता तो यही होता तो पोल खुल जाएगी,
1: ये तो है ना।
0: तो एक लिखते हैं कि मेरी ताई जी की बेटी के साथ मेरी बहुत लड़ाई हुआ करती थी, पर हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार भी बहुत करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, इतना लड़ते थे कि एक दूसरे के बाल हम नोचते तो वो हम लोगों के साथ हाथ में आ जाया करते थे। जरा जरा सी बात पर झगड़ा हो जाया करता था, एक ही थाली में खाना खाते दाल खत्म हो गई और लानी है तो लड़ाई, तुम जाओ चौके से लेकर आओ, किसी ने पानी मांगा तो झगड़ा, हम ही क्यों लाए, तुम नहीं ला सकती हो, बेसिर पैर के झगड़े। और आज ये सब याद आ गए हैं, है ना।
1: बिल्कुल, यही चीज तो, ये तो खूबसूरती भी ऐसी चीज खेल रही है भाई बहन की। और एक हमारे जो श्रोता है जो लिखती हैं कि घर में एक सार्वभौमिक नियम होता है, जो बड़ा है वही दोषी है, लड़ाई चाहे छोटे ने शुरू की हो या बड़े ने, डांट हमेशा बड़े को ही पड़ती है। मम्मी का एक पेटेंट डायलॉग होता है, तुम बड़े हो तुम्हें समझ होनी चाहिए, नतीजा क्या होता है कि बड़ा भाई या बहन बिना गलती के भी सूद दिए जाते हैं या कम से कम डांट के भागीदार तो बनते ही है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं, ये तो सबको पता है कि भाई बहनों की लड़ाई कोई किले जीतने के लिए नहीं होती, बस मिनट या दो मिनट मामूली सा विवाद, फिर कुछ देर बाद सुलह, अक्सर करके हम भाई बहनों की लड़ाई में भी मेरी ही हार होती थी, क्योंकि मेरी दोनों बहनें एक टीम बना लिया करती, उनकी एकजुटता के आगे मैं बिल्कुल भी टिक नहीं पाता था और कुछ ही देर में सरेंडर कर देता था। कुल मिलाकर बहुत मजेदार सुनहरी यादें हैं बचपन की, जो भुलाए नहीं भूलती हैं।
1: बिल्कुल, एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में पिटाई तो भाई की ही होती थी, एक तो हम लड़कियां रोने धोने में माहिर होती हैं, दूसरा मेरे सब भाई मुझसे बड़े थे तो इसका फायदा उठाकर हम विक्टिम कार्ड खेलते थे कि उसके हाथ कितने बड़े हैं, मुझे यहां लग गई, उसकी धक्का मुक्की में मैं गिर पड़ी क्योंकि मैं तो छोटी हूं, उससे कमजोर हूं, पर बड़े होने के बाद उसी भाई से पक्की वाली ऐसी दोस्ती हुई कि आज भी हमेशा उसके साथ में खड़ी रहती हूं।
0: क्या बात है। चलो एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: हूँ तो भाई आरती देखो पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। जब बहुत भूख लगती है तो कहते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो इसमें हमारे साथी क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं कि चूहे दौड़ना मुहावरे का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब हमें बहुत तेज भूख लगी हो। यदि कोई, जैसे यदि कोई व्यक्ति सुबह से बिना कुछ खाए काम कर रहा है और दोपहर तक उसे बहुत जोर की भूख लग जाए तो वो कह सकता है सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है।
1: बिल्कुल। एक हमारी साथी जो लिखती है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा भूख लगना, हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफिन खोलकर खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई, मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई। उस समय हमने जाना कि सच में पेट में चूहे कूदना किसे कहते हैं।
0: बिल्कुल, और ये अक्सर ये चीजें हो ही जाती है ना।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे जो साथी लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना, भाई पेट है तो फिर चूहे तो दौड़ेंगे ही ना, अरे भाई उसे राशन पानी चाहिए ना चलने के लिए। इसलिए पेट में भूख का आकलन इस मुहावरे से किया जाता है, जिसका अर्थ है कि भूख की तीव्रता को प्रदर्शित करना। और भाई साहब अब तो वास्तव में ही पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसलिए अब तो बस हाँ लीजिए भोजन आ गया, यानी कि वो भोजन कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम सुनते सुनते।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं ऐसा तो होता नहीं, ऐसा हो जाए अगर घड़ी भर सोच लो, अगर वास्तव में पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो हमारा क्या हाल होता। वैसे तो ये मुहावरा अत्यधिक भूख लगने पर ही प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा यानी भूख लगने या किसी खास चीज का इंतजार करने पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि सखी सहेली सुनने के लिए कान में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या बात।
1: जी तो एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि हम अभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, दिन का समय है और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से मैं बार बार दो तीन बार गुजारिश कर चुका हूं कि घर का खाना बना दें, बना हुआ कुछ खाना खाने को दे दें मुझे, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, परंतु धर्म पत्नी जी मस्त कम्बल डालकर एसी कोच में सो रही है और आप ही मेरी धर्म पत्नी से आप सिफारिश कर दीजिए कि मेरे पेट के चूहे थोड़े शांत हो जाए, तो बिल्कुल प्लीज कल उनको खाना दीजिए।
0: हम लोग कह रहे हैं यहां से कि आप खाना खिला

0: दीजिए।
1: बिल्कुल
0: और एक साथी लिखते हैं, पेट पेट में चूहे दौड़ना, बेहद भूख लगना। हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफिन खोले खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई। मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई। और उस समय हमने सच में जाना कि पेट में चूहे कैसे दौड़ते हैं। तो आती ने इशारा किया कि मैं तो इसको पढ़ चुकी हूँ। चूहे और एक साथी लिखते हैं कि चूहे के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, इस कारण उनकी मजबूरी होती कुछ ना कुछ चबाते रहना। हमारी पेट की अग्नि भी कुछ इसी तरह से होती है, लगातार कुछ ना कुछ हम खाते ही रहते हैं, इसलिए इसे जोड़कर ये मुहावरा बन गया है, पेट में चूहे दौड़ना, है ना।
1: और जो एक और मैं श्रोता जो लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना यानी कि बड़ी जोर से भूख लगना, इसके लिए गुजराती मुहावरा भी है कि कड़कड़ी भूख लगी है, भूख न जाने लिखूं पाखूं, ऊंघ न जाने ऊंघ न गने उकरणों। जब भूख लगती तो बनाया हुआ कुछ भी खा लेते हैं और जब नींद आती तो कहीं भी सो जाते हैं।
0: तो चलो एक किसी बात पर एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: हूँ। तो आरती देखो, बातें करते करते समय तेजी से आगे बढ़ चला है और समाप्त की ओर हम लोग आ गए हैं। बहुत सारी हमने बातें करी, तो इसमें खास बात यह है कि भाई पेट में चूहे दौड़ने तो समय पर आप खाना खाएं, और प्रकृति की बात करें तो आप पेड़ पौधे लगाएं, जीवन सुखमय बनाएं।
1: और
0: और क्या पढ़ना चाहती हो तुम?
1: एक है जो साथी, उन्होंने लिखा है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर विविध भारती ने जो अकेलेपन में साथ दिया है, दिल से आभार प्रकट करती हूं। पहले रेडियो पर सुनती थी, अब तो मोबाइल में ही डाल दिया है। मेरे नाती ने जब उनकी फीस ज्यादा थी, अब मैं खुश हूं और सखी सहेली सुनकर घर बैठे अपडेट रहते हैं।
0: क्या बात है, विविध भारती सुनते रहिए और हम लोगों को दीजिए अनुमति। तो आरती श्रीवास्तव और
1: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

पिछले हफ्ते आज ही के दिन आपने सुनी थी आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। चलिए आज इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।

0: नहीं।
1: पत्नी को फिर छोड़ के लखनऊ और बंबई जाना
2: पड़ा। खूब वाली पड़ी।
1: अच्छा,
2: दिमाग खराब हो गया आपका, क्योंकि तू बीवी को छोड़ के जा रहा है। बुरी बात थी कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या मिलता है, सेफ्टी फॉर द फैमिली। पेंशन वाली नौकरी, आर्मी की नौकरी छोड़ के जा रहा है बेवकूफ, वो भी दूसरी बार। उनको हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक बार हार के आता ना आदमी तो हिम्मत नहीं होती। किसने हिम्मत दी? मेरी सिस्टर पैदा हुई, सुमन पप्पी,
1: उनकी पहली संतान, यानी आप लोगों की सबसे बड़ी बहन।
2: बड़ी बहन सुमन जब पैदा हुई तो 1956, उनको ये था कि मुझे बंबई जाना है। वो उनको आदत थी डायरी लिखने की, तो उन्होंने लिखा था कि मैं बंबई जाना चाहता हूँ, लेकिन बंसी वाले का इशारा नहीं आया। बंसी वाला इशारा करेगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही। इस बार अगर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी तो ये वापस भी नहीं लेंगे, और शादी भी हो गई अभी, तो जिम्मेदारी आ गई है, तो बंसी वाले का इशारा होगा मैं तब जाऊंगा।
1: ये इशारा कब हुआ?
2: ये इशारा हुआ 15 मई 1956 व्हेन सुमन वाज बॉर्न। उनको याद आया कि दादी कहती थी, क्योंकि दादी ने बड़ा किया ना, उनको याद आया कि दादी कहती थी कि कुड़ियां पियो के लिए गुड़ लग लांदी है।
1: वाह वाह,
2: मतलब एक जो लड़की आती है ना घर में,
1: पिताजी के लिए नसीब,
2: पिताजी के लिए नसीब लाती है, क्योंकि वो दुर्गा होती है। दुर्गा इज द फाइनल पावर।
1: ये
2: उनको याद आया, उन्होंने कहा ये इशारा मिल गया, अब तू वापस नहीं आएगा।
1: इस बार नौकरी पूरी छोड़ दी। द ईयर वॉज 1956।
2: फिर मुड़ के नहीं देखा पीछे।
1: गजब।
2: मैंने एक बार डैडी को पूछा कि डैड हम लोग चार हैं, दो भाई दो बहन, आपका फेवरेट चाइल्ड कौन सा है? ही सेड पप्पी,
1: सबसे बड़ी बेटी।
2: सबसे बड़ी बेटी। तो आई सेड क्यों, क्यों वो क्यों फेवरेट है, उसने क्या किया जो हमने नहीं किया? ही सेड उसने मेरी गरीबी देखी है। तुम तीनों मेरी अमीरी के बाद पैदा हुए थे, तुम्हें पता ही नहीं गुर्बत क्या होती है।
1: कमाल की बात कही है।
2: ही सेड मैं इसके लिए कंपस बॉक्स भी नहीं लिख सकता था।
1: ये नौबत उस लड़की ने

0: देखी है।
1: 13 साल 14 साल
0: जी जी,
1: तो तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी सेवा करो जिंदगी भर, कुछ भी करो, लेकिन वो जो उसने जिंदगी देखी है तुम ख्वाब में नहीं देख सकते।
0: इतना प्यार था बड़ी बेटी से।
1: आप जिसको डिनाय करोगे ना उसको आप कभी भूलोगे नहीं।
0: बंबई में क्या हुआ जब वो यहाँ आए, कहाँ रहे और वो रेल...
1: अलग अलग गेस्ट हाउस में अलग अलग,
0: बल्कि एक बार तो रेलवे वेटिंग रूम में लंबे समय तक रहे।
1: हाँ, वो वेटिंग जब वो पहली बार बंबई आए थे, उन्होंने कृष्ण भगवान को एक चिट्ठी लिखी थी, मेरे प्यारे बंसी वाले, उसमें उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा था कि आप देखिए ये बहुत जरूरी है सुनना, आप जानते हो दादागिरी क्या होती है, चाहिए अपने को भाई।
0: हाँ,
1: उन्होंने उस चिट्ठी में क्या लिखा है
0: जी जी,
1: तो हमने छापी है, आपने ट्रांसलेट किया उसको?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लिखा है मेरे प्यारे बंसी वाले, ये जो सपना है ना, गीत लिखूं, गीत गाऊं, गीत को परफॉर्म करूं, गीत की धुन बनाऊं, ये तूने मेरे आंखों में डाले, अब तू इसको पूरा करेगा।
0: क्या प्यारी बात है यार, वाह वाह वाह वाह वाह।
1: मांगा नहीं है, आप सोचो पूरी दुनिया मांग रही है। अरे मेरे को ये दे दे भाई, मैं इतने ये दे दे तो मैं ये फास्टिंग करूंगा, ये दे दो तो मैं यहाँ चढ़ा। अच्छी बात है, वो भी अच्छी, वो भी चलता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर। लेकिन यहाँ एक आदमी है जो कृष्ण भगवान को बोल रहा है, तूने ये सपना डाला ना मेरे आंख में, अब तू पूरा कर इसको।
0: तो कृष्ण पर उनका इतना ज्यादा विश्वास था, इतनी भक्ति थी कि पर्स में भी कृष्ण होते थे, और कई बार उन्होंने बंसी वाले को चिट्ठियां लिखी।
1: बड़ा नटखट है तू
0: कृष्ण के, नहीं क्या बात है, ये गाना भी बख्शी साहब का।
1: सर वो गाने में एक जो मेरा जो फेवरेट वर्स है ना, मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो कोई देखे सोचे समझे वो अपना।
0: वाह,
1: लाइन है, आप सोचो
0: वाह वाह,
1: क्या क्या नहीं चाहते लोगों से कि मुझे गाड़ी मिल जाए ऐसे, या मुझे ऐसे धंधा मिल जाए, लेकिन यहाँ ये बोल रही है कि मेरा बच्चे का एक, मेरे लिए मेरे बच्चे के लिए एक ही सपना है, इसको जो मिले ना, सोचे यार इसका आज मेरा होता।
0: क्या
1: इससे बड़ी दुआ है क्या दुनिया में?
0: नहीं, नहीं। क्या गजब का ख्याल है।
1: वो गाने में कहीं लिखा कि मेरा बेटा राजा बन जाए, या मेरा बेटा गाड़ी ले ले बड़ी, जो देखे समझे अपना, यार तो मेरे जैसा है, अपना ही जैसा है यार।
0: वाह वाह वाह।

0: क्या
1: एक बार हमारे घर में पार्टी हुई थी, डैडी के दोस्त का बर्थडे था, मिस्टर वीके मेहता, तो बख्श साहब ने गाना गाना शुरू किया, तो एक लाइन गाए और वीके मेहता साहब ने बोला बख्श साहब ये बहुत सैड गाना है, इसको मत बजाइए, खुशी का माहौल है। तो बख्शी साहब ने रविंद्र टैगोर को कोट किया, और हमारे घर में डैडी जब तक थे रविंद्र टैगोर की फोटो
0: जी
1: हमारे हॉल में थी, रविंद्र टैगोर की फोटो, ही सेड टैगोर ने कहा है द हैप्पीएस्ट सॉन्ग्स आर द सैड सॉन्ग्स, क्योंकि जब तक आपके आंख से आंसू नहीं निकलेगा यू विल नॉट स्माइल, टियर कम्स फॉर यू टू स्माइल।
0: आंसू जो है वो मुस्कानों के लिए रास्ता बनाते हैं,
1: आंसू मुस्कान के लिए रास्ता बनाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि आंसू मुस्कान का रास्ता है।
0: जब बंबई आए और अलग अलग जगह स्ट्रगल कर रहे थे तो एक टिकट चेकर ने उन्हें पकड़ लिया।
1: अरे कमाल है वो तो,
0: वो कहानी बताइए।
1: जय हो, मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं भूमि अग्नि वायु आकाश जल ईश्वर का नाम लेता हूँ, साथ में चित्रमल जी का नाम लेता हूँ, हमारे पितरों का नाम लेता हूँ, एंसेस्टर्स और चित्रमल जी का। चित्रमल जी कौन है? वेस्टर्न रेलवे टिकट कलेक्टर थे। जब 6 महीने में वो हार गए सेकंड टाइम, पैसे खत्म हो गए, तो वापस उन्होंने सोचा अभी तो वापस जाना पड़ेगा, तो वो मरीन ड्राइव स्टेशन में जाके बैठ गए कि यहां से ट्रेन पकड़ूंगा, दादर जाऊंगा, फिर दादर से सीधा डायरेक्ट फ्रंटियर मेल या पंजाब मेल पकड़ के वापस लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में मैके छोड़ के आए थे मम्मी को और बेटी को, तो वहां पर एक टिकट कलेक्टर आया, उन्होंने पकड़ा बख्शी साहब को, बोला टिकट दिखाओ, बोला टिकट नहीं है, फाइन भरो, तो बोला फाइन के लिए पैसे नहीं है, बोला भाई टिकट के पैसे नहीं है, फाइन के भी पैसे नहीं है, कौन हो तुम, क्या करते हो, क्या लिख रहे हो इधर बैठ के, मैं देख रहा हूं तुमको, मैं 4-5 चक्कर लगाया तुम इधर बैठ के कुछ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, बस सुनाओ, बोले मैं कविता लिख रहा हूं। अच्छा कविता लिख रहे हो, वो कविता का शौकीन था, फिल्मों का शौकीन था, हर गाना मालूम था, आप देखो क्या चमत्कार ईश्वर का, अपना आगरे के कहने वाले, क्या कर रहे हो, बोले मैं गीतकार बनने आया था, वापस जा रहा हूं, क्यों वापस जा रहे हो, काम नहीं मिला। अच्छा क्या लिख रहे हो उधर, आज क्या लिखा है, सुनाओ, सुनाया, अच्छा कुछ और सुनाओ, और सुनाया, 3-4 उसने कविता सुनी बख्शी साहब की, बोले तुम वापस मत जाओ, तो बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है रहने के लिए बंबई में, तुमने जो लिखा है वो जो आज के बड़े बड़े गीतकार है उसके लेवल का है, मैं तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ गाने, मुझे पता है कि आप तुमने ये तुम्हारी बहुत अच्छी लिखा है, मेरे को लगता है कि तुम्हारा हो जाएगा इस शहर में, लेकिन मैं रहूंगा कहाँ, ये तुम मेरे साथ रहो, घर ले गया उनको, 3 साल रखा उसने घर पे
0: बोरीवली में,
1: हाँ पैसे भी नहीं लिए, तो जिंदगी भर मरने तक दम तक पैसे नहीं मांगे बख्शी साहब से।
0: चित्रमल स्वरूप जी बख्शी साहब को अपने घर लेके आए, अब एक आसरा हो गया, यहाँ से स्ट्रगल किया जा सकता था। मैंने सुना है कि वो उनको जेब खर्च भी दिया करते थे।
1: हाँ कभी कभी कुछ 5-10 पैसे या 50 पैसे 25 पैसे देते थे, या आज स्ट्रगल करके आके इधर नौकरी काम ढूंढ के आया, वो हिसाब से। तो उनका एक बड़ा अच्छी पॉलिसी थी, उनको था कि मैं रोज जब तक 5 लोगों को नहीं मिलूंगा घर नहीं जाऊंगा वापस। एक बार वो फिल्मिस्तान स्टूडियो में उनको मिले रोशन साहब को, बहुत कोशिश की, रोशन साहब को नहीं, रोशन साहब नहीं मिलते थे, यू इज अ वेरी बिग स्टार एट दैट टाइम रोशन साहब,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: 1956। रोशन साहब ने ऐसे ही बोला अच्छा अच्छा ठीक है तुम कल सुबह आ जाओ मेरे घर पे। बोला साहब कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने लिख के दिया लिंकिंग रोड सेंटा क्रूज, लिख के एड्रेस लिख के दिया, तुम कल सुबह 10 बजे आ जाओ, जो तुमने कविता लिखी मैं सुन लूंगा। तो चले गए वापस बोरीवली और ज्वालानगर, तो वहां चले गए और जबरदस्त बारिश हुई, जैसे बंबई में बारिश हुई 2 दिन वैसे, और पूरा पानी भर गया, इतना पानी भर गया कि ट्रेन तो बंद हो जाती थी तब बहुत जल्दी, ट्रेन बंद हो गई और बीएसटी बस भी बंद हो गई। अब बोले यार ये तो 10 बजे का टाइम दिया इसने, अभी आर्मी में थे तो उनको आर्मी में जब सुबह ले जाते थे ना मार्चिंग या रनिंग, तुमको पता रहता था कि इतने हमको इतने किलोमीटर इतने टाइम में कवर करने के लिए हमको इतने स्टेप लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने कैलकुलेट किया अगर मैं बोरीवली से

0: सेंटा क्रूज लिंकिंग रोड वेस्ट चल के जाऊं तो कितने घंटे लगेंगे। तो वो हिसाब से उन्होंने चलना शुरू किया बरसात में, और रास्ते में छतरी भी टूट गई। बिल्कुल 10 बजे उन्होंने घंटी बजाई, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला तो बोले भाई कौन हो तुम? पूरे अजीब सा आदमी, पूरा गीला, कपड़े गीले, किताब गीली, ऐसे खड़ा है। बोला मुझे साहब ने, सर ने बुलाया, रोशन सर ने बुलाया। अच्छा ठीक है, रोशन साहब आए। बोला अरे भाई क्या हो गया, आपने मुझे बुलाया था?
1: पागल
0: इतनी बरसात में क्यों आए तुम? इसे आपने मुझे बोला था ना आने के लिए, आप मेरा गाना सुनेंगे। इसे हाँ, लेकिन इतना जरूरी नहीं था।
1: हाँ, उन्होंने कहा बख्शी तुम पागल हो क्या?
0: हाँ तुम पागल हो क्या तुम? इसे सर आपके लिए जरूरी नहीं था, मेरे लिए जरूरी था।
1: क्या बात है,
0: एकदम चौंक गया वो आदमी। उसको लगा कि सारा ये तो अलग ही आदमी है। टोलिया दिया, पहले सुखा किया, चाय पिलाई, बोला अच्छे सुनाओ।
1: हाँ।
0: और उन्होंने उनको बेदाग फिल्म में गाने दिए।
1: वाह वाह वाह वाह, यहां से शुरू होता है
0: कि गाने क्यों जरूरी हैं।
1: जी,
0: ये जो किस्सा है क्यों जरूरी है उनकी जिंदगी के लिए, क्योंकि उनकी भला आदमी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। फ्लॉप आदमी को काम नहीं मिलता हमारी इंडस्ट्री में, चढ़ते सूरज को सलाम है। रोशन साहब ने उनको जो लिया ना फिल्म में, सबको पता चल गया इंडस्ट्री में कि यार ये कौन है, तो उनको काम मिलना शुरू हुआ।
1: सोचिए कि शकील के नगमे थे, उसमें बख्शी साहब को बीच में मौका मिला।
0: राजेश रोशन हमारे घर आए 1970 में जूली फिल्म के गाने लिखवाने, तो राजेश रोशन की ये लव्स हैं। कभी आप उनको मिलेंगे तो पूछना कि तुम्हारे डैडी ने मुझे बोला था कि तेरे लिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तू रोशन का बेटा है, तेरे फादर ने मुझे सेकंड चांस दिया था इंडस्ट्री में।
1: वाह वाह।
0: और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने भूल गया सब कुछ, कुछ 2-3 हफ्ते लिए गाने लिखने में, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते। बोला मैं पक गया, मेरे को लगा बख्शी साहब गाना लिखने में भूल गए। लेकिन जब बख्शी साहब ने मुझे गाने दिए, अनफॉरगेटेबल सॉन्ग दिए मुझे जूली में, और इतनी मेहनत की बख्शी साहब ने मेरे लिए कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, कि बिकॉज आई वॉज रोशन सन।
1: कितना
0: बड़ा काम किया होगा रोशन साहब ने ये आदमी के लिए, कि ये 15-15 दिन ले रहा है गाना लिखने के लिए, जो तो आधे घंटे में लिख देता है।
1: रोशन साहब के लिए बख्शी साहब ने लिखा, आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का।
0: देवर द लास्ट फिल्म टुगेदर
1: जी
2: आया।

0: ये अलग ही मिट्टी के लोग थे।
1: बिल्कुल,
0: ये वो मिट्टी है जो बाढ़ में बहती नहीं है, नदी को पकड़ के रखती है, ये वो मिट्टी के लोग हैं।
1: जो पहला गाना था भला आदमी का, वो कैसे मिला था?
0: आई टोल्ड यू नो बख्शी आपका क्या था, मैं जब तक 5 लोगों को अपना ऑफर नहीं दूंगा, मैं कौन हूँ क्या हूँ, इंट्रोडक्शन करूंगा, काम नहीं मांगूंगा, मैं वह घर नहीं जाऊंगा, तो वो रंजीत स्टूडियो चले गए। उस दिनों में सारी फिल्में स्टूडियो में बनती थी, आउटडोर बहुत कम लोग जाते थे, वो गाने के लिए आउटडोर जाते थे। महाबलेश्वर चले गए या किधर इधर नेशनल पार्क चले गए, बोरीवली नेशनल पार्क, रंजीत स्टूडियो गए और वहां पर उनका जो चौकीदार था ना, बख्शी साहब वॉज वेरी क्लेवर। अच्छा, उनको पता था कि फिल्म स्थान में ऐसे जाओ तो भगा देते हैं, तो क्या करते थे, फिल्म स्थान के बाहर जाते थे और वहां से टैक्सी लेते थे
1: साहब की तरह।
0: तो सीधा अगर पैदल जाओ सारा स्ट्रगल आ गया, स्ट्रगल आया निकालो साले स्ट्रगलर को। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता चला कि अंदर साहब बैठे हैं और बहुत परेशान है क्योंकि उनका लिरिसिस्ट नहीं आया। तो बोला अच्छा नहीं आया, घुस गए अंदर। भगवंत दादा के रूम में चले गए, कौन है भाई तुम, क्या कर रहा है इधर तुम? इसे मैं फौजी हूँ और मैं गाने लिखता हूँ। फौजी की बहुत इज्जत थी, फौजी हो गाने लिखते हो, अच्छा क्या लिखते हो बताओ, सुनाओ कुछ। कुछ सुनाया तो बोला अच्छा ठीक है, मेरे को 4 गाने चाहिए, कहानी सुन लो और तुम 8-10 दिन में वापस आ जाओ, एक गाना लिख के ले आओ, चाहिए मुझे 4 गाने, एक गाना लिख के ले आओ। बख्शी साहब अगले दिन पहुंच गए वापस, बोला क्या हुआ भाई, बोला सब रेडी है, आपने बोला था ना गाना लिखने के लिए, हाँ लिख के ले, हाँ लिख के ले, सुनाओ। सुनाया धरती के लाल ना कर इतना मलाल, पता ऐसे कोई जो लव वर्ड्स हैं उसके गाने के, को बहुत पसंद आया। बोले वाह, तो बाकी कितने गाने लिखो, इसी से लिख के लाया, तीनों का चारों गाने लिख के लाया, चारों गाने लिख दिए तुमने
1: जी।
0: हाँ सुनाओ, सुना रिकॉर्डिंग होगी उसकी,
1: बाबा
0: 1 महीने में 4 गानों की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वो मिट्टी है जो बाढ़ भी आया ना तो नदी को बाहर ही निकल लेने के, ये वो मिट्टी के लोग।
1: इस तरह उनको पहला चांस मिला था।
0: हम क्यों करें चिंता, उनको चिंता हमारी है।
1: और यही हुआ कि उन्होंने भला आदमी के गाने लिखे, फिर रोशन साहब से मिले, बेदाग के गाने लिखे, और उसके बाद कल्याण जी आनंद जी से उनकी मुलाकात हुई और मेहंदी लगी मेरे हाथ फिल्म मिली,
0: पहली हिट थी
1: जी,
0: पहली हिट फिल्म जिसमें सारे गाने उनके थे। उससे पहले एक और हिट थी चांदसी महबूबा,
1: हाँ
0: सारे गाने बख्शी आपके नहीं थे, लेकिन
1: 1-2 गाने थे,
0: हाँ
1: हिमालय की गोद में,
0: हाँ लेकिन ये गाना बहुत चला था
1: जी,
0: जबरदस्त चला था ये गाना। मनोज कुमार जी टोल्ड मी ये मेरा फेवरेट गाना है मेरी जिंदगी का।

0: लेकिन जो पहली फिल्म जिसमें सारे गाने अनंत बख्शी के थे जो चली थी वो थी मेहंदी लगी मेरे हाथ,
1: और वो भी कल्याण जी आनंद जी भाई ने उनको मौका दिया था।
0: और उसके बाद उनकी एक फिल्म चली थी जब जब फूल खिले, सुपर हिट। उसके बाद मिलन आई
1: जी,
0: सुपर डुपर हिट। के बाद आराधना आई, आराधना ने बख्शी साहब को ब्रह्म लोक में पहुंचा दिया जिसमें वो 2002 से उतरे।

0: 6 बजे 7 बजे उठ जाते थे लिखते लिखते। हम स्कूल जाते थे और गाने लिख रहे हैं, वापस आओ गाने लिख रहे हैं
1: सोफे के सामने जमीन पे बैठ के।
0: जमीन पे बैठ के कोई नखरा नहीं।
1: कहीं कभी कोई होटल में गोवा भेज दो, रिजॉर्ट में भेज दो।
0: मेरे प्रोड्यूसर मेरे से बहुत खुश हैं। ऐसा क्यों खुश हैं? आपकी फिल्में चलती है नहीं, उनका पैसा बचता है। ऐसा क्यों पैसा बचता है? इसे क्योंकि मैं होटल रूम नहीं मांगता ना, तो मैं बोलता हूँ मुझे लोनावला ले चलो। तुम लोग सब लड़ रहे हो, तू इस लड़ाई के बीच में बैठ के
1: गाने लिख रहा
0: लेकर कोकर की सीटी बज रही है, पोस्टमैन आ गया है उसका पैसा देना है, बनिया आ गया है उसका सामान लेना है, उसके बीच में मैं गाने लिख रहा हूँ, प्रोड्यूसर का पैसा बचता है। आई एम वेरी एफिशियंट फॉर माई प्रोड्यूसर, क्योंकि उनका एक बहुत सिंपल फिलोसफी था कि बेटा ये धंधा है, मेरे लिए मेरा शौक है, वो मेरा घर चलता है इससे, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए धंधा है। इफ आई डू नॉट सेटिस्फाई द बायर ऑफ माई गुड्स, वाई विल ही बाय माई गुड्स अगेन? मैं 50 अंतर लिख के देता हूँ क्योंकि कोई और नहीं करता ये सब। तो वो जब मेरे पास आते हैं उनको पता है कि पैसे उतने ही लेगा, लेकिन बाकी उनसे ज्यादा लिख के देता है, इतने पैसों में इतना ही मिलेगा नहीं बोलता है। सो ही वॉज अ फैंटास्टिक मार्केटिंग एजेंट फॉर हिमसेल्फ, बट नॉट मार्केटिंग बाय सेइंग आई एम ग्रेट, बाय गिविंग यू मोर देन यू आस्क फॉर।
1: बहुत काम करते थे।
0: हाँ
1: मेहनत बहुत।
0: तुमने 3 मांगा ना, 31 लेके जा भाई।
1: मेरी

0: बहुत सारे संगीतकारों से बात हुई जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि बख्शी साहब को कोई गाना लिखने को कहा जाए तो जहां दूसरे गीतकार 3-4-5 अंतरे लिखते थे वहां बख्शी साहब 30-30 अंतरे लिख के देते थे।
1: जब आप होंगे जाने कहां होंगे 59 अंतरस।
0: अरे बाप रे 59।
1: इसे कि ये सरस्वती है ये बहर ही है इसको बहने दो रोको मत क्योंकि इसके पैसे इतने मिलेंगे तो नाराज हो जाएगी कि तुमने मुझे बहने नहीं दिया। हम सोचते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है उसको दबा के रख देते हैं कबर्ड के अंदर, वो घूमने आई है उसको निकालना पड़ेगा घुमाने लेकर जाना पड़ेगा आपको। धरती से जुड़ा हुआ कॉमन सेंस जो आपको हार्वर्ड में नहीं सिखाएगा है।
0: जी जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात की जाए कि उनसे बहुत लंबा रिश्ता रहा।
1: मुझे के नैयर साहब ने बताया था
0: जी
1: जर्नलिस्ट के उन्होंने इंटरव्यू लिया था बख्शी साहब का और उसमें कहा था कि मेरे ख्याल में लक्ष्मी जी का इंटरव्यू लिया था तो लक्ष्मी ने कहा था कि बख्शी साहब मुझे काफी बार फोन करते थे कि सुन मैंने क्या लिखा है मुखड़ा, तो मुझे जब भी मुखड़ा पसंद आता था मैं कह रहा था बख्शी जी अच्छा लिखा है लॉन्ग ड्राइव पे चले बोले आ जाओ। लॉन्ग ड्राइव क्या था वो जू से निकलते थे पारसवाणी से 10th रोड बैंटर आते थे पेरी क्रॉस रोड अपनी गाड़ी में बख्शी साहब को पेरी क्रॉस रोड से लेते थे और ये लोग जाते थे बर्ली सीफेस।
0: अच्छा और आगे निकल जाते थे।
1: हाँ बर्ली सीफेस में जाके वहां बैठ के गाना पूरा कम्प्लीट करके वापस आते थे।
0: अरे
1: उसका कोड वर्ड था लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव फॉर हन बख्शी वर्स इसको मेरा मुखड़ा पसंद आ गया है और इसको धुन दिख रही है इसमें।
0: हाँ तो सब लोग समंदर के किनारे बैठेंगे और उस गाने पर काम करेंगे
1: गाड़ी के अंदर ही बैठ के।
0: जी
1: वो अपना पान खाएंगे और गाना कंप्लीट करके आ देते उसको कहते थे लॉन्ग ड्राइव।
0: ये बड़ी पुरानी दोस्ती रही लक्ष्मी प्यारे और आनंद बख्शी की।
1: यस यस।
0: जब वो स्ट्रगल कर रहे थे
1: जब उन्होंने मिलन की कहानी सुनी साउथ इंडियन फिल्म की कहानी सुनी तो एक पान वाले के बाहर खड़े थे फिल्म सेंटर बहुत एकदम सीरियस हो गए थे बख्शी साहब। प्यारे जी ने पूछा प्यारे जी ने मुझे एक कहानी बताई थी कि बख्शी जी क्या हो गया आपको इतना सीरियस हो गए आप। बोले हाँ यार तब इमोशनल हो गया हूं कहानी सुन के। और उन्होंने ये लाइन कही थी प्यारे जी को समा ये सुहाना मैं खुश हूं मेरे पास क्या वो गाना मिलन का
0: मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे ना जाना मुबारक हो तुम समा ये सुहाना।
1: ही सेड मुबारक हो मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी इमोशनल फिल्म में हम तीनों साथ काम कर रहे हैं। आई एम ग्लैड दैट माई पार्टनर्स इन द सॉन्ग्स आर यू यू बोथ क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड द इमोशन दैट वी हैव जस्ट एक्सपीरियंस एंड कम। तो उन्होंने ये लाइन कही थी कि मुबारक हो सबको समा ये सुहाना मैं खुश हूं मेरे आंसू पे ना जाना मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। और ये इट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू एलपी मुझे प्यारी जी ने बताया था कि हमारे लिए बख्शी साहब ने हमको कॉम्प्लीमेंट दिया था कि देखो ये इतनी जरूरी फिल्म इतनी इमोशनल फिल्म में तुम दोनों मेरे साथ हो कमाल करेंगे हम साथ में।

0: काम हमेशा मांगा, जिसको भी मिला मैंने काम मांगा, आराधना तक। आराधना के बाद मुझे ईश्वर ने ऐसे जगह पहुंचा दिया, मैंने कभी किसी से काम मांगा नहीं, क्योंकि जब मुझे मौका मिला काम मांगने का, मुझे लगा अगर मैं किसी से काम मांगूंगा वो मेरे नाम पे काम दे देगा तो मैं किसी और का काम छीन लूंगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मैं 70 रुपए का सिपाही था, आज एक फिल्म के 70,000 मिलते हैं मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक फिल्म का 70,000 रुपए मिलेगा, तो मैं क्यों मांगू किसी से काम, किसी और के घर की लक्ष्मी मैं कितनी छीनना नहीं चाहता, मुझे जो है बहुत दिया मुझे ईश्वर ने।
1: मिलन फिल्म के गानों की बात हो रही है, एक रेल यात्रा वाला किस्सा है जिसमें बख्शी साहब दिल्ली जा रहे हैं और
0: तो उनको लोग बोलते थे अरे बख्शी साहब क्या फैंटास्टिक, आप तो ये अराइव्ड, यू नो जो इंग्लिश में बोलते हैं ये अराइव्ड, हिंदी में क्या उसका मुहावरा है
1: कि कामयाब हो गए भाई आपका, तो
0: कामयाब हो गए आप तो यार, फिल्म पे फिल्म मिल रही है, गानों पे गाने मिल रहे हैं, तो मिस्टू रमेश शेट्टी ना के नहीं नहीं, क्योंकि क्या है कि एक बार वो सिर में चढ़ जाए ना तो आप गीत लिखना भूल जाएंगे, क्योंकि अभी आपको है कि अभी मैं तो बड़ा कामयाब हो गया हूं यार, मुझे क्या मेहनत करने की क्या जरूरत है, तो वो हमेशा हर तारीफ को डिफ्लेक्ट करते थे कि साला ये मेरे को, ये अगर तारीफ चिटक गई तो मैं गया खत्म हो जाऊंगा, उनको उनको ये था सरस्वती नाराज हो जाएगी, अगर मैंने ये सब क्रेडिट लेना शुरू कर लिया ना तो ये भाग जाएगी सरस्वती, चुप बैठो रिफ्लेक्ट करो, आरडी पे डाल दो, एलपी पे डाल दो, राजेश खन्ना पे डाल दो, राजेश खन्ना ने गाया इसलिए हुआ, हमेशा करते थे वो, डायरेक्टर पे डाल दो, राइटर पे डाल दो, अच्छी कहानी सुनाए तो हुआ, तो वो ही वॉज ट्रेवलिंग बाय फ्रंटियर मेल और पंजाब मेल, वो रात का वक्त था और एक अनशेड्यूल्ड स्टॉप में गाड़ी रुक गई क्योंकि सिग्नल नहीं था रेड का, तो बड़ा अजीब सा एक स्टॉप था जहां इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, पूरा स्टेशन काला था और एक फकीर लेट राइट, उसने आग जलाई हुई थी छोटी सी आग, और उस आग के रोशनी से अपना वो तानपुरा बजा रहा था और ये गाना गा रहा था, ये मिलन फिल्म का आई थिंक सावन का महीना, सावन का महीना पवन करे सोर, वो फकीर गा रहा था
1: जी,
0: और तब बख्शी आपको लगा यार ये ऐसा जगह है, ये ऐसी जगह ट्रेन रुकी है जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब यहां गाना सुनने के लिए आपको बैटरी खरीदनी पड़ेगी, लाइट नहीं है, आपको बाहर जाके दुकान से बैटरी खरीदनी पड़ेगी, आप उसको डालोगे तब वो चलेगा, और इस गांव में अगर मेरा गाना एक गरीब से गरीब फकीर गा रहा है, यानी कि जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां भी मेरा गाना पहुंच गया है,
1: वाह
0: बख्शी बस, जो लोग कह रहे ना वो सच है,
1: इसको कहते हैं कामयाबी,
0: तो कामयाब हो गया है।
2: सावन का महीना पवन करे सोर,

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन

0: चीज आपकी सक्सेस है ना, और यार सिंपल वर्ड्स में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। इसका जो क्रेडिट है ना, इट गोज टू शैलेंद्र, क्योंकि शैलेंद्र ने जब बख्शी साहब को सुना, शुरू से सुनते रहे थे, तो उनको लगा कि बख्शी साहब वो तो उर्दू ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि उर्दू पढ़ के आए थे। और क्या होता है, आप एक फील्ड में जाते हो, तो अगर यूनुस खान अगर वहां का टॉप जॉकी है, तो आप ट्राई एंड कॉपी यूनुस खान, और इफ अमीन सियानी इज योर गुरु, यू ट्राई एंड कॉपी अमीन सियानी। तो शैलेंद्र बोला देखो बख्शी साहब, क्योंकि बख्शी साहब जब आए थे तो बजरू साहब, साहिर साहब, ये सब बड़े बड़े लोग थे, उर्दू में लिखते थे काफी वर्ड्स।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनको तो उर्दू वाज़ अ सेकंड लैंग्वेज फॉर हिम, फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई की थी उन्होंने, तो वो भी उर्दू डाल देते थे गानों में। तो शैलेंद्र ने कहा कि बख्शी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गाने पूरे भारत में बजे और लोग आपके गानों को सिर्फ पसंद ना करें, उसको गाएं भी, तो उर्दू में मत लिखा करो, तुम सरल हिंदुस्तानी में लिखा करो जैसे मैं लिखता हूं। एंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज फर्ज। मस्त बहारों का मैं आशिक, जो मैं चाहे या करूं,
2: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

को ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ। सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: और फर्जी इतनी बड़ी हिट थी, इतनी बड़ी हिट थी वो फिल्म अक्रॉस इंडिया। ये सर यार चंद्र ने सही बोला था, अब तो मैं ये स्टाइल से लिखूंगा। उसके बाद गाने आए, अच्छा तो हम चलते हैं। वो गाने कहां से आए? शिल्नर की एडवाइस थी कि सरल हिंदुस्तानी में बातचीत की भाषा में लिखो। सो लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर अनबख्शी सक्सेस गोज टू शैलेंद्र जी।
1: कामयाबी का एक पक्का रास्ता।

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और यादें आपने बांटी। शुक्रिया,
2: थैंक यू।
1: गीतकार आनंद बख्शी की याद में उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से FM बैंड 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हम आपको जानकारी देंगे। हमारी आज की सभा में शेष रहे और कल की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। तो आइए श्रोताओं, पहले आपको सुनवाते हमारी आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में। अब से खुशीपूर्ण आप सुनेंगे ठीक 5:05 पर कार्यक्रम नारीलोक। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से शाम के 5:30 पर। हमारे केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ी आप सुनेंगे शाम के 6:15 पर। हिंदी प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से शाम के 6:30 पर। राजस्थानी प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर।

शाम के 7 बजे हमारे किसान श्रोता सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम के 7:30 पर। समाचार संजय आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:45 पर। रात्रि के 9 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

रात्रि के 10 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई के संपादित अंश। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि के 11 बजे। श्रोता, ये थे हमारी आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रम।

एक नजर डालते हैं हमारी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों पर। हमारी पाठकलन सभा की शुरुआत बुलतना की तरह सुबह 5:55 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह के 6:00। चिंतन आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से 6:05 पर। वंदना आप सुनेंगे 6:10 पर। रामचरित मानस गाना सुनेंगे 6:30 पर। कार्यक्रम खेती ने बात आप सुनेंगे 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:50 पर। बातें आप सुनेंगे 7:20 पर।

विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से सुबह के 7:30 पर। समाचार प्रभात आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह के 8:00। कार्यक्रम कुद्दी से आप सुनेंगे 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर।

सुबह के 9 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी प्रादेशिक समाचार। सुगम संगीत आप सुनेंगे 9:10 पर। एनसेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 9:30 पर। सुबह के 10 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

हमारे केंद्र से सुगम संगीत आप सुनेंगे सुबह के 11 बजे, फिल्म संगीत आप सुनेंगे 11:30 पर, दोपहर के 12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का मैं ही चैनल है। इस समय शाम के 5:05 हुए ही प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी लोक।

0: मेरे लोग कार्यक्रम सुनने वाली मेरी प्यारी सभी बहनों को आपकी बहन सीमा जैन का प्यार भरा नमस्कार। आओ मिलकर ठाने आज हर आंगन को दे हम ताज, छोटी सी यह बगिया प्यारी, खुशियों से भर दे ये दुनिया सारी। मिट्टी गोबर खाद मिलाए, रसायन से दूरी बनाए, टमाटर मेथी पालक उगाए, ताजी सब्जियां घर में ही पाए। स्वस्थ रहेगा पूरा परिवार, प्रकृति का होगा सत्कार। आओ बहनों कदम बढ़ाए, जैविक खेती घर घर लाए, किचन गार्डन बने पहचान, स्वस्थ जीवन खुशहाल जहान। जी हाँ बहनों, जैसा कि आप समझ ही गई होंगी कि आज हम बातचीत करने वाले हैं जैविक किचन गार्डनिंग के बारे में, तो आइए चलिए सुने आज की बातचीत आज के हमारे मेहमान के साथ। बहनों आज के कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं आज की मेहमान अनुपमा उपाध्याय। ये एक प्लांट लवर हैं और इन्हें पेड़ पौधे लगाने का बहुत ही शौक है। बहनों इन्होंने अपने छत पर एक बहुत ही सुंदर बगिया भी लगा रखी है। नमस्कार अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नारी लोक में। नारी लोक की सभी बहनों को अनुपमा उपाध्याय का सादर नमस्कार। अनुपमा जी, जैसा कि हमारा आज का विषय है जैविक किचन गार्डनिंग, लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी छोटी सी बगिया में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं।
1: सीमा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मेरी छोटी सी बगिया है, इसकी प्रेरणा मुझे मेरे माता पिता से मिली और बचपन से ही बहुत शौक था। तो अब जब हमारा ये मकान हुआ तो मैंने अपने शौक को पंख लगा दिए और छोटी सी बगिया है, उसमें मेरे फ्लावरिंग प्लांट भी है, फ्रूटिंग प्लांट भी है, ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, कुछ एक जेट की बोनसाई पे भी मैंने काम किया है और मेरे संग्रह में एडेनियम भी है जिसको हम डेजर्ट रोज कहते हैं, और हमारे राजस्थान की जो जलवायु है गर्मी की उसके अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छा प्लांट है, और भी कई तरह के प्लांट्स मैंने एड किए हुए हैं।
0: अरे वाह अनुपमा जी, आपने तो बहुत ही अलग अलग तरह के पौधे अपनी छोटी सी बगिया में लगा रखे हैं। अनुपमा जी, जैसा कि आज के समय में जैविक किचन गार्डनिंग की बहुत सी बातें हो रही हैं, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जैविक किचन गार्डनिंग होती क्या है।
1: जी, आपको बताना चाहूंगी कि ये जो जैविक किचन गार्डनिंग है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप में हम हर कोई कर सकते हैं, और छोटी सी आपकी बालकनी हो या आपकी छोटी सी छत हो तो आप उसमें कर सकते हो। और आपके जो रोजमर्रा की जो दैनिक सब्जियां हैं, पुदीना है, धनिया है, मिर्ची है, बैंगन, टमाटर है, ये आप छोटी सी जगह पे ग्रो कर सकते हो, तो आपको ये किचन में आपकी मदद करेगी और आपकी बजट में भी आपकी हेल्प करेंगी।
0: बिल्कुल सही कहा अनुपमा जी आपने। आज के समय में हर कोई ये चाहता है कि बिना कीटनाशक और रसायन वाली सब्जियां वो खाएं ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे, और साथ ही बाजार की महंगी सब्जियों के बजाय ये सब्जियां हमें घर में ही सस्ते में उपलब्ध हो जाएं। तो अनुपमा जी, हमारी बहनों को ये बताएं कि इस तरह का जैविक किचन गार्डन हम अपने घर में किस तरह से तैयार कर सकते हैं।
1: इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपके घर

0: में जो किचन का जो वेस्ट निकलता है, सब्जियों के छिलके हैं, चाय की पत्ती है, केले के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, इनकी आप घर पर एक किचन वेस्ट जिसको बोल सकते हैं, उसका किचन वेस्ट आप घर पर बना सकते हैं और उन्हीं को दे के आप अपने जो घर की ये जो सब्जी बोल रहे हैं जिसको हम किचन गार्डनिंग कहते हैं वो आप कर सकते हो। तो उसमें आपको दो फायदे मिलेंगे कि आपको बाजार की रासायनिक वाली सब्जी भी नहीं मिलेगी, प्लस दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो घर का किचन का वेस्ट मटेरियल है जिसको आप बाहर फेंक देते हो तो वो भी आपका यूज हो जाएगा। तो इसी बहाने हमारे एक पंथ दो काज वाली कहावत को हम चरितार्थ कर देंगे। जी अनुपमा जी, आपने बहुत ही सुंदर बात कही कि इस तरह से एक पंथ दो काज वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। अनुपमा जी, आप हमारी बहनों को ये बताएं कि इस किचन गार्डन को बनाने के लिए हम किस तरह की मिट्टी लें, किस तरह का बीज लें, उसमें पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए, कौन से पौधों को धूप में रखा जाए, कौन से पौधों को छांव में रखा जाए, उन्हें छत पर रखा जाए या अपने आंगन में रखा जाए, ये सारी जानकारी आप हमारी बहनों को बताएं। जहाँ तक किचन गार्डनिंग का सवाल है तो उसके लिए हमको जो मिट्टी चाहिए वो मिट्टी हम कोई भी ले सकते हैं, चाहे अगर आपके घर के बाहर कोई प्लॉट खाली हो तो मिट्टी ले सकते हैं। उसमें फिर जब हमने जो किचन कंपोस्ट घर का बनाया है वो हम ऐड कर देंगे तो उसकी बढ़ जाएगी उर्वरक क्षमता। और जो ये सब्जियां हमको लगानी है उसके लिए हम घर में से जैसे कोई पेंट के डब्बे हैं या तेल के डिब्बे हैं और कई तरह के जो हमारे घर में वेस्ट मटेरियल निकलता है जैसे कोई टब है, बाल्टी है, इनमें भी आप ग्रो कर सकते हो। और जहाँ तक इनकी धूप की बात रही तो जैसे धनिया वगैरह है इनको कम धूप लगती है, बाकी नहीं तो अगर आपके पास टेरिस है या आपके पास कोई बालकनी है जहाँ कम से कम 3-4 घंटे की भी धूप आती है तो आप वहाँ पर इनको ग्रो करिए, वहाँ पर ये अच्छी तरह से बढ़ पाएंगे। और किचन गार्डन के लिए जो सब्जियां लगाना चाहते हैं तो जैसे धनिया है, दाना मेथी है, इनके बीज तो हम अपने घर में ही अपने पास रहते हैं, उनसे आप ग्रो कर सकते हैं। और जो मिर्ची है, टमाटर है, इनके बीज आप चाहें तो किसी दुकान से ले सकते हैं या तो फिर आपके पास जो सब्जियां होती है जैसे कई बार हम करेले लेते हैं उसमें सूखे हुए बीज निकलते हैं, गिलकी के बीज निकलते हैं, तो आप इनसे भी ये सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। और कई बार मेरी बहनों की शिकायत रहती है कि भाई फूल तो बहुत आ रहे हैं, पत्ते तो बहुत आ रहे हैं लेकिन कोई सब्जियां आती नहीं है। तो पौधों में ये भी ध्यान रखने की आपको जरूरत पड़ेगी कि जैसे ही सब्जी वाले पौधे में फूल बनने लगेगा आपको उसमें नियमित रूप से खाद देनी पड़ेगी, चाहे आप उसमें खाद दें घर की बनी हुई, और अगर खाद नहीं देना चाहे तो जैसे घर में जो हम चाय की पत्ती यूज करते हैं उसको धो के हम पौधे में डाल सकते हैं एक सप्ताह। दूसरे सप्ताह हम जो है प्याज के छिलके निकलते हैं उनको हम पानी में भिगो दें 24 घंटे के लिए और बाद में उनको डाइल्यूट करके पौधे में डाल दें। हमारे घर में केले के छिलके निकलते हैं तो केले के छिलकों को भी इसी तरह पानी में भिगो दें और 24 घंटे बाद जो उसका पानी है उस पानी को डाइल्यूट करके सब पौधों में थोड़ा थोड़ा डाल दें। तो अगर आप किचन वेस्ट बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो आप इस तरह से भी घर के छिलकों का उपयोग अपनी बागवानी में, अपने किचन गार्डन में ले सकते हैं। अनुपमा जी, ये तो हुई तैयारी की बात, पौधे लगाने की बात और खाद की बात, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी मेहनत और तैयारी के बाद भी पौधों में कीड़ा लग जाता है और फिर हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है, तो हम हमारे पौधों को इन कीड़ों से किस तरह से बचा सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि जब फल पकने आता है और हम ये समस्याएं देखते हैं ना तो हमारा मन दुखी भी हो जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, घर में हमारे पास सब चीजें हैं जिनसे आप घर में फ्री का रसायन बना सकते हैं, इनसे आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। आपके घर में मिर्ची है, लहसुन है, तो लहसुन और मिर्ची उनको पीस लीजिए और उनका एक घोल बना लीजिए और उसको रख दीजिए 24 घंटे के लिए और उसको छान के उसको स्प्रे कर दीजिए जहाँ पे आपके लगे हैं एफिड्स होते हैं, मिली बग्स होते हैं, ये लग जाते हैं हमारे पौधों में, तो उनपे स्प्रे करिए, उससे वो ठीक हो जाएंगे। दूसरा, अगर नीम ऑयल आपके पास अवेलेबल हो तो नीम ऑयल और जो लिक्विड सोप होता है वो और मीठा सोडा, इन तीनों को 1 लीटर पानी में 1-1 चम्मच लेके और उनका घोल बना के उनको भी स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी ये जो एफिड्स हैं और मिली बग्स हैं ये पूरे साफ हो जाएंगे, आपके पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अनुपमा जी, हमारी बहनों को आपने जैविक किचन गार्डन के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी, चलते चलते आप हमारी बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं सभी से नारी लोक कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि सभी अपने घर के बाहर या अपने घर की बगिया में अपनी तरफ से जो भी पर्यावरण के प्रति योगदान देना चाहते दे सकते हैं वो दें अवश्य, क्योंकि अभी कोरोना में भी हमने देखा है कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई और हमको पैसे देने के बावजूद ऑक्सीजन नहीं मिली, तो हम अपने बच्चों के लिए आगे भविष्य में क्या ये सीमेंट कंक्रीट के जंगल छोड़ के जाएंगे, तो हमको उस विषय में थोड़ा आगे सोचते हुए पेड़ पौधारोपण करना पड़ेगा। पेड़ लगाइए और लगाना ही सिर्फ उद्देश्य मत रखिए, उनका संवर्धन भी कीजिए ताकि आने वाले समय में हमारा हरा भरा एक विकसित समाज तैयार हो सके। धन्यवाद।
0: अनुपमा जी, आपने हमारी बहनों को बहुत ही सुंदर संदेश दिया, ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है।

0: बहनों, जहां इन्होंने केवल हमारे किचन गार्डन के बारे में ही नहीं बल्कि हमारे समाज, पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ी की सुरक्षा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी, धन्यवाद।
1: इस बातचीत के बाद बहनों बातें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं बारिश में भीगा हुआ ये प्यारा सा गीत।

मानो हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें लिवर में सूजन आ जाती है और इसका मुख्य कारण वायरल संक्रमण होता है। यह हेपेटाइटिस मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इन 5 प्रकार के संक्रमण के तरीके, स्वास्थ्य पर प्रभाव और रोकथाम के उपाय अलग अलग होते हैं। बहनों, हेपेटाइटिस बीमारी की गंभीरता का पता इसी बात से चलता है कि कोविड के बाद से हर साल इसके रोगियों की संख्या बढ़ रही है और यह बीमारी लिवर कैंसर का प्रमुख कारण बन रही है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इससे लड़ने, इसकी रोकथाम को बढ़ावा देने, इसके मरीजों की देखभाल करने और इसके उपचार को सभी तक पहुंचाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हेपेटाइटिस की बीमारी दूषित खानपान, अल्कोहल के अत्यधिक सेवन या शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की गड़बड़ी के कारण होती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस के कुछ प्रकार संक्रमित रक्त, असुरक्षित सुई या माँ से बच्चे में जन्म के समय फैलते हैं। हेपेटाइटिस के लक्षण शुरुआत में अन्य दूसरी सामान्य बीमारियों की तरह ही दिखाई पड़ते हैं, इसलिए जल्दी से ये बीमारी पकड़ में नहीं आ पाती, जैसे कि लगातार थकान और कमजोरी, भूख कम लगना, जी मिचलाना, आंखों और त्वचा का पीला पड़ना, गहरे रंग का यूरिन आना या पेट में दर्द होना। पहले हेपेटाइटिस ए और बी के लिए सुरक्षित टीके उपलब्ध हैं। आजकल जन्म के तुरंत बाद ही कुछ दिनों के अंदर ही बच्चों को ये टीके लगा दिए जाते हैं, जिससे जीवन भर वे ऐसी घातक बीमारी से सुरक्षित रहें। हेपेटाइटिस से बचाव के लिए कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखें, जैसे हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें, साफ भोजन पानी का उपयोग करें, किसी भी इंजेक्शन के लिए केवल नई और सुरक्षित सुई का ही उपयोग करें, रक्त चढ़ाने की जरूरत होने पर विश्वसनीय तरीके से जांचा हुआ रक्त ही चढ़वाएं, गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच और चिकित्सीय सलाह से नवजात शिशु को भी हेपेटाइटिस के संक्रमण से बचाया जा सकता है। बहनों, जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है, इसलिए जानकारी रखें और जागरूक बने, जिससे हम स्वयं, हमारा परिवार और हमारा समाज स्वस्थ बना रहे। और जैसा कि किसी ने कहा है, जागरूकता सबसे बड़ी ढाल, स्वस्थ जीवन सबसे बड़ा कमाल। आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, हेपेटाइटिस मुक्त समाज बनाएं। महीनों, अब समय हो चला है एक ब्रेक का, और बाकी बातें करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये गीत।

बहनों इसी के साथ समय हो चला है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर एक महत्वपूर्ण संदेश, प्रकृति है तो कल है अपना, प्रकृति से ही जीवन सपना, रक्षा इसकी धन हमारा, यही बने संकल्प हमारा। और साथ ही बहनों बारिश के इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्ति की आज्ञा दीजिए आपकी बहन सीमा जैन को। नमस्कार।

0: नारी लोक कार्यक्रम प्रसारित किया गया। एफएम बैंड 103.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय शाम के 5:30 होने को है। आइए सुनते हैं विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: बस कुछ ही पलों में

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: सभी सुनने वालों को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सलामी इश्क फिल्म के गीत से, जिसे गाया है सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने, गीतकार समीर, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

साजन का घर लीजिए। इस फिल्म का गीत सुनिए, आवाजें साधना सरगम और कुमार सानू की, तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने, वो लिखे हैं समीर ने।

0: जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पांच गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल, जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
5: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
4: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
6: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
4: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
7: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
4: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: इस समय आप सुन रहे कार्यक्रम तराने नए पुराने, कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में। अब सुनिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, आवाज दे रहे किशोर कुमार और लता मंगेशकर, फिल्म का नाम फरार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात

0: घर पर लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
2: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
0: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
0: विविध भारती, जो हर पल है आप।

कार्यक्रम के शेष गाने हम आपको सुनवाएंगे 6:05 से। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में

0: 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हाल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 70 अंक गिरकर 76,766 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंक कम होकर 23,985 पर आ गया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। चीन के हांगझोउ में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए, जिसे आवाज दे रहे हैं किशोर कुमार, आशा भोसले और साथी। फिल्म का नाम प्रेम नगर।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
5: मुकेश के गानों में है सादगी।
6: एक दिन बिक जाएगा माटी के नाम,
5: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
6: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
5: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
6: जाऊं कहां बताए दिल।
5: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
6: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
5: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

नाराज ये नाम है फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाज कुमार सानू की, गीत कतील शफाई का और संगीत अनु मलिक का।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय शाम के 6:15 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है
1: 9414066730।
2: जी हाँ दोस्तों, भारत में हजारों लड़कियाँ हर वर्ष गायब हो जाती हैं और उन्हें

देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया जाता है। गरीबी के कारण कई लड़कियों को मंडी में सब्जी की तरह बेच दिया जाता है। इन लड़कियों की कहीं पूछ परख करने वाला नहीं होता। ऐसी ही एक कहानी है जो आज मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। 13 वर्षीय ख्वाहिश, बहुत ही खूबसूरत, पढ़ाई में होशियार, अपने माँ बाप की अकेली संतान जो अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा करना चाहती है। एक दिन ख्वाहिश अपने माता पिता से एक मेले में जाने की जिद करती है, पर उसके माता पिता को अपने मालिकों से छुट्टी नहीं मिल पाती। बेटी को उदास देख उसकी माँ भी उदास होती है और ये बात

0: बेटी को उदास देख उसकी माँ भी उदास होती है और ये बात अपने साथ काम करने वाली सुधा से बांटती है।
1: सुधा बहन, आज मन बहुत उदास है।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे तुम्हें तो पता है मेरी बेटी ख्वाहिश कितनी समझदार बच्ची है, और हाँ हमारी आर्थिक स्थिति को समझते हुए आज तक उसने कभी हमसे कोई जिद नहीं की, और आज जब पहली बार उसने मेले में जाने की बात की तो हम उसे ले जा नहीं सकते, बस यही सोचकर परेशान हूँ।
0: सुधा कुछ सोचती है और एकदम से बोल पड़ती है।
2: अरे कोई बात नहीं बहन, तुम नहीं तो उसकी सुधा मासी है ना, मैं उसे ले जाती हूँ।
1: अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम उसे अगली बार ले जाएंगे।
2: अरे बहन कैसी बातें करती हो, मैंने 6 महीने से कोई छुट्टी नहीं ली है, मैं अभी छुट्टी लेकर निकल जाती हूँ और ख्वाहिश को स्कूल से ले लूँगी और वहीं से उसे मेले भी ले जाऊंगी।
0: ममता कुछ सोचती है पर सुधा के बार बार प्यार से जिद करने पर मना नहीं कर पाती। ख्वाहिश का अभी बचपन भी नहीं गया था कि उस मेले में उसका अपहरण हो जाता है। अपने परिवार से दूर ख्वाहिश को जिस्म फरोशी के धंधे के लिए बेच दिया जाता है और उसका सामना ऐसे नर्क से होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यह ख्वाहिश के माता पिता बहुत रोते हैं।
1: सुधा, अरे कैसे हो गया रे, मेरी ख्वाहिश कहाँ खो गई?
2: बहन ममता मुझे माफ कर दो, ख्वाहिश बहुत जिद कर रही थी, उसे बड़े वाले झूले पर जाना है। मैंने उसे बहुत बहुत समझाया कि मुझे डर लगता है और मैं उसे अकेले नहीं जाने दे सकती, पर वो नहीं मानी। ममता बहन मुझे माफ कर दो, ख्वाहिश का ख्याल नहीं रख सकती
1: मेरी बच्ची।
2: बहन मुझे माफ कर दो।
0: ख्वाहिश के माता पिता ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट भी लिखवाई लेकिन ख्वाहिश का कुछ पता ना चला। और दूसरी ओर उस अंधेरी दुनिया में सबसे पहले ख्वाहिश का सामना वहाँ के सबसे बड़े व्यापारी से होता है जो उसके साथ क्रूरतापूर्वक दुष्कर्म करता है। इसके बाद ख्वाहिश को उस मंडी में भेज दिया जाता है जहाँ जिस्म का सौदा होता है। ख्वाहिश की वहाँ पर राधिका नामक लड़की और ज्योति नामक मैडम से मुलाकात होती है। ज्योति इस धंधे का कामकाज देखती है। राधिका और ज्योति इस धंधे की बारीकियाँ ख्वाहिश को समझाती हैं ताकि वह वेश्यावृत्ति कर सके। ख्वाहिश इसके लिए तैयार नहीं होती, वह दुर्भाग्य को मानने से इनकार करती है। कई बार भागने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाबी ही उसके हाथ लगती है।

0: बुरे और हिंसात्मक व्यवहार के बाद ख्वाहिश धीरे धीरे वेश्यावृत्ति को स्वीकार कर लेती है। अब यही उसका घर और यही उसका परिवार है। ख्वाहिश का बचपना इस गंदे बाजार में खो जाता है। तनाव से दूर रहने के लिए वह शराब की आदी हो जाती है। आखिरकार उसे आशा की एक किरण नजर आती है। उषा नामक एक सोशल वर्कर अक्सर इस धंधे में लगी लड़कियों से मिलने आती है। वह उन्हें प्यार, मिठाइयाँ और सहानुभूति देती है। धीरे धीरे ख्वाहिश और उषा का रिश्ता गहरा हो जाता है और ख्वाहिश रो रो कर उषा से अपनी सारी कहानी सुनाती है।
1: उषा दीदी, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, वापस अपने परिवार के पास। आगे पढ़ना लिखना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ और अपने माता पिता के हर सपने को पूरा करना चाहती हूँ।
2: ख्वाहिश बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हारे परिवार को ढूंढ सकूँ।
0: कुछ वक्त बीतने के बाद उषा ख्वाहिश को बताती है कि उसने ख्वाहिश का परिवार ढूंढ निकाला है। ख्वाहिश एक बार फिर भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोठे पर

एक दिन ख्वाहिश के पास रोहन नामक कस्टमर आता है, जो कि उषा का दोस्त था। रोहन एक स्टिंग ऑपरेशन करता है और लड़कियों को छुड़ाता है। उन्हें सिर्फ एक गवाह की जरूरत होती है, जो उन व्यापारियों के खिलाफ अदालत में गवाही दे सके, लेकिन उन्हें एक भी गवाह नहीं मिलता। तब ख्वाहिश बिना डरे पूरी हिम्मत के साथ उन देह व्यापारियों के खिलाफ गवाही देती है, एक ऐसे हीरो की तरह जो डरपोकों की दुनिया में बहादुरी दिखाती है और बुराई पर अंत में विजय पाती है।

0: ख्वाहिश अब अपने परिवार से मिली और उसने सब बताया कि कैसे सुधा ने उस शाम धोखे से उसे देह व्यापारियों के हाथ बेच दिया था। पुलिस ने ख्वाहिश का पूरा बयान दर्ज कर सुधा और उससे जुड़े लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया और अब मानव अधिकारों का हनन करने के जुर्म में उन पर उच्च न्यायालय द्वारा कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, ख्वाहिश ने सब कुछ सहा, फिर भी उसने हार नहीं मानी। जिंदगी के हर गम भुलाकर अपने जीवन का फिर से एक नया अध्याय वो लिखना चाहती थी, लेकिन उसके अपने समाज और अपने ही गांव के लोगों ने उसका जीना उतना ही मुश्किल किया जितना कि पहले था। वो नजरें उठाती तो लोग उसे घूर रहे होते, कहीं से गुजरती तो अपनी ही कहानी लोगों की जुबानी सुनती। उसका अपना परिवार भी इन हालातों से जूझने लगा था, पर उसने अपनी नजरें लोगों की तरफ नहीं पर अपने ईश्वर की ओर लगाई। उसने हियाब बांधा और दृढ़ रही। वो लोगों की बातों से ना डरी और ना भयभीत हुई। वो जानती थी जो ईश्वर उन बुरे हालातों से उसे निकाल कर ला सकता है, वो इन हालातों में भी उसे ना छोड़ेगा। तू हियाब बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। बस फिर क्या था, ख्वाहिश की लगन और मेहनत ने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया और आज वो एक सामाजिक संगठन में अफसर है जो अपने जैसे हालातों से लड़ने वाली लड़कियों की मदद करती है कि वो अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सके। अब ना ही केवल उसका परिवार उस पर गर्व करता है, पर पूरे गांव ने उससे माफी मांगी और उसे वो सम्मान दिया जिसकी वो हमेशा से हकदार थी।
1: दोस्तों, इस दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है, क्योंकि आजकल मानव ही मानव का व्यापार करने लगा है। क्या विडंबना है ना श्रोताओं, आज मानव ही मानव के महत्व को भूल गया। दोस्तों, जब तक हमारे अंदर के इंसान को हम बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये मानव तस्करी होती रहेगी। हमें चाहिए कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों से बचे, जिससे मानव तस्करी में कमी आए। और इस तस्करी की समस्या ज्यादातर उन लोगों की वजह से होती है जिनकी मानसिक

0: समस्या ये है कि वो महिलाओं को, बच्चों को, मानव को महज एक खिलौना समझते हैं, महज पैसे कमाने का एक जरिया समझते हैं। अगर हम मानवता की बात करते हैं, हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उन बातों पर काम हम क्या करते हैं? इसके लिए जरूरी है कि हम सही मायने में एक मानव, एक योग्य मानव बने और इस तरह की चीजों को अपने समाज से हटाने में योगदान दें।
1: तो दोस्तों, अगर आप ख्वाहिश की जगह होते तो आप क्या करते? कहीं आपके आसपास भी तो कोई ख्वाहिश नहीं जो समाज की चिल्लाहटों में दब गई हो? दोस्तों, मैं चाहूंगी कि आप उसकी मदद करने का एक प्रयास जरूर करें।
2: इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है
3: 9414066730। श्रोताओं, नंबर में एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी, 9414066730।
2: यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1।
1: अंत में इस कविता के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगी। चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें, मैं सागर की लहरें बन टकराता रहा। कठोर छाती धकेल देती वापस मुझे, बटोर हिम्मत मैं बार बार वापस आता रहा। धूल घुल गई जब सोच के आईने से, मेरी कोशिशों का असर रंग दिखाता रहा। टूट रहा था वो पत्थर भी धीरे धीरे, साध निशाना मैं वार हर बार बरसाता रहा। बिखर रहा था वह इस चोट से जर्रा जर्रा, देख साहिल मैं उस पार रास्ता बनाता रहा। कट गया पत्थर मेरी रुकावटों का, धुन उमंग के गीतों की मैं गाता रहा। चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें, मैं सागर की लहरें बन टकराता रहा। मैं सागर की लहरें बन टकराता रहा।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आइए सुनते आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से पहले हिंदी और फिर राजस्थान प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम आयु और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार का लोगों को पानी, बिजली और स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर विशेष ध्यान। स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह इस बार बीकानेर में, मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर बैठक की। और प्रदेश में 2 अगस्त तक मॉनसून के सक्रिय रहने के आसार, कल 29 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं। अदालत ने इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कई अंतरिम निर्देश दिए। न्यायालय ने यह भी कहा है कि प्रथम दृष्टया आरोपों के आधार पर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें 200 से अधिक घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों की चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी है। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिसमें पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्ती भी शामिल है। साथ ही ऐसे मामलों के जल्द निपटारे के लिए हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये नया विधेयक इस बात की पुष्टि करता है कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार लाने का इरादा नहीं रखने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता जताई। उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में आउटसोर्सिंग के जरिए अधिकारियों की भर्ती पर भी सवाल उठाए। विधेयक को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपनी बात रख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल की 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रपति भवन में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बच्चों के लिए बाल परिसर समर्पित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने बच्चों से बातचीत भी की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से केलकारी प्ले जोन और समर्थ आंगनबाड़ी सह पालन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 4 साल में राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने वाली कई पहल की गई है। इससे औपनिवेशिक मानसिकता को दूर करने और जड़ों की ओर लौटने में मदद मिली है।
1: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को पानी, बिजली और स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। श्री शर्मा आज धौलपुर पहुंचे। उन्होंने फूलपुर में स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है।
2: प्रदेश के किसान को समृद्ध और खुशहाली बनाने के लिए पिछले 2.5 साल में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इस दृष्टि से 13.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के राम सागर के मध्य सिंचाई परियोजना के पुनर्निर्माण का कार्य का लोकार्पण भी किया गया है। इसी तरह राजाखेड़ा से नागर मीठावाली में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट बनाकर आज क्षेत्रवासियों को समर्पित किया गया है। सोने का पुर्जा में पुलिस थाना और बिजौली सेवर एवं झिरी में पुलिस चौकी बनाकर उनका लोकार्पण भी किया गया है।
0: मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 177 करोड़ रुपए की लागत के कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये काम शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री डीग के पूंछरी का लोठा पहुंचे। वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। श्री शर्मा कल भरतपुर के खेडली गुर्जर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए राशि डीबीटी करेंगे। मुख्यमंत्री मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का भी शुभारंभ करेंगे।

0: इससे पहले श्री शर्मा ने जयपुर में आज अपने निवास पर युवाओं के साथ संवाद किया। सपनों की उड़ान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षा, खेल, स्टार्टअप, माय भारत वॉलंटियर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से बातचीत की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर बीकानेर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होगा, वहीं एट होम कार्यक्रम जयपुर में होगा। इससे जुड़ी तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर आज जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को बीकानेर जिला प्रशासन के साथ तालमेल रखते हुए समय पर तैयारियां पूरी करने को कहा। बैठक में समारोह को गरिमापूर्ण, भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने को लेकर चर्चा की गई। बीकानेर संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा और जिला कलेक्टर निशांत जैन भी वीसी के माध्यम से इस बैठक से जुड़े। राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीए और यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बीच अकादमिक सहयोग के लिए एमओयू किया गया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की मौजूदगी में आज जयपुर में पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की ओर से डॉ विमल कुमार शर्मा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा। इस मौके पर डीजीपी श्री शर्मा ने कहा कि इससे पुलिसिंग, पुलिस कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि इस एमओयू के माध्यम से राजस्थान के पुलिसकर्मियों को डिस्टेंस लर्निंग और विभिन्न सर्टिफिकेट कोर्स के अवसर मिल सकेंगे। इससे पीएचडी, इंटर्नशिप और एक्सचेंज प्रोग्राम को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पुलिस बल का क्षमता संवर्धन, तनाव प्रबंधन और पेशेवर दक्षता मजबूत होगी। प्रदेश में 2 अगस्त तक मॉनसून के सक्रिय रहने और अधिकतर हिस्सों में बरसात की गतिविधियां तेज होने के आसार हैं। इस दौरान दक्षिण पूर्वी और पूर्वी हिस्से भारी बारिश से तरबतर हो सकते हैं। मौसम विभाग ने कल 29 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। जोधपुर संभाग को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात हो सकती है। इस बीच आज राजधानी जयपुर में दोपहर में पानी बरसा। सवाईमाधोपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बरसात हुई। तेज गर्मी और उमस के बाद आज चूरू भी अच्छी बरसात से सराबोर रहा। टोंक में हुई झमाझम बारिश से कई जगह पानी भर गया। भरतपुर में दिन भर कभी हल्की तो कभी मध्यम बरसात हुई। उधर सिरोही में दिन भर रिमझिम बारिश का दौर चला। आबूराज में पहाड़ों पर धुंध छाई हुई है और मौसम सुहाना बना हुआ है। वहीं हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा में उमस और गर्मी से लोग परेशान रहे। और अब लिवर के नाम एक जरूरी संदेश। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हेपेटाइटिस की पहचान, इलाज और रोकथाम के उपायों को लोगों तक पहुंचाना है। इस साल की थीम इसे खत्म करने के लिए बाधाएं मिटाएं रखी गई हैं। साथ ही वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। एसएमएस अस्पताल के उदर रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉ सुधीर महर्षि ने बताया कि हेपेटाइटिस बीमारी में लिवर में सूजन आ जाती है। समय पर इलाज नहीं होने पर मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है।
1: बचाव के लिए अपने को घर का बना हुआ खाना खाएं, ताजा बना हुआ खाना खाएं। जब भी खाना खाएं तो हाथ धो के खाएं। दैट इज बी सी और डी जो कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से या जो आईवी ड्रग एब्यूजर्स होते हैं उन लोगों में होता है, तो इस तरह के नशे और इस तरह की आदतों से बचें। और जब भी इस तरह के लक्षण आए, इनके लक्षण कॉमन लक्षण होते हैं जैसे पीलिया होना या बुखार होना या पेट में दर्द होना, उल्टी होना या उल्टी का मन करना, इस तरह के लक्षण जैसे भी आते हैं तो अपने नियर बाई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से तुरंत दिखा के उसका उचित इलाज करें। धन्यवाद।
0: जयपुर नगर निगम की ओर से एक अनूठी पहल शुरू की गई है। इसके तहत सावन के महीने में मंदिरों से बिल्व पत्र और फूल इकट्ठे कर जैविक खाद बनाई जाएगी। इस पर और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेएमसी की ओर से सावन महीने के हर सोमवार को निगम के इलेक्ट्रिक हुपर मंदिरों से जैविक पूजन सामग्री एकत्र करेंगे। इनसे मशीन और कंपोस्ट किट के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जाएगी। शिवा अर्पणम नाम से तैयार इस खाद को विशेष पैकेट्स में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट

0: के रूप में इसकी शुरुआत शहर के तारकेश्वर महादेव, झारखंड महादेव, जंगलेश्वर महादेव सहित 5 प्रमुख शिवालयों से की जा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: प्रदेश में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए धार्मिक स्थलों पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ये दिन गुरुओं के आदर सम्मान को समर्पित है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम आयु और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार का लोगों को पानी, बिजली और स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर विशेष ध्यान। स्वतंत्रता दिवस का राज्यस्तरीय समारोह इस बार बीकानेर में। मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर बैठक की। और प्रदेश में 2 अगस्त तक मॉनसून के सक्रिय रहने के आसार। कल 29 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसे भेजा है लक्ष्मी चंद नागर ने। हाड़ौती अंचल के 12 जिले में पिछले महीने विकास, कृषि, स्वास्थ्य, खेल, महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण और कानून व्यवस्था से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियां रहीं। सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ युवाओं, किसानों और आमजन के हित में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 12 जिले से की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से योजना का शुभारंभ करते हुए युवाओं से कौशल विकास और रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। योजना के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना के तहत माई भारत केंद्र द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहने तथा समाज में जन जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। नगरीय विकास और आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 12 नगर परिषद में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में आमजन को मिल रही सेवाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत श्रीराम स्टेडियम और खेल संकुल में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर 300 से अधिक खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इन विकास कार्यों से जिले के खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जिले के कोयला गांव की यशोधरा हाड़ा और एंजल हाड़ा ने राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। दोनों राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई हो गई हैं। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है और स्थानीय खेल प्रतिभाओं को नई प्रेरणा मिली है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV टीकाकरण अभियान में 12 जिले ने प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक ही दिन में 247 किशोरियों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक निर्धारित लक्ष्य का 36% से अधिक पूरा किया जा चुका है। महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम के तहत कृषि उपज मंडी परिसर में जिला स्तरीय आयोजन किया गया। इसमें लगभग 3000 महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव, हेल्पलाइन नंबरों तथा आत्मरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रशिक्षकों ने आत्मरक्षा के व्यवहारिक प्रदर्शन भी किए और विपरीत परिस्थितियों में सतर्क रहने के तरीके बताए। राज्य सरकार ने सोलर क्रॉप ड्रायर पर 40% तक अनुदान देने की योजना शुरू की है। इससे धनिया सहित उद्यानिकी फसलों के किसानों को फसल सुरक्षित ढंग से सुखाने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। आधुनिक तकनीक से किसानों की लागत घटने और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने की भी संभावना है। ग्रामीण

0: विकास मंत्रालय की विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन योजना का शुभारंभ जिले में भी किया गया। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को योजना की जानकारी दी गई। कार्यक्रमों में रोजगार, आजीविका संवर्धन और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न प्रावधानों की भी विस्तार से जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के तहत जिले में 1,70,658 किसानों के खातों में 34,13,00,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। अंता के कृषि विज्ञान केंद्र में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसानों ने योजना से मिल रही आर्थिक सहायता को खेती के लिए उपयोगी बताया। इसी के साथ 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, सुप्रीम कोर्ट 18 सालों कम उम्र रा बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाला प्रदर्शन करण वाला विद्यार्थियों ने तुरंत रिहा करण रा हुकम दीना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राज्य सरकार रो जनता ने पानी, बिजली और स्वास्थ्य जुड़िया बुनियादी सुविधा मुहैया करावण मा से खास ध्यान। स्वतंत्रता दिवस से मौके राज्य स्तर रो जलसो बीकानेर में, मुख्य सचिव तैयारियां रो जायजो लीनो। और प्रदेश में 2 अगस्त ताई चौमासारी चोखी बिरखारा आसार, काल 29 जिला सारू बारिश रो येलो अलर्ट। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट नीट परीक्षा पेपर लीक मामला में प्रदर्शन करण वाला 18 साल नु कम उम्र और गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाला विद्यार्थियों ने आज रिहा करण रा हुकम दीना। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहनारी पीठ नीट परीक्षा पेपर लीक मामला में लालना दिना आखा देश में भ्या प्रदर्शनों जुड़िया इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूत हिफाजत सागे राखन राई हुकम दिना। अदालत आ प्रदर्शना रे दौरान पुलिस कानू जोर आजमाइश रा आरोपों जुड़ी अर्जियां रे सुनवाई करता थका कई अंतरिम निर्देश दिना। पीठ कहो कि शुरुआती आरोपों रा आधारों निपक्ष और स्वतंत्र जांच माथे विचार करो जाऊ चाहिए, जिनमें प्रदर्शन रे दौरान जख्मी भ्या 272 पुलिस वाला रा परिवार रे चिंता रोई ध्यान रखो जाऊ चाहिए। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन बिल 2026 माथे चर्चा करी जा रही है। इन बिल में पेपर लीक रा दोषियां ने 10 साल ताई री कैद री सजा देवन सागे, वा माथे 10 करोड़ रुपया ताई रो जुर्मानो लगावन और मारी संपत्ति जब्त करन रोई प्रावधान है। इस आगे एड़ा मामला रा बेगा निपटारा सारू हर राज्य और केंद्र रा राज वाला प्रदेशा माए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलन रो प्रावधान है। बिल पेश करता था का कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहो के ओ बिल बतावे है के नौजवानों रा भविष्य सागे कोई समझौतो नहीं करियो चावेला। चर्चा रे दौरान कांग्रेस रा गौरव गोगोई सरकार माथे बनाई लिखाई रा हल्का माथे ध्यान नहीं देवन और असली सुधार लावन रो इरादो नहीं राखन रो आरोप मांडियो। समाजवादी पार्टी रा सांसद अखिलेश यादव न्यारी न्यारी परीक्षा वाला पेपर लीक वेवन पर चिंता जताई। वह राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी माए आउटसोर्सिंग रे जरिए अहलकारा ने भर्ती माथे सवाल उठायो। न्यारी न्यारी पार्टियां रा नुमाइंदा बिल जुड़िया मुद्दा माथे हमारी बात रख रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारा कार्यकाल रा 4 साल पूरा वेवन रे मौके आज राष्ट्रपति भवन माए न्यारी न्यारी परियोजना वारी शुरुआत कीनी। वह राष्ट्रपति भवन माए बच्चों सारू बाल परिसर समर्पित कीनो। इस दौरान राष्ट्रपति बच्चों सागे बातचीत कीनी। वह वर्चुअल तरीकाओं किलकारी प्ले जोन और समर्थ आंगनबाड़ी सह पालन रोई उद्घाटन कीनो। इस मौके श्रीमती मुर्मू देश रा विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण रे बारा माए चर्चा कीनी। राष्ट्रपति कहो कि लारला 4 साल

0: राष्ट्रीय भावना ने मजबूत करने वाली कई पहल करी जी जिनो गुलामी री सोच आगी करण और जनाओ जुड़बा माए मदद मिली है।
1: इन चार वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष इसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो है कि राज्य सरकार जनता ने पानी बिजली और स्वास्थ्य एवं जुड़िया बुनियादी सुविधा मुहैया करावण माथे खास ध्यान दे रही है। वे आज धौलपुर के न फूलपुर स्टेडियम माए राखी जी जनसभा माए बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि सरकार सबका साथ सबका विकास री सोच सागे हर तबका रा भला सारू काम कर रही है।
2: प्रदेश के किसान को समृद्ध और खुशहाली बनाने के लिए पिछले 2.5 साल में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इस दृष्टि से 13.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के राम सागर के मध्य सिंचाई परियोजना के पुनर्निर्माण का कार्य का लोकार्पण भी किया गया है। इसी तरह राजाखेड़ा से नागर मीठावाली में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट बनाकर आज क्षेत्रवासियों को समर्पित किया गया है। सोने का पुर्जा में पुलिस थाना और बिजौली सेवर एवं झिरी में पुलिस चौकी बनाकर उनका लोकार्पण भी किया गया है।
0: इन पाछे मुख्यमंत्री डीग जिला रा पुंछरी का लौठा माए राख्या जावन वाला कार्यक्रम माए शिरकत करण सारू रवाना भिया। श्री शर्मा रो भरतपुर जिला रा खेड़ली गुजर माए गुरु पूर्णिमा रे मौके राज्य स्तर रा कार्यक्रम माए शामिल फे वन रो ये कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री विद्यार्थियों रा खाता माए स्कूल ड्रेस सरू रकम ही भेजेला। मारो मिशन पढ़ो राजस्थान रा तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन री शुरुआत रो ये कार्यक्रम है। इनु पहले श्री शर्मा जयपुर माए आज मारा रहवास माथे नौजवानों सागे बातचीत कीनी। सपनों की उड़ान कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री शिक्षा खेल स्टार्टअप माई भारत वॉलेंटियर सर प्रतियोगी परीक्षा वाली तैयारी कर रहा नौजवानों बातचीत कीनी। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। स्वतंत्रता दिवस रे मौके 15 अगस्त में राज्य स्तर रो जलसो इन दफा बीकानेर माई राख्यो जावेला। इनु पहली री संजा बीकानेर माई सांस्कृतिक कार्यक्रम ये फैला। राजधानी जयपुर माए एट होम कार्यक्रम राख्यो जावेला। इनु जुड़ी तैयारियां और व्यवस्थाओं रो जायजो लेवन सारू मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए संबंधित महकमा रा अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। वे बीकानेर जिला प्रशासन सागे तालमेल राखर टेम सर तैयारियां पूरी करण बाबत कहो। राजस्थान पुलिस अकादमी RPA और UK री यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर बीचे अकादमिक सहयोग सारू करार करी चियो है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा री मौजूदगी माए आज जयपुर रा पुलिस मुख्यालय माए राखी चा जलसा माए ई करार माथे सही करी ची। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर री ओरु डॉक्टर विमल कुमार शर्मा री अगुवाई माए प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहो। ई मौके पुलिस महानिदेशक कहो क ई रजरिये पुलिसिंग पुलिस कल्याण मानसिक स्वास्थ्य और सिखावन रा हल्का माए नुआ काम करया जावेला। व कहो क ई करार रे मार्फत प्रदेश रा पुलिस कर्मचारियां ने दूरस्थ शिक्षा रे जरिए सर्टिफिकेट कोर्स रा मौका मिल सकेला। इस आगे PhD इंटर्नशिप और एक दूजारा अठे दौरा नहीं बधावो मिलेला। रब मौसम प्रदेश में 2 अगस्त तक चौमासारी चोखी बिरखा रा आसार है। मौसम विभाग काल 29 जिला माए बारिश रो येलो अलर्ट जारी कीनो है। इस दौरान कठे कठे जोरदार बायरो बाजन राई आसार है। जोधपुर संभाग रे अलावा दूजी सगली ठोणा मझलाऊं तेज दर्जारी बरसात री संभावना है। इन बीच आज राजधानी जयपुर रा न्यारा न्यारा हल्का माए दोपहर पाछे पानी बरसियो। सवाई माधोपुर जिला और आरासारा रा हल्का माए हल्की मझला दर्जारी बरसात हुई। तेज गर्मी और उमस पाछे आज चूरू माए चोखो में बरसियो। टोंक माए झमाझम में बरसियो। भरतपुर माए आखा दिन बिरखा फी। दूजी कानी सिरोही माए आखा दिन रिमझिम बारिश हुई। आबू

0: आकाशमा डुंगरिया माथे धुंध छाई रही और मौसम सुहावनो बनियो रहो। दूजी कानी हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा माए उमस और गर्मी लोग परेशान रहा। राज्य में चलाया जा रहा ग्रामीण और शहरी सेवा फॉलोअप शिविरा माए जनता की समस्या मौका ही दूर करी जा रही है। जालौर जिलारी सात ग्राम पंचायत माए लगाई जाए शिविरा माए एक ही छत हट राजस्व पंचायती राज सामाजिक न्याय अधिकारिता चिकित्सा और स्वास्थ्य समेत न्यारा न्यारा महकमों जुड़िया काम कराया जा रहा है। काल नून थावला रेवतड़ा सेरना वणधर आकोली और नाता ग्राम पंचायत माए ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर लगाया जावेला। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। वो दिन मनावन रो मकसद हेपेटाइटिस रे पिछाण इलाज और रोकथाम रा उपायों री जानकारी जनता ताई पुगावनो है। इन रो इन साल रो मुद्दो इसे खत्म करने के लिए बाधाएं मिटाएं रखी चियो है। पेट री बीमारियां रा जानकार डॉक्टर सुधीर महर्षि बतायो के हेपेटाइटिस री बीमारी रे कारण लीवर माए सूजन आ जावे है। डॉक्टर महर्षि बतायो के टेम सर इलाज नी भेवन री सूरत माए मरीज री हालत बिगड़ सके है।
1: बचाव के लिए अपने को घर का बना हुआ खाना खाएं, ताजा बना हुआ खाना खाएं, जब भी खाना खाएं तो हाथ धो के खाएं। हेपेटाइटिस बी सी और डी जो कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से या जो आईवी ड्रग एब्यूजर्स होते हैं उन लोगों में होता है, तो इस तरह के नशे और इस तरह की आदतों से बचें। और
0: विश्व हेपेटाइटिस दिवस के मौके प्रदेश में आई न्यारा न्यारा कार्यक्रम रखी चिया। बाड़मेर सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जनता और स्वास्थ्य कर्मचारियों में हेपेटाइटिस प्रति चार जगावन सारो खास कार्यक्रम फियो। जयपुर नगर निगम री ओर एक अनोखी पहल करी ची है। इन्हें तेज सावन माए मिंद्राओं बीन रा पत्ता और फूल भिड़ा कर और जैविक खाद बनाई चावेला। और ब्यूरो माला खबर नवीसू।
2: जेएमसी की ओर से सावन महीने के हर सोमवार को निगम के इलेक्ट्रिक हुपर मंदिरों से जैविक पूजन सामग्री एकत्र करेंगे। इनसे मशीन और कंपोस्ट किट के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जाएगी। शिवा अर्पणम नाम से तैयार इस खाद को विशेष पैकेट्स में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत शहर के तारकेश्वर महादेव, झारखंड महादेव, जंगलेश्वर महादेव सहित पांच प्रमुख शिवालयों से की जा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहा सुप्रीम कोर्ट 18 साल कम उम्र रा बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाला प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने तुरंत रिहा करण रा हुक्म दीना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राज्य सरकार रो जनता ने पानी बिजली और स्वास्थ्य जुड़िया बुनियादी सुविधा मुहैया करावण माथे खास ध्यान। स्वतंत्रता दिवस रे मौके राज्य स्तर रो जलसो बीकानेर माए राख्यो जावेला। मुख्य सचिव तैयारियां रो जायजो लीनो। और प्रदेश माए 2 अगस्त ताई चौमासारी चोखी बिरखारा आसार। काल 29 जिला सारू बारिश रो येलो अलर्ट। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
3: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से राजस्थानी प्रादेशिक समाचार FM बैंड 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है किसान वाणी कार्यक्रम।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसान वाणी कार्यक्रम हमारा सब भाई बहनों ने स्वागत के रीता नो राम राम राम राम। भाई बहनों आज आप आना कार्यक्रम में बात करूंगा हेपेटाइटिस ने बारे में, क्योंकि आज है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। बीजू बात करूंगा आप कि आप फसलों में जेवी खरपतवार नाशी छिड़काव करो तेवी आप।

0: सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका घर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आज हमारा हाथी है अंबापुरा थी मोहन भाई। मोहन भाई नो फलों नो बगीचो है ने मोहन भाई अपने नवा फलदार वृक्ष लगाड़वा तैयारी करी रहा थे कहीं। तो आज अपने एना थी जाना के नवा फलदार वृक्ष लगाड़ो तेनी हूँ तैयारी करी रखी पड़ी। नमस्कार मोहन भाई।
2: नमस्कार
1: मोहन भाई, आ तमारे आणो बगीचो है ने तमे आणा बल्ले घणी मेहनत थी की जे पहला नो बगीचो तैयार कर्यो है ने अवड़ी भी आप है नवो फलदार वृक्ष लगाड़वानी जे तैयारी करी रहा था कहो तो आज अमारा श्रोताओं ने भी जानकारी आलो कि आपे नवो फलदार वृक्ष लगाड़वो हो तो एने बल्ले आपणे हूँ तैयारी करी राखो। तो सबथी पहला मने ई बतावो कि नवो पौधो आपणे लगाड़वो हो तो एनो पौधनो चयन आपणे हाथे करवो रह्यो।
2: नवो पौधनो चयन तो आपणे नर्सरी थकी एकदम स्वास्थ्य पौधा लेने अब्बा जे रोग मुक्त रहे ने एकदम कल अच्छी अच्छी कलमे रहे एना नो चयन करवो।
1: तो मतलब अच्छा किस्म ना पौधा है जे लेने अब्बा आपने नर्सरी थी की ने पस लगाड़ा आपने तो जे जगह लगाड़ो ये जगह की भी जुए
2: जगह हर रोज ताप आवे 100 घंटे अच्छी कड़क ताप आवे एने ऊपर ने पानी नी निकासी अच्छी हो एवी जगह रहेवी जोईए जेमने मिट्टी भी अच्छी हो
1: अच्छा।
2: ताप बराबर आवे
1: मतलब पछी मन भाई आना जे गड्ढा आपणे तैयार करो ती आपणे पहेलथी के तैयार करी राखवा पड़ेगे।
2: हाँ आपणे जे भी रे पौधा रोपा एम थकी 25 થી 30 दाड़ा पहले 3-4 ફીટ लंबा ने 3-4 ફીટ चौड़ा गड्ढा आपणे पहेलथी के तैयार करवा पहेलथी खोदी मिलवा ने एम बाद 1-2 સપ્તાહ खुल्लू छोड़ देवू पछे धूप थकी हानिकारक जे कीड़ा रहे ने ए नष्ट थई जाय एम बाद आपणे रोपण करवो।
1: हाँ खरी बात है मन भाई कि ताप लागेगा तो जे कीड़ो ही या फिर दीमक नो घर हो नष्ट थई जाय तो आपणे पौधो ए स्वस्थ रूप थी आगळ बढ़े। मन भाई आने बदले आपणे जेम कई मिट्टी तैयार करी राखवी पड़े के तो ई हती करवी
2: मिट्टी तैयार करवा बदले सबथी की पहले 20-25 કિલો गोबर रे हड़ेलू गोबर कहे ने अपने सड़ीली खाद कहवा खाद तैयार कर ली हुई इनमें थोड़ो 50 ગ્રામ वर्मी कम्पोस्ट नाख लेव ने दीमक ने बचाव बल्ले जे दवाई रे मलाड़ देवी ने आना जो मिश्रण बनी जाए इन्हें अपने जो खाड़ा करेला है गड्ढा करेला है इनमें 2-3 ઇંચ ઉપર સુધી भर देवो ने पानी नाख देवो ने पानी थकी जे मिट्टी दबाड़ देवी आ सही तरीको रहे रोपण करवानो।
1: अच्छा तो तमार क्या मतलब क्या निकल थी कि आपने दीमक की दवाई भी मलाई रखनी पड़े।
2: हाँ दीमक की दवाई जरूरी है क्योंकि पौधे जो फलदार वृक्ष लगाड़ो बल्ले सब थी की वधार नुकसान करे दीमक अस करे।
1: अच्छा
2: तो दीमक थकी बचाव सब थी की जरूरी है।
1: तो हमारे भाई बहन ते घनी ताजी जानकारी ली गई अपने पहले से मिट्टी तैयारी करी राखो तो अपने एक तो गोबर की खाद मलाबा ने प्राप्त करी नहीं तो मलाबी खूब जरूरी है कि काफी अच्छी रहे बदो बल्ले एण में वर्मी कम्पोस्ट भी मलाबू ने हाथे हाथे आज दीमक की दवाई भी मलावी राखो तो पहले थी पौधा की सुरक्षा थी जाए कि एण में दीमक नहीं लगे ने ये काफी जरूरी भी है पैसे आई तरीके थी कि आप मिट्टी तैयार कर रखी
2: पौधो लगाड़ दीदो ने जेम अपने कलम लगाड़ दीदी पौधो ने एम वगत ग्राफ्टिंग नो जोड़ रहे जमीन नी सतह थी कम से कम 10-15 સેન્ટીમીટર ऊपर रहेवो जोईए ये अपने ध्यान रखू है पौधो नो सहारा बल्ले कई अपने पाइप थी गयो या लाकड़ी थी गई एम खूटी बांध दीवी ये हूँ शुरुआती दाड़ा में

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माँ ही चैनल है। शाम के 7:30 होने को है। आइए सुनते आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: खेती बाड़ी सुनवाड़ा सब काश्तकार भाई लोगों ने महेश भाई को राम राम, और विशाल भाई आपने भी राम राम।
3: राम राम महेश भाई और सगला किसान बयान घना घना राम राम सा।
2: विशाल भाई देखो बरसात का दिन ही बारिश को दौर शुरू हो चुके
3: जी सर,
2: और जगह अपना किसान भाई ही बहुत ही प्रसन्न है क्योंकि किसान भाई अपना जगह के खेती बाड़ी के काम में लाग रहे हैं। जगह फसल ही माँ की निराई गुड़ाई चल रही है और निराई गुड़ाई करते ही किसान भाई ये सोचा कि अब चुको

0: बरस जाए तो जो फसल ने पानी लाग जाए और चोखो जमानो हुए और के जहाँ पानी बरसे खेता का मैं तो एक हुआ कि जब जोर को पानी बरसा तो पानी अपने साथ में जो खेत की मिट्टी है बिने भी कई बार बहा के बारे ले जाए, क्योंकि खेत की जब आप मेड़बंदी पूरी पुख्ता न करा तो खेत को पानी भी बारे जाए और खेत की जो मिट्टी है वह भी कटाव होके बारे निकल जाए। तो किसान भाई ने तो हमेशा यही कह जाए कि खेत को पानी खेत में और खेत की मिट्टी भी खेत में रहनी चाहिए
1: जी।
0: तो आप कहीं पाए करा कि भी देखो खेत को पानी है भी जो बह के जा रहे है, तो विशाल भाई एक तो जगह तालाब हुए छोटो बड़ो जो को तालाब को आपा निर्माण कर ले जहाँ आजकल आपा फार्म पॉन्ड भी बनवा रहे हैं, तो वो इसलिए है कि जो को पानी जो को बरस रहे है जो को अपने खेत में है वो खेत के में जो वर्षा को जो जल संरक्षण आपा कहवा
1: जी
0: वो जल संरक्षण हो जाए।
1: हाँ वो एक जगह कहेंगे वो पानी एक जगह भेड़ो हो जाए और जिस आपने वो जल को संरक्षण भी हो गयो और जो मेको जो पानी इकट्ठो हुई वो एक जगह आपने भेड़ो हो गयो और आपने मिट्टी है भी बची
0: और देखो मिट्टी को कटाव हो है, तो भी मिट्टी को जो कटाव हो है बीच में क्या की जगह अपना किसान भी अपने जगह शस्य क्रिया कर रहे हैं बीजे निराई गुड़ाई कर रहे हैं या जुताई जद भी कर रहे हैं किसान भाई, तो भाई देखो खेत में कई बार क्या ढाल हुआ है कि जिसमें पानी बह के जा रहे हैं तो ढाल का विपरीत दिशा में ही अपनी क्रिया अपने करनी चाहिए ताकि जो पानी है वो डट जाए और मिट्टी बहा के निकल जाए। अब आप बात कर रहे हैं कि देखो जगह खेत की जो मेड़ है तो अबार क्योंकि बरसात को समय है और विशाल भाई बरसात का समय है तो कुछ आप बोझा जगह पेड़ पौधा ये प्रकार का मेड़ पर अपन लगा सका कौन सा लगा सका?
1: तो देखो अगर आप खेता की मेड़ बनने पर अगर आप लगावा अगर पेड़ तो जी हाँ मोटा पेड़ की बात करा नीम बांस करौंदा सहजन और मेहंदी का अगर आप लगावा तो इसमें आप मिट्टी को उठाव रोक सका।
0: बहुत बढ़िया बताया विशाल भाई, आप जी बताया कि नीम बांस करौंदा सहजन और मेहंदी, तो एक तो देखो मेहंदी जो की एक प्राकृतिक और मजबूत जो की वानस्पतिक बाड़ बना हुआ है, मेहंदी का जो पौधा है भी एक बाड़ के रूप में फैल जा रहा है और करौंदा है जो को भी कमाए देखो कांटा भी हुए और ये घनी झाड़ी के रूप में विकसित हुए, तो जका रात बिराज का जंगली पशु नील गाय इस प्रकार का पशु जब खेत में बढ़े तो बासू सुरक्षा भी मिले खेत ने।
1: नहीं बार कोई भी आवारा पशु अगर खेत में घुस जाए तो भी बहुत सुरक्षा देवे करण दो।
0: तो खेत की मेड़ पर ये प्रकार का जगह पौधा ही पेड़ ही वह आप लगा सका, क्योंकि पेड़ पौधा लगावा से एक तो देखो मेड़बंदी की सुरक्षा भी हुए खेत की और साथ में अपने कुछ अपने फूल भी मिल जाए ही कुछ फल भी मिल जाए ही पेड़ पौधा से, तो ये भी एक फायदा है।
1: आजकल अगर आप चाहो नींबू भी लगा सका।
0: हाँ
1: नींबू से भी वो फायदा है कि नींबू भी लागता रही और आपने
0: बिल्कुल छोट क्या नींबू पहाड़ी नींबू जका पौधा हुए हैं भाई भी काफी फैले हैं, तो आपने आई तो बात है ना कि भी देखो फल फूल भी मिल जाए और देखो खेत है वो भी हरे भरे दिखे और जका पशु पक्षी माने बैठवा के लिए चौकी एक जगह मिल जाए जगह अपना किसान भाई के जगह बहुत सा मित्र कीट हुए वह भी जगह फसल ने बहुत ही फायदा पहुंचा हुए जगह मित्र कीट होने, तो इस प्रकार की जो थोड़ी वनस्पति व खेत में रहे तो यदि बने थोड़ा आश्रय मिले।
1: तो आप देखो सा घड़ी की सुया कर रही है थोड़े सर अब आपका कार्यक्रम में थोड़ा बढ़ाओ आगे तो आप कहीं जानकारी गिरा रहे हो
0: भाई। अब आप देखो अपना जगह भाई लोग नया बगीचा लगाना चाहे तो नए बगीचा की स्थापना और बाकी देखभाल इस विषय पर जानकारी देसी नवल किशोर गुप्ता, तो दिरावा जानकारी।
2: श्रोतावा आज आपने साथ स्टूडियो में छह नवल किशोर गुप्ता आप विषय विशेषज्ञ उद्यान कृषि विज्ञान केंद्र चोंग और यासु आज आप बात करेला फलदार बगीचा किन तरीका से लगानी चाहिए और कई कई खास बातों को ध्यान रखनी चाहिए जब आप बगीचा की देखभाल करा ताकि वासु चोखो उत्पादन न का जी का काश्तकार भैया से वे ले सके। सबसे पहले तो नवल किशोर गुप्ता जी कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत है। राम राम सा।
3: राम राम सा
2: जी। हाँ की आज आप बगीचा की बात करेला और बहुत ही बढ़िया विषय हो क्योंकि बगीचा में अपना जो काश्तकार भैया है वे कम मेहनत में बत्तो फायदो ले सके छे और आज को जो युग है उनमें देखा तो हर जगह आपने आपने फला की जरूरत महसूस हो गई है। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानबो चाहू ना कि बगीचा लगाबा का मोटा मोटा फायदा कहीं है जिसमु की काश्तकार भाई ने खेती बाड़ी की साथ साथ बगीचा भी लगाना चाहिए क्योंकि कम जगह में कम मेहनत में बत्तो फायदो आप यहाँ के द्वारा ले सका।

0: किसान भाइयों, हम लोगों को जो बगीचा लगाने की जो अपन अगर गणोई फायदा की बात करा तो सबसे मोटो फायदो तो आपने याद है कि इस टाइम पर अपना धरती पे अपने जमीन में अपना क्षेत्र में पानी गणोई कम होते जा रहे छे। तो पानी कम होते जाए छे, फसला ने पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़े छे। तो उनके हिसाब से यहाँ तो अपनी खेती बंद हो जाओ तो आपकी खेती और अपनी आमदनी लगातार आपने मिलती रहे है। इस वास्ते कम पानी में आपने पैदा देवे और आपनों काम हो जावे तो उनके लिए सबसे बढ़िया है कि आप अगर अपना जो भी आप बोआ चा उन अगर आप फला का अपना जो क्षेत्र में उगवाड़ा फला को बगीचो लगावा तो उन आपने लगातार आमदनी प्राप्त हो सके। दूसरी बात किसान भाइयों ते जानो छो आपने जे आप फला सब्जी करा अनाज करा तो आपने या मंडी ले जानो पड़े तो मंडी में पाई से भाव कौन को वहां जो व्यापारी को भाव है आपनो भाई को अगर मान लो टमाटर 2 रुपए किलो ही बिकनो से तो 2 रुपए किलो ही बिकोगो। पर बगीचा में दूसरो हिसाब किताब से बगीचा में थाने फल आवास पहले उन्दे ठेकेदार आ जाओ छे और भाव था को होगो कि थे बोलेगा मां बगीचो 1 लाख रुपया को बिकनो छे तो 1 लाख को ही बिकोगो। जो भाव थे मांगेगा उन हिसाब से वह भाव जाओ छे तो आपने आमदनी भी बढ़िया मिले। और तीसरी बात आई थी कि आप घना कम आपने किसान भाई बगीचा लगा रखा छे तो अब इनमें प्रवेश करेगा तो आपकी डिमांड भी खूब छे। आपको ना कि हर जगह खूब एक डिमांड छे, सब लोग जाने छे, सब लोग आजकल आपने जब नरा बीमार होता है जैसे जाना फल फूला की बहुत जरूरत हो छे। आपने मेडिकल साइंस भी खेल छे कि 100 ग्राम रोजिना को फल खाना चाहिए तो फल उपजा होगा यदि तो खाऊंगा। अब आपने कोरोना आया तो कोरोना में डॉक्टर के विटामिन सी खाओ विटामिन सी खाओ तो कोरो आंवला खा बस विटामिन सी की पूर्ति हो जाओ छे। आपने फला में स्वास्थ्य में भी देखा आमदनी में भी देखा और अपनी परिस्थिति में भी देखा तो ये तीनों चीजें हमें बगीचा से सही सेट बैठे से कि आपने आराम से एक बार लगाओ और 20-25 साल तक बनिया का इंक्रिया बस थोड़ा बहुत आपने देखभाल करे 20-25 साल तक आपने बढ़िया पैदावार दे दे इस आपने अत्रो फायदो हुआ।
1: गुप्ता साहब बहुत ही बढ़िया तरीका से आप मां का काश्तकार मैंने बता रहे छो भाई बगीचा क्यों लगाना चाहिए और कई मोटा मोटा फायदा छे जो कि कम मेहनत में कम लागत में काश्तकार भाया ले सके छे। अब जब बगीचा लगानी छे शुरुआत करनी छे तो आपसे यह भी जानबो चाहे ना भाई बगीचा लगाबा के लिए कई कई काम कई कई तैयारी शुरुआत में कई रूपरेखा या जिन्हें आप कह भाई कई ब्लूप्रिंट तैयार करनी चाहिए कितो कई खर्चो आ जाओ छे कितनी जमीन में लगा सके छे यह सब जानकारी विस्तार से बताओ सर।
0: घनी चुकी बात छे क्योंकि किसान भाइयों अपन जानते हैं कि ये कोई 6 महीने की 3 महीने की 2 महीने की फसल नहीं है यह था को पूरा 25 साल को उपक्रम छे। के बाद जब आपने कोई भी भाई हो जो 11वीं में पढ़ रहे हो तो उन्हें कहो कि तेना में नौकरी देना चाहिए तो उन्हें आप अपार सू अगर बगीचा भी लगावा में घंटा घंटा भर दे दिया तो उनकी जय ही डिग्री पूरी हो जाए तो थे उन्हें बढ़िया नौकरी दे सको कि अगर आपने 200-250 पेड़ आप लगा लिया एक बार तो थे उन्हें कहते हैं तेना को भी हाथ फैलावे की जरूरत को ना अपने घर ही बढ़िया कमा बगीचा देखभाल कर तेना आराम से 3-4 लाख रुपया बगीचा सू मिल जाओ। अब ये बात ने ध्यान रखवा सू पहली आपने यहाँ तो छही कौन है कि आज लगा दिया इन आपने पूरी आपने पूरी दिमाग में ध्यान प्लानिंग करनी पड़े कहीं सबसे पहली तो आप अपना खेत की माटी और पानी की जांच करा लिया तो ये में कहीं गड़बड़ तो नहीं तो उन हिसाब से आप जिस फलदार पेड़ लाग सके वही लगा सका या फिर खड्डा में आपने पानी माटी कर थोड़ी गड़बड़ हुआ है वहां को ECPH ज्यादा हो तो उन हिसाब से आप प्रबंधन पहली कर लिया। दूसरी बात आप जाना चाहे कि सर्दी में पालो पड़े छे ठंडी हवा हो चे गर्मी में आपने लू चाले छे तो दोनों साइड में यानी उत्तर और पश्चिम की दिशा में पहली आप चौकसी कर रखा कि आप हवा ने रोका तो उन्होंने बोला था कि जहाँ कि विंड ब्रेक कि अपन वैसे विंड ब्रेक को आप लगा लिया तो आप बार वहां छोटा छोटा पौधा ने देखभाल कर सका था तो पहलो काम आप माटी पानी की जांच कराबो फिर उनके बाद में आप विंड ब्रेक लगाबो फिर उनके बाद में आप तैयारी करा था कि जहां बार इस टाइम पर जहां बार बारिश शुरू हो बड़ी छे सावन को महीनों भाई 1 महीने से 60 शुरू हो गो तो इस टाइम पर आप जो भी आप जयपुर जिला में आप जो भी फलदार पौधा आंवला छे बेर छे बील छे लेसवा नींबू करूंदा जो भी लगावा आके हिसाब से आपने पहले कहीं निशान लगाना पड़े और निशान लगा फिर खाडा खोदना पड़े तो आप पौध अपने बगीचा में पेड़ खाडा में लगा बासू 1 महीना पहले 20-25 दिन पहले आप खाडा खोद लिया कोई 2.5-3 फीट को खाडो खोद और माटी में अच्छी तरह से आप सूरज का ताप से तपाऊंगा तो खाडा में जितना भी आपने जीवाणु कीटाणु जो भी होगा ना वो भी मर जाओगा माटी भी थोड़ी सोड़ी हो जाओगी और फिर उनके बाद में सावन शुरू है

0: उस पहले आपा काय करा वो माटी में 20-25 किलो गोबर को खाद, 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो आपने जो नीम की निंबोलिया बने थे उनको खड़ उन्हें कूट और आने माटी मिला रू आपा खड्डा ने पाट देवा। अब जब पाट दिया तो सावण के बाद ना सावण की जिमजिम रिमजिम चाल पे लग जाओ तो 3-4 बारिश हो जाओ तो आपने खड्डा की माटी बैठ जाओ। अब बात आ गई कि कहीं कि अब कसा पेड़ लगावा तो आप मतलब नहीं पेड़ बताया जाए आंवला छे कसी किस्म को लेवा तो आंवला में आपने जयपुर जिला में चकैया छे है, बेर में गोला है, सेव है, आपके बील में है आपके नरेंद्र बील 4 नंबर, नरेंद्र बील 5 नंबर, पंत सुजाता। और आप अगर मान लो बात करा आपने नींबू की तो कागजी छे, बारामासी छे, बालाजी छे, करौंदा में भी आजकल तो गुलाबी गुलाबी करौंदा जिन अमेरिकन पिंक बोला वाह है हरे करौंदो है। अहिया आपा अलग अलग बढ़िया किस्म की आप अपना सरकारी नर्सरी छू या आपने जो सरकार जी जी नर्सरी में रजिस्टर्ड कर रखे हो मुंडा शू आप पेड़ ले आओ घना आप नहीं कई बार किसान भाई आप बड़ो धोखो खा जाओ कहीं कि आपने जो रस्ता में चाल बाड़ा प्राइवेट नर्सरी ये 12 सुपर ट्रक में भर लिया बड़ा ऐसा पेड़ दे जाओ फिर थे बाद में वो कहें कि उन टाइम पर तो था फल दिखा कौन है 3-4 साल बाद में आओ और इमें तो फली कौन आ रहा कहीं से तो आप पहली बढ़िया वेराइटी को पौधे ले यार बड़ी जगह से बढ़िया रजिस्टर्ड जो गवर्नमेंट जी ने अप्रूव कर रखी है उन सुनते उन जगह से आप लिया तो आपने झोंको कौन में आप बढ़िया किस्म का पौधा लगाओ। पौधा लगाने के बाद में उन आप अच्छी तरह बड़ो पौधो है तो आपने कोई भी नीम को डंडो लगा उनके थोड़ी सपोर्ट कर दिया और फिर उन्हें रोजीना पानी देवा रोजीना पानी करते जितना उन्हें जड़े में चाले ना अतरा पर पानी देता रहेगा। तो अहिया आपने देखेगा मां किसान भाई ते अगर ये पूरी बात ने ध्यान रखेगा और सही ढंग से करेगा तो आप 2-3 साल तक जो आप अपना बच्चा ने केयर करा अहिया आप पेड़ पौधा की अगर संभाल करा तो बढ़िया ढंग से आप बगीचो लगा सकता।
1: श्रोतावान नवल किशोर गुप्ता विश्व विशेषज्ञ उद्यान कृषि विज्ञान केंद्र चोमू अपने साथ से बहुत ही बेहतर तरीका से बता रहे थे भाई फलदार पौधा का जो बगीचा है वे की तरीका से लगानी चाहिए काई काई फायदा है और की तरीका से लगा रहा पाऊं मैं बत्तो फायदो ले सका चा। अब बात गुप्ता साहब जब फायदा की हो रही है तो आपसे यह भी जानना चाहो ना कि बगीचा से वर्ष भर आमदनी लेबा के लिए मां का जो भाई लोग हैं जो कि बगीचो लगा रखा है या लगाबा की सोच रहे थे वे काई सा तरीका अपनावे कि वाना आमदनी का तौर पर भी कुछ न कुछ मिलते रहे ताकि आर्थिक स्थिति मजबूत रहे और बत्तो और भी काम करवा में उनको जी लगे।
0: अब बात आप किसान भाई जब भी कोई भी काम करे जितने में पैसा पैदा ना हो तो क्यों करो को
1: सही
0: तो अब ये बात सही है। फिर या भी कौन है कि एक सीजन में पेड़ आपने मिल गया दूसरा में नहीं मिले तो मां के कृषि विज्ञान केंद्र चौमू टाकरडासो में एक ऐसे प्लान बनाए थे मां के जयपुर जिला का मां के काश्तकार भाई के लिए कि अगर काश्तकार भाई आपने पास मगर मैं बताऊं जो तरीका सु 50-50 पेड़ ये 5-6 तरह के पेड़ लगा ले जैसे मैं पहला आंवला फिर बेर फिर बील लेसवा नींबू करौंदा ये 6 पेड़ है अगर आपने 50-50 पेड़ लगा दिए करौंदा तो आपने बाढ़ पर लाग बकरे छे तो ते देखो अब इस ते पूछेगा कि कहीं आने लगा लिया ते जानो तो आपने दिवाली बाद में आंवलो शुरू हो जाओ जे दिवाली बाद में आंवलो शुरू हो जाओ तो ये आपने मां शिवरात्रि तक चाले और मां शिवरात्रि पर फिर आपने बोर शुरू हो जाओ बेर शुरू हो जाओ जो होली तक चाले फिर होली के बाद में आपने बील शुरू हो जाओ जो आराम से बील था के 60 तक चाले और जेठ 60 में था के लेसो भी आ जाओ और फिर जो ये बारी खत्म होते ही था नींबू शुरू होगा जो आराम से बादवा तक चाले बादवा में फिर करौंदा आगा तो बादवा कार्तिक में करौंदा फिर वापिस आवड़ो शुरू होगो तो इस हिसाब से आपने जो आप दूध में रोजीना इनकम मिले इस आपने लगातार छठ बारू महीना काइन काइन काइन काइन थोड़ो थोड़ो थोड़ो थोड़ो मिलते रहो एक तरह से आपने एक तरह सैलरी की तरह बस अगर आप एक सही हिसाब से गए पेड़ा के आपने गणित लगा अपना खेत में लगाओ बढ़िया किस्म का लगावा बढ़िया देखभाल करा रोजीना उन्हें 2-4 घंटा देवा आपा उन्हें मेहनत करा तो ताने ये पूरा साल भर तक 20-25 साल तक बढ़िया ताने पैदावार ई तरीका से थे पा सको।
1: अब यह भी जान बचाऊंगा ना आपसे भाई पौधा तो लगा लिया किस्म भी बढ़िया लिया है अब इच्छा तो यही है भाई उत्पाद बढ़िया चोखो रहे बड़े बगीचो रहे भाई खूब चोखो उत्पादन हुआ तो वाना रुपाई करवा के बाद जो नया नया बगीचा लगा वाला काश्तकार भाया भाई जो लगा रखे थे वाना तो थोड़ा अनुभव है पर जो नया नया लगावा की सोच रहे थे वे फिर उनके बाद में काई काई काम करे जी हमारा आप बताई रहे भाई 3-4 घंटा रोजीना का उन्हें देवे तो करवा का काम काई है जिसों की बढ़िया पैदावार हो बताओ सा।
0: यह बहुत बढ़िया बात है क्योंकि बगीचो लगाया बाद में या तो छह गोने की काम होगा अब उन दसों आपनों काम शुरू ही हो चे।

0: बिल्कुल
1: यो को ना अब आप शुरू पहली काम तो सबसे ज्यादा पेड़ आपन लगा दिया पेड़ आपन मैं पहली थाने बताया चो कि जी दिन आपने जिम जिम बुहार फुहार चार दियो शाम ने चार बजे बढ़िया जड़ा होना डिस्टर्ब न हुआ तो आप खाड़ा के बीच में लगाओ दूसरे पेड़ बड़ा बड़ा हो से तो उनका आप पहली सपोर्ट लगाओ ताकि वो हाला डूले न अब फिर उमा पे रोजिना हुआ जत्र उमा पानी देता रहो सबसे पहली कामों में पानी दे पाको क्योंकि जड़ा आपने मुलायम में माटी में चाल बक रहे थे सूखी माटी होगी तो जड़ा चाली को ना उससे पहले माटी सूखी रही जड़ा सूख जाओगे आपने पेड़ मर जाओगे तो एक तो पानी को देख पा फिर जहां जहां पानी देोगे तो बरसात में जाओ तो घनी गोदेड़ हो जाओ आपने तो थावड़ा में तो गोदेड़ हो जाओ जिन आप खरपतवार भी बोला उन्हें टाइम टू टाइम साफ करता रहो अब फिर मैं ना एक बार जाना चो कदे कोई दिमाग आ जाओ कदे कोई लट आ जाओ तो आप वो की भी दवाई मैं ना एक बार चला दिया तो ऊपर जो नया नया पेड़ नया खा कौन सके तो यह तो बात होगी और एक और बात है कि आप जो ग्राफ्ट ये जो पौधा ले रहा हो चा कई बार आप देखा था कि जिनमें कलम लाग रही थी उनका नीचे से उनकी फुटान आप शुरू हो जाओ चे तो फुटान ने पहले हटाता रहा नहीं तो कई बार गए थे वह बड़ी हो जाओ थे ग्राफ्ट वाली कलम वाली फुटान दिख ही कौन है तो अर्जी ने तो लगाया तो बढ़िया पेड़ छा फिर बाद में फल कसवारी से तुम बहुत ध्यान नहीं दे बाप आप लोग झाड़ बढ़ जाओ से अब एक बाद में दो तीन महीना तक तो यहाँ करते रहो सफाई सफुई ये सब करते रहो फिर तो जानो चो कि फिर जाए आप बगीचा बार आप सावन बाद हुआ में लगाया और फिर बाद में आपने तीन चार महीना बाद में पाड़ पाड़ लग जाओ ठंड आ जाओ अब ठंड बताने तो आप जब आप खुद ही रजाई उठा चाहे तो बगीचा में भी तो उठानो पड़ेगा ना नहीं तो मर जाओगा तो आपने फिर गाई से उन्हें कूचा सू या कोई भी पानी से उन्हें ढककर वहां की सुरक्षा रखो दो तीन महीना क्योंकि नया नया पौधा था ना बड़ो पेड़ तो चौको ने तो आप उन्हें ठंड सू देखभाल करा और फिर जय वो ठंड सू ठंड निकल जाओ उन्हें उठाओ और फिर बढ़िया गोबर को खाद दे वापिस उन्हें बढ़िया उन्हें खुराक दो खुराक दे और पौध की कटाई छटाई भी करो क्योंकि उन्हें आप सेब देंगे बढ़िया सेब देगा तो आपने बढ़िया घेर घुमेर धार आओ पेड़ होगो तो अहिया आप थोड़ो थोड़ो ध्यान रखा रोजिना हर पेड़ में और दूसरे एक सबसे मोटो बात कि आप जिन्हें बगीचा लगा रहे थे किसान भाइयों इनमें सबसे बढ़िया अच्छा कि आप तार बंदी कर उन्हें पूरी सुरक्षित करा बकरी घुसगी एक बार बकरी खागी तो पेड़ खत्म हो गो कोई भी तो जानवर सुबह की सुरक्षा करते रहना चाहिए तो है दो चार बात अच्छी जिन्हें ध्यान रखेगा तो थे बगीचा ने बढ़िया सुपनपा सको
0: वासा बहुत ही बातें तो आप बता दिया अब कोई ऐसी बात जो कि मोटा रूप से विशेष ध्यान रखकर काश्तकार भाई करेला तो और भी बत्तो फायदो ले सकेला और भी जहाँ को जो श्रम छे मेहनत छे उन्हें बचत कर सकेला वहां भी बताओ
1: हमारा सारा किसान सगड़ा किसान भाई तो यही अनुरोध छे कि ते एक बार बगीचो लगाबासू पहली ताकि नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र छे या मान लो जो भी ताकि सुपरवाइजर जो छे एक बार थे ऊंडसू ढंगसू पूरी राय लो और दूसरी बात छे कि पौधा जो सबसे बड़ी मोटी बात है वह थे एक सरकारी नर्सरी सू या पंजीकृत नर्सरी सू लेगा उनके अलावा कोई दूसरी जगह सू न लेगा क्योंकि उम्र थाने गड़ो गड़बड़ हो सकते है क्योंकि बगीचा आज की आप लोगों ने आप लोग 25-30 साल को क्रम छे तो दो बातें थी ध्यान रखे लगा बासू पहली उम्र आपा ने काई काई देखना चाहिए उन्हें अच्छी तरह समझ लियो जी के बगीचे लाग रहे थे उन्हें देख लो और एक पौधा सही ढंग से लेना चाहिए ऐ दो बातों को थे बढ़िया ध्यान रखेगा तो थे बहुत आपका क्षेत्र में बहुत बढ़िया ढंग से बगीचो लगा बढ़िया आमदनी प्राप्त कर सको
0: वासा बहुत ही बढ़िया विस्तार से बताया आप कि फलदार बगीचा क्या लगानी चाहिए जो और वहां की देखभाल करती समय भी कुंकुन सी मोटी बात है जाको ध्यान रखनी चाहिए श्रोतावा नवल किशोर गुप्ता विषय विशेषज्ञ उद्यान कृषि विज्ञान केंद्र चोमू सू आज आपने कार्यक्रम में पधारे और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दिया ईताई आपको घना मानसू धन्यवाद सा
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें
4: तो विशाल भाई नए बगीचा की स्थापना और वहां की देखभाल ये विषय पर जानकारी नवल किशोर गुप्ता और आपसे बातचीत करी चौकी सी जानकारी दे रही आशा धवाई तो भाई चौकी सी जानकारी के बाद यो वक्त हो चाले है कि भी कार्यक्रम का माए एक चौकोसो लोकगीत भी आपा सुना दें सर

बाजार में कोई मगने हाथी जाए, अरे जीपे बैठी गोरड़ी जी को चुड़ो चिलक तो जाए, अरे जीपे बैठी गोरड़ी जी को चुड़ो चिलक तो जाए, बिच्छू मंडल को ओ बिच्छू मंडल को डरला।

बाड़ बाड़ में फिरूज कोई बाड़ में छे कांटो, अरे बाड़ बाड़ में फिरूज कोई बाड़ में छे कांटो, अरे थारे मारे हित घणो छे भोली को छे आटो, अरे थारे मारे हित घणो छे भोली को छे आटो, रे बिच्छू मांडल को ओ बिच्छू मांडल।

0: तो विशाल भाई, ओ बिच्छू मांडल को जो को लोकगीत है सुरभि कुमावत की आवाज में अपा लोकगीत सुना। और लोकगीता की देखो बात इसी है कि लोकगीत जका हुए आपने जी की लोक संस्कृति है भी की पहचान हुए
1: जी।
0: तो लोकगीता कमाए बहुत सी इसी जकी बाता हुए कि भी आपनो जो खान पान, आपनो रहन सहन, अपना जका तीज त्योहार और अपनी जकी मान्यता हुए माने रला मिला के और एक चुकी सी लोक रचना बनाई जावे
1: जी।
0: तो पहले तो देखो बारगांव में जका लोकगीत बहुत प्रकार का होता, हर जका शादी ब्याह जका समारोह बटाऊ आता जाता। पर अब देखो थोड़ो समय धीरे धीरे बदल चले तो जका अपना थोड़ी सी अपनी जकी लोक संस्कृति भी ने थोड़ा थोड़ा भूलता भी जा रहे हैं। तो लोक संस्कृति ने देखो आपा जका कहे कि संभाल के रखा अपने जटेतान और आपने जो को लोक साहित्य बिना आपा पढ़ा तो ही आपा ने बेरो पड़ा। और समय के साथ में बात यह है कि देखो अब आज को शाम को वक्त है ठीक है और मौसम बदल तो जा रहे है जी, बरसात का मौसम है तो मौसम के अनुसार ही आपा ने अपना जो खान पान है अपना जो को रहन सहन है वो थोड़ा सा बदल लेना चाहिए
1: जी।
0: तो अब आ रही इससे ना कि देखो अब देखो थोड़े थोड़े मौसम ठंडो होने लगे तो अब आप फ्रिज की चीजों का सेवन बिल्कुल कम करा।
1: हाँ
0: क्योंकि ठंडी ठेरी चीज है देखो देखो गलो पकड़ ले गए और अब आर ये मौसम में आप बदलते मौसम में बीमार हो जावा।
1: और देखो विशेष रूप रात के समय तो बिल्कुल ही अपन ठंडी चीज को सेवन नहीं करनी चाहिए।
0: हाँ
1: क्योंकि अपने बीमारी को ज्यादा रहे।
0: अब घड़ी की सुइया इशारा कर रही है कि भी खेती बाड़ी को टीम पूरा उचाले।
1: हाँ
0: तो अब देव महेश भाई ने और
1: विशाल गोड़ ने आज्ञा और चाला और करा
0: राम राम।

अभी खेती बाड़ी कार्यक्रम प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल ये विधेयक सदन में पेश किया था। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्नपत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। श्री सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली की प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सूची लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि देश में

उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की गई थी, लेकिन पता नहीं इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का गठन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही किया था। श्री सिंह ने कांग्रेस सदस्यों की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपका अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 24 में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 5 महीने के भीतर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सदस्य सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ ही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही गठित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी इनकी स्थापना होगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में परीक्षा प्रश्नपत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। श्री गोगोई ने दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था, तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था, तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे इंकार किया था और इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहा। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा श्री प्रधान का स्वागत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि संसद में पूर्व मंत्री का ऐसा स्वागत किया गया मानो वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। श्री गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 लोगों को हटाए जाने की बात कही गई, जबकि संस्था में स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया तो चेयरमैन को क्यों बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। श्री गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वे सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृहमंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। सुश्री स्वराज ने प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित होकर अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गया है, ऐसे में ये विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ही और विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्षी दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं

रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। श्री यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी, एक प्रधान जी को हटाकर अपने भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। श्री यादव ने कहा कि ये ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़ गए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे न पढ़ पाएं। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए और यदि सरकार जेन जेड पर भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। श्री बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं। मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है, मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोपकर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी।
विपक्षी सांसदों खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह

0: सदन में बयान दें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि अमित शाह गृहमंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, लेकिन शोर शराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के लिए कहा। हंगामे के बीच ही श्री मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक एमएसएमई क्षेत्र के विकास की गति को देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। श्री मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग जगत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार इस क्षेत्र की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। श्री मांझी द्वारा विधेयक पेश करने के बाद उपसभापति हरिवंश ने एक और विधेयक सदन में पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक अब कल सुबह 11 बजे होगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर।

0: शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की वाइफ एंड डॉन के इस नगमे से।
1: जय हो सियाराम की और जय हो बंबई धाम की।
2: ई है

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

संगीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:30 में होने वाले हैं थोड़ी देर में दिल्ली से हमारा प्रसारण होगा।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, शर्मिला ने जीता देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता, प्रतियोगिता में भारत तीसरे स्थान पर। गुजरात की देविया नीवा झाला ने इतिहास रचते हुए एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। एमीरा खोसला ने किया ऐतिहासिक प्रदर्शन, वर्ल्ड यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में बनाया नेशनल रिकॉर्ड। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा, अनुभवी रविंद्र जडेजा की वापसी। और हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप में राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी ने किया ऐतिहासिक प्रदर्शन, दागे 41 गोल।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों से, जहां खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में आज जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। दो बार के ओलंपियन और इस इवेंट में भारत के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर नटराज हीट में सबसे तेज 16 तैराकों में शामिल होकर आसानी से आगे बढ़े। बेंगलुरु के इस तैराक ने अपनी हीट में 5वां और कुल मिलाकर 13वां स्थान हासिल करने के लिए 55.58 सेकेंड का समय लिया। 25 वर्षीय तैराक ने शुरुआती 50 मीटर की दूरी 26.26 सेकेंड में तय की और फिर 55.58 सेकेंड में रेस पूरी कर ली। वहीं अनुभवी साजन प्रकाश की चुनौती पुरुषों के 50 मीटर बटरफ्लाई में क्वालिफाई न कर पाने के बाद खत्म हो गई। वहीं इस

0: महिला वेट लिफ्टिंग की 63 किलोग्राम भार वर्ग में निरुपमा देवी प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और लगातार भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। कल भी कई पदक भारत ने अपने नाम किए। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। वुमेन्स शॉटपुट F57 वर्ग की फाइनल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने 6 प्रयासों में 9.48, 9.58, 9.81, 9.17, 9.37 और 9.60 मीटर का प्रदर्शन किया। तीसरे प्रयास में हासिल 9.81 मीटर उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इस उपलब्धि के साथ शर्मिला ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ये पदक अपने नाम किया और ये पदक उन्होंने अपनी मां को समर्पित किया।
1: बहुत खुश हो रहे हैं सर, मेडल लाके हमारे देश के लिए प्राउड फील हो रहा है और ऐसे हमारे देश का नाम होता है। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा सपना था, मेरी माँ का सपना था और ये गोल्ड मेहनत से गोल्ड लेके आए हैं। मेरी माँ बहुत खुश है, मेरी माँ के लिए ये मेडल है। मेरा एशियन गेम की तैयारी में और आगे ओलंपिक, ये मेरा फर्स्ट मेडल है और आने वाले टाइम में और अच्छे अच्छे मेडल लाते हैं।
0: दूसरी ओर भारतीय हाई जंप खिलाड़ी सर्वेश अनिल कुशारे ने फाइनल मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2.25 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक अपने नाम किया।
2: भारत के सर्वेश अनिल कुशारे, उनका पहला अटेम्प्ट 2.05 मीटर की हाइट पर सफाई से पार किया। सर्वेश अनिल कुशारे का ये अटेम्प्ट कामयाब होगा, बिल्कुल कामयाब होगा। सर्वेश के नाम और दावेदारी पेश करेंगे सर्वेश कुशारे ने, 2.25 मीटर की ऊंचाई क्लियर कर ली है।
0: उधर वेट लिफ्टर वल्लूरी अजय बाबू ने पुरुषों की 79 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 330 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। उन्होंने स्नैच में कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड भी बनाया। वहीं महिला वेट लिफ्टर बिंदिया रानी देवी सोरा खाइबम ने भारत के लिए 58 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बिंदिया रानी देवी ने कुल 199 किलोग्राम के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जिन्होंने स्नैच में 87 और क्लीन एंड जर्क में 112 किलोग्राम उठाया। नाइजीरिया की रफियातु फोलाशादे लावाल ने कुल 229 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं महिलाओं की 53 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीता। ज्ञानेश्वरी ने कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
3: 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा खिलाड़ी सुश्री शर्मिला धनकर ने स्वर्ण पदक व सुश्री शिल्पा के शैल ने कांस्य पदक जीता है। श्री सर्वेश कुमार सारे, श्री वलूरी अजय बाबू, सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक एवं सुश्री बिंदिया रानी देवी ने कांस्य पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत का गौरव बढ़ाया है। भारत की 18 वर्षीय क्रिश खिलाड़ी सुश्री अनाथ सिंह ने कनाडा में वर्ल्ड जूनियर स्पेस चैंपियन 2026 खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से देश की मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके योगदान के लिए एवं टीम इंडिया कोच सबको परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
0: श्रोताओं, में अभी अभी खबर मिली है, विशाल टीके ने 400 मीटर दौड़ स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। एक अन्य भारतीय राजेश रमेश बेहद मामूली अंतर से अगले दौर में जगह बनाने से चूक गए। इसके अलावा एथलेटिक्स, तैराकी, पैरा तैराकी और लॉन बॉल्स में आज भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। वेट लिफ्टिंग में आज रात 11 बजे महिलाओं के 69 किलोग्राम फाइनल में हरजिंदर कौर पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। लॉन बॉल्स में भी नवनीत सिंह और दिनेश कुमार प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। महिलाओं के सिंगल सेक्शनल प्ले में नयन मोनी सैकियर आज रात मुकाबला करेंगे। वहीं बॉक्सिंग में महिला वर्ग के 54 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में प्रीति आज रात 10:30 बजे मुकाबला करेंगी और 11 बजे प्रिया का मुकाबला 60 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में होगा और परवीन जो है वो 65 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में प्रतिस्पर्धा करेंगी। वहीं एथलेटिक्स में हाई जंप फाइनल में

0: पूजा आज मुकाबला करती नजर आएंगी और तैराकी में भी कई मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल S13 हीट्स में RVV BK बुदिग्ना और इमाम अली ने भी अगले दौर में जगह बना ली है और भारत की पदकों की संख्या और प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं। उधर राजकोट की देविया निभा झाला ने एशियन गेम्स के 400 मीटर रेस के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वो इस इवेंट में हिस्सा लेने वाली गुजरात की अकेली महिला एथलीट हैं। एशियन गेम्स का आयोजन जापान के आईजी नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेला जाएगा। और अब बात निशानेबाजी पर। चीन के हंगझोउ में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। सुनते हैं वैष्णवी की एक रिपोर्ट।
1: फाइनल में सोनम और हिमांशु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 441.2 पॉइंट के साथ कांस्य पदक जीता। एलावेनिल और पार्थ 378.8 के फाइनल स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले दोनों भारतीयों ने क्वालिफिकेशन राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। सोनम ने 317.2 और हिमांशु ने 317.4 पॉइंट के साथ कुल 634.6 अंक के साथ क्वालिफाई किया था। एलावेनिल वालरेविन और पार्थ राकेश माने की जोड़ी ने 634.2 के अंक के साथ अगले दौर में जगह बनाई थी। सोनम ने इससे पहले 2024 में काहिरा में ISSF वर्ल्ड कप और नई दिल्ली में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में रजत पदक जीता था। ISSF वर्ल्ड कप ग्रेनेडा में उन्होंने 5वां स्थान हासिल किया था। 20 साल के हिमांशु के लिए कांस्य पदक उनका पहला सीनियर ISSF वर्ल्ड कप पोडियम है। हिमांशु ने इससे पहले 2025 में नई दिल्ली में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल पुरुष जूनियर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले उन्होंने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। वैष्णवी, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: और अब बात क्लाइंबिंग चैंपियनशिप पर। भारत की 15 वर्षीय अमीरा खोसला ने इटली के ऑर्ग्रो में वर्ल्ड यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में 7.60 सेकंड का समय लेकर इतिहास रच दिया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: अमीरा खोसला ने प्रतियोगिता में 6ठा स्थान हासिल करते हुए स्पीड क्लाइंबिंग में नया इंडियन नेशनल यूथ रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले क्वालिफिकेशन राउंड में उन्होंने 7.74 सेकंड के साथ अपना निजी श्रेष्ठ रिकॉर्ड तोड़ा था और फाइनल में 7.60 सेकंड के साथ इसे बेहतर किया। इस जीत पर अमीरा ने कहा कि वर्ल्ड यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए सबसे गर्व का पल है। दुनिया के सबसे अच्छे यंग स्पीड क्लाइंबर्स के खिलाफ मुकाबला करते हुए उनका परफॉर्मेंस वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में किसी भारतीय का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है और वैश्विक मंच पर इंडियन स्पोर्ट क्लाइंबिंग के लिए एक और उपलब्धि है। वर्ल्ड यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में इंडियन टीम का प्रतिनिधित्व अमीरा, श्लोक दादुकर, नील वारके और रुद्र करंदीकर ने किया। दादुकर ने 6.76 सेकंड के साथ 27वें स्थान पर रहे। वारके 35वें जबकि करंदीकर ने 44वां स्थान हासिल किया। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात हॉकी पर। ग्वालियर में हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप में कल राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। पुलसी मुकाबले में राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी ने तमिलनाडु हॉकी एकेडमी को रिकॉर्ड 41-0 से धूल चटाई। यह हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप के इतिहास में किसी टीम की सबसे बड़ी जीत बन गई है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: शुरुआत से ही राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। विरोधी टीम को उनके ही हाफ में दबाए रखा और बेहतरीन फिनिशिंग दिखाई। टीम के लगातार आक्रामक दबाव का नतीजा ये हुआ कि पहले क्वार्टर के अंत तक वे 8-0 से आगे थे और दूसरे क्वार्टर में 11 गोल करने के बाद हाफ टाइम तक ये बढ़त तेजी से बढ़कर 19-0 हो गई। टीम ने तीसरे क्वार्टर में 9 और गोल किए और आखिरी 15 मिनट में शानदार 13 गोल दागे, जिससे तमिलनाडु का डिफेंस पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने कोई गोल नहीं होने दिया। दिया। गोलों की इस ऐतिहासिक बारिश में सलोनी का व्यक्तिगत प्रदर्शन शानदार रहा, जिन्हें 12 गोल दागने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सलोनी को कप्तान रश्मीन कौर और हरमनजोत कौर का बेहतरीन साथ मिला, जिन्होंने अटैकिंग सर्किल में जबरदस्त खेल दिखाते हुए 7-7 गोल किए। रुखसाना लगातार खतरा बनी रही और इस ऐतिहासिक स्कोर में 5 गोल का योगदान दिया, जबकि हरमनप्रीत कौर ने 4 गोल किए।

0: इस शानदार आक्रामक प्रदर्शन को दिया और मुस्कान गिल के दो दो गोल ने और मजबूती दी। पूल सी के एक अन्य मुकाबले में मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी ने अनंतपुर स्पोर्ट्स अकेडमी को 15-0 से रौंद दिया। मध्य प्रदेश की शानदार जीत में नन्नी गीताश्री ने 6 गोल किए जबकि भाविका ने 5 गोल दागे। ख्वाहिश परमार, चुटकी कुशवाहा, शीतल प्रजापति और जागृति यादव ने भी गोल कर अहम योगदान दिया। प्रतियोगिता के पूल ए मुकाबले में राजा करण हॉकी अकेडमी ने तमिलनाडु हॉकी अकेडमी को 9-1 से हराया। कप्तान राखी ने 5 गोल किए जबकि शबनम ने 2 गोल दागे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात क्रिकेट पर। बीसीसीआई ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। आइए सुनते हैं अर्जुन की रिपोर्ट कि किन किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है।
2: बीसीसीआई ने कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में अधिकतर युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। ऑफ स्पिनर सारांश जैन को पहली बार भारतीय स्क्वाड में जगह मिली है। 33 वर्षीय सारांश घरेलू मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 188 विकेटों के साथ साथ 2223 रन भी बनाए हैं। मानव सुथार, गुरनूर बरार, साई सुदर्शन, देवदत्त पड़िकल और ध्रुव जुरैल जैसे युवा खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के दम पर टीम में शामिल किया गया है। वहीं अनुभवी रविंद्र जडेजा टीम में वापसी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 नवंबर को उन्होंने आखिरी टेस्ट मुकाबला खेला था। जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन फिटनेस क्लियरेंस के बाद ही मुकाबला खेलने के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। वहीं वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट मैच में उपलब्ध नहीं रहेंगे।
1: और अब बात शतरंज पर। भारत के मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश फिडेव वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में चैलेंजर जावोकिर सिंदारोव का सामना करेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण

0: की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
4: मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
5: पिछले छह दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक
6: शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गयी। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
7: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी हैं। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित

0: का पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का भी मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
0: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पर सवार थे, 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहां के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ भी हम लोग संपर्क साधा है।
1: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
2: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध है। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाश समाचार।
1: केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनेडा की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर

0: और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविन्द्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तमस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपके लिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए गीत से। फिल्म का नाम है आखिरी खत। कैफी आजमी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है खयाम ने।

अभी आपने लता मंगेशकर को सुना, अब सुनिए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीत राहुल देव बर्मन का, आवाज किशोर कुमार की, फिल्म का नाम बुढ़ा मिल गया।

0: अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म जख्मी में सुना। गौहर कानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी बप्पी लहरी ने।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए आशा भोसले और साथियों को फिल्म अलीबाबा 40 चोर में। आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ, दीजिए इजाजत। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखो ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: दोस्तों नमस्ते,
1: मैं हूं अमरकांत। आज इस प्रोग्राम में याद करेंगे गुजरे जमाने की बेहद टैलेंटेड, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री कुमकुम को, जिनका असली नाम था जैबुन्नेसा, कुमकुम उनका फिल्मी नाम था। बहुत ही संपन्न और प्रतिष्ठित घराने में जन्मी कुमकुम, उन्होंने लगभग 115 फिल्मों में काम किया और जितने भी गीत उन पर फिल्माए गए सभी हिट रहे।

0: अजीगन।
1: आर पार फिल्म का ये गाना अभिनेत्री कुमकुम पर पिक्चराइज था। कुमकुम के जीवन से जुड़ी बातों पर विस्तार से चर्चा शुरू करने से पहले आइए इस गीत से जुड़ी कुछ बातें ही आपको बताते हैं। गुरुदत्त जब फिल्म आर पार के निर्माण में लगे थे तो उन्होंने ये गीत कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर फिल्म में रखने का निर्णय किया और तय किया कि ये गीत अभिनेता जगदीप पर फिल्माया जाएगा। जगदीप उनको आप जानते ही हैं, अभिनेता जावेद जाफरी और नावेद जाफरी के पिता हैं और उस समय कुमकुम के मित्र भी हुआ करते थे। बहरहाल फिर गुरुदत्त ने अपना विचार बदल दिया। गीत को उन्होंने किसी महिला अदाकार पर फिल्माने की बात सोच ली और उन्होंने ये भी सोचा कि जिस महिला अदाकारा पर यह गीत पिक्चराइज किया जाए उसे नृत्य भी आता हो। लेकिन उस दौर की अभिनेत्रियां जो नृत्य भी जानती थीं, वो सभी स्थापित अभिनेत्रियां थीं और किसी ने भी इतना छोटा सा रोल करना मंजूर नहीं किया। तब गुरुदत्त ने यह रोल कुमकुम को दे दिया, जिनकी प्रतिभा के बारे में उन्हें पहले से पता था। रोल छोटा ही सही, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद फिल्म के हिट होने के साथ साथ ये गीत भी जबरदस्त हिट हुआ और इसका कुमकुम को भरपूर फायदा मिला।

ये फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का गीत था जिसमें कुमकुम और किशोर कुमार लीड रोल में थे। कुमकुम का जन्म हुआ 21 दिसंबर 1935 को हुसैनाबाद बिहार में। इनके माता पिता ने इनका नाम रखा जैबुन्निसा। जैबुन्निसा यानी कुमकुम ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कथक नृत्य की भी तालीम हासिल की थी। पंडित शंभू महाराज की शिष्या रही हैं। इनके डांसिंग टैलेंट को हम सभी ने फिल्म कोहिनूर के इस नृत्य गीत में भी देखा।

कुमकुम ने अपनी अभिनय और नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कई फिल्मों में किया। कुमकुम की प्रतिभा से प्रभावित निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने उनको भी मुख्य भूमिका में लेकर फिल्में बनाई। फिल्म ललकार में कुमकुम धर्मेंद्र की हीरोइन थी।

जलते बदल में कुमकुम किरण कुमार की हीरोइन थी। रामानंद सागर की सुपरहिट फिल्म आंखें में कुमकुम ने धर्मेंद्र की छोटी बहन का रोल अदा किया, लेकिन ये सिर्फ एक मात्र छोटी बहन का रोल नहीं था, फिल्म में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी।

फिल्म गीत। इस फिल्म में भी राजेंद्र कुमार के साथ कुमकुम ने एक अहम भूमिका अदा की थी। कुमकुम ने भोजपुरी की उल्लेखित फिल्म गंगा मैया तोहे पेरिये चढ़इबो में मुख्य भूमिका अदा की।

अपने पूरे फिल्मी करियर में कुमकुम ने लगभग 115 फिल्मों में काम किया। इनमें से हिट और उल्लेखनीय फिल्मों की बात अगर की जाए तो इस तरह से हैं, मदर इंडिया,

0: अभिनेत्री कुमकुम पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे स्वर अमरकांत का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से FM बैंड 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में मिलन फिल्म से। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: पवन करे शोर,
2: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
2: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर,
2: हाँ

शादाबी आपने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में मिलन फिल्म का गीत सुना। कार्यक्रम की अगली पेशकश में आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गाया कर्तव्य फिल्म का गीत। काफिला जरकली के इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, भी आपने लता मंगेशकर की आवाज को फिल्म आंखें में सुना। गीत के बोल साहिल जानवी के थे और धुन बनाई थी रवि ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं कुमार सानू, क्षमा कीजिएगा, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में, ये वादा रहा फिल्म से। गीत के बोल गुलशन बावरा के ही और धुन बनाई है आरटी परमन ने।

श्रोताओं भी आपने आशा भोसले की आवाज में लोफर फिल्म का गीत सुना। आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत परेलाल का संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनाते हैं किस्मत फिल्म से आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज में।

श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सीआईडी फिल्म का गीत आशा भोसले, शमशेद बेगम और साथियों की आवाज में। मजू सुजानपुरी के बोल हैं ओपी नैयर का संगीत।

श्रोताओं भी आपने आशा भोसले और साथियों की आवाज में दिल ही तो है फिल्म का गीत सुना। गीत के बोल साहिल जानवी की ही धुन बनाई है राजेश रोशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथियों की आवाज में मुगले आजम फिल्म से। गीत के बोल शकील बुदायनी की ही धुन बनाई है नौशाद ने।

श्रोताओं, अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में घर फिल्म का गीत सुना। गुलजार के बोल थे आर डी बर्मन का संगीत। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं जहरीला इंसान फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर जी आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। अब से खुशी पर माफ सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8% जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश

0: और विदर्भ में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्र टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माई चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह के 5:55 पर रेडियो तरंग जरिए आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, शुभ रात्रि, जय हिंद।